मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक्षमवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजे हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश

0: बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थयात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए रविन्द्र दीक्षित के स्वर में मातृवंदना।

साईं भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ देर बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे खेती किसानी, विषय होगा गोबर गैस संयंत्र से लाभ। 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर देवदत्त द्विवेदी से वार्ता श्री रामचरित मानस में बुंदेली। 7:30 पर होगा फिल्म संगीत। 8:30 पर भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। 9:00 लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में सुनिए विद्या विश्वकर्मा से बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनिए एक ही गायक के अंतर्गत सुखविंदर सिंह को। 10:05 पर सबरंग में सुनिए कुमाऊनी लोकगीत। 10:30 पर सुनिए श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे 11:00 सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। 12:00 आपकी फरमाइश 12:30 पर संग्रहालय से ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होंगे। 1:02 पर सुनिएगा महिला कार्यक्रम, इसमें सुनिएगा शालिनी विश्वकर्मा से वार्ता स्वस्थ नारी समृद्ध समाज। 1:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत। इसके बाद आकाशवाणी मध्य प्रदेश से ही अनुप्रसारित करेंगे 2:00 फिल्म संगीत और 2:30 पर आपकी फरमाइश। 5:00 युववाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुने श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। 6:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 6:45 पर आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, इसमें सुनिए वीरन वंशकार से बुंदेली लोकगीत। 7:20 पर ग्रामीण भाई ग्राम सभा में सुने सुनो गीत गुनो बतकाओ, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। बुंदेलखंड में जलवायु स्मार्ट खेती विषय पर डॉक्टर आयुष मिश्रा से बातचीत। इसके अलावा आज की सीख का विषय होगा जो भूई लौट चले पुरवाई तब जानो बरखा ऋतु आई। 8:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कवि गोष्ठी, प्रायोजक हैं हरिशंकर जोशी। 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर इनसाइड।

0: हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है खेती किसानी।
1: पंचो आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं, खासतौर से उन पंचन के लाने जो उनके गोबर गैस संयंत्र चला रहे हैं या उनकी स्थापना करो चाहू था। तो जोन किसान पंच गोबर गैस संयंत्र लगाओ चाहू था उन्हें खास तौर से ई संयंत्र का लगावे के लाने सबसे पहला इन बातन को ध्यान रखनिया है। ऊके स्थान को जब अपन चुनाव करें तो जो देख लेवे के जोन जगह में अपन गोबर गैस संयंत्र लगवा रहे हैं वह जगह ऊंचाई पे बहुत चाहिए, संगे संगे उते भैया सूखी जगह बहुत चाहिए और पूर्णतया खुलो स्थान बहुत चाहिए। खुले को मतलब जो है कि भैया जहाँ पे दिन को जो प्रकाश है ना धूप आउत बा सबसे ज्यादा उ स्थान तक पहुंच सके। ई के संगे संगे जहाँ अपनी रसोई है, जहाँ अपने पशु बंधत ऊ के पास जो स्थान पहुंचिए। एक बात को और ध्यान रखने कि जो न अपनी जमीन को जल स्तर है ऊ की जो जल स्तर की सतह है वह भैया कम से कम जितो अपने गहरो गड्ढा ही किलाने खोदो उसे 2 मीटर नीचे पहुंचिए। गैस संयंत्र के लाने 15 मीटर के आसपास तक कोनो भी पानी को कुआं या जो अपन हैंड पाइप वगैरह लगवाऊ थे वो आसपास ना पहुंचिए। और ई के रख रखाव के लाने भी हम अपन कुछ बता दें कि अपन के पास जितनी पशुन की संख्या है वही के आधार पे अपन का बायोगैस संयंत्र को आकार छोटे या बड़ो चुन लो चाहिए। ई को निर्माण एक प्रशिक्षित व्यक्ति जो उनके कम से कम जिनने जब बनवाए हुए तो वे सफल रहे हुए ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में अपन का संयंत्र की रचना कराने हैं। और भैया निर्माण करवे के बाद इस संयंत्र का 10 से 12 दिन तक अपन सूखन देने, जिसे के अगर कहूं जो कम सूख पाओ तो इस संयंत्र में जो है दरारें पड़वे की संभावना ज्यादा होती है। एक बात को और ध्यान रखें भैया कि जहां भी अपन गैस होल्डर खरीद भी जाए तो देख लेवे कि वो गैस होल्डर खा जहाँ अपन खरीद रहे तो जो निर्माण करता है वह एक अच्छी कोनो जो है मान्यता प्राप्त निर्माण करता को अपन गैस होल्डर खरीदे। ऊ खा लगावे के पहला ऊ की अच्छी तरह से जांच कर लेवे कि कहूं भी कोनो भी प्रकार से वह लीक न करत हो चाहिए। पाइप लाइन खा ई तरीका से अपन बिछावने हैं जिसे के जो है जो अपने वाटर ट्रैप है उतर से जो है वाटर ट्रैप से जल संग्रहण अच्छी तरह से हो सके। अच्छी किस्म के और अच्छे बर्नर लैंप को अपन हाई में उपयोग करने हैं। रसोई घर में एक सेफ्टी प्रेशर गेज आउट है भैया ऊ को प्रयोग अपन रसोई घर में जरूर करने हैं। जनता संयंत्र जो हमारे पंच भैया लगवाउत है तो उमे भैया का होते है कि कभू कभू लड़का बच्चा खेलत भय या जो छोटे छोटे ढोर बचेरू है पड़ेरू है वे होते पहुंच जाते। कैसे ही में 2 ठैया भाग होते हैं, एक खा बोलत है इनलेट और एक खा बोलत है आउटलेट, यानी जिते से अपन गोबर डारत है और फिर जिते से भैया अपन खाद बन के वो निकलत है बे जगह खुली रहती है। तो उनका जब अपन गोबर डाल देवे उसके बाद भैया कोनो भी लकड़ी के पटिया से जिसे की कोनो भी दुर्घटना उमे न घट सके अपन उखा जो है ढाक के जरूर रखे। अपने संयंत्र में जो पशुन को गोबर है पानी है उखा सही अनुपात में, अब अनुपात कैसो 1 भाग पशु को गोबर और 1 भाग पानी मिला के समान रूप से मिश्रण तैयार करके इस संयंत्र में अपन का डाल देने हैं। भैया एक बात को और अपन का ध्यान रखने हैं कि जब इसमें झाग बनन लगे तो झाग रोक भी के लाने कम से कम समय में जो पाचित्र की सिफारिश है उखा कम स्तर तक भरने हैं, ज्यादा भरो तो भैया उमे झाग बन सकते हैं। झाग समाप्त करवे के लाने रोजीना 1 से 2 बार गैस होल्डर का घुमा देने, तो जैसे उकी हवा निकल जाए तो वो गैस निकलने लगे तो झाग उको समाप्त हो जाए। पहली बार जब अपन ईखा प्रयोग करो तो उस समय पहला गैस खा बाहर बांध देवे उसे अपन पतो चल जाए, जिसे चारों तरफ की जो हवा है बाऊ की जो है साफ हवा होते पहुंचन लगे। गैस खा जब वास्तविक रूप से प्रयोग करें तो उको जो गैस को रेगुलेटर है उखा फिर भैया खोल देवे, उकी जांच करत रहे, गैस को ढक्कन जब खोलें तो माचिस से जलाएं कि कहूं से

0: रेगुलेटर जो है से गैस तो नहीं निकल रही। ई की नीली जो लौ होत है वह जो है वायु रेगुलेटर का घुमा के अच्छी तरह से देख लें उखा और नियोजित कर लें, यानी कम ज्यादा जितनी अपन हचाने हैं उतना ही अपन उको उपयोग करें। तो अगर को अपन ने ई प्रकार से जो गोबर गैस संयंत्र लगाए हैं उनको संचालन करो तो निश्चित है कि अपन का कम से कम गोबर की मात्रा में ज्यादा से ज्यादा गैस मिलवे की संभावना हो सकत है।
1: अभी खेती किसानी का प्रसारण किया जा रहा था मीडियम वेव पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

शिवजी की बारात में जाने के लिए देवताओं तथा दिक्पालों के समूह एकत्रित हुए। भगवान विष्णु ने विनोद में उन्हें शिवजी की वेशभूषा के प्रतिकूल बता दिया। इस पर शिवजी ने दूत भृंगी को भेजकर अपने गण बुलवाए। फिर तो ऐसी बारात सजी जिसे हिमवान की नगरी के बालक देखते ही जैसे जान बचाकर भाग चले। कैसे थे शिवजी के गण? कोई दुबला, कोई बहुत मोटा, कुछ भयंकर गहने पहने, तो किसी के हाथ में नरमुंड और पूरा शरीर ताजे रक्त में सना हुआ, कुछ के मुख गधे, कुत्ते तथा सुअर जैसे। ये सभी अनगिनत योगिनियों, प्रेत और पिशाचों के साथ चल रहे थे। जैसा दूल्हा वैसी बारात। इधर हिमवान ने अद्भुत ढंग से अपनी नगरी को सजाया था। मंडप ऐसा सुंदर जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। विवाह के अवसर पर जगत के सारे छोटे बड़े पर्वतों, वन, समुद्र और नदियों को न्योता भेजा गया था। ये सब अपने इच्छानुसार सुंदर शरीर धारण कर उपस्थित हुए। बारात नगर के निकट आई तो नगर निवासी बन संवर कर नाना प्रकार के वाहन लेकर उसकी अगवानी करने चले।

0: अभी श्री रामचरितमानस गान का प्रसारण किया जा रहा था। स्वर मन्ना डे का था और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: मनुष्य के जीवन में संगठन का बड़ा महत्व है। अकेला मनुष्य शक्तिहीन है, जबकि संगठित होने पर उसमें शक्ति आ जाती है और संगठन की शक्ति से मनुष्य बड़े बड़े कार्य भी आसानी से कर सकता है। संगठन में ही मनुष्य की सभी समस्याओं का हल है। जो परिवार और समाज संगठित होता है, वहां हमेशा खुशियां और शांति बनी रहती है और ऐसा देश तरक्की के नित नए नए सोपान तय करता है। इसके विपरीत जो परिवार और समाज असंगठित होता है, वहां आए दिन किसी न किसी बात पर कलह होती रहती है, जिससे वहां हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है। संगठित परिवार, समाज और देश का कोई भी दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जबकि असंगठित होने पर दुश्मन जब चाहे आप पर हावी हो सकता है। संगठन का प्रत्येक क्षेत्र में विशेष महत्व होता है, जबकि बिखराव किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं होता है। संगठन का मार्ग ही मनुष्य की विजय का मार्ग है। यदि मनुष्य किसी गलत उद्देश्य के लिए संगठित हो रहा है, तो ऐसा संगठन अभिशाप है, जबकि किसी अच्छे कार्य के लिए संगठन वरदान साबित होता है। प्रत्येक धर्म ग्रंथ संगठन और एकता का संदेश देते हैं। कोई भी धर्म आपस में बैर करना नहीं सिखाता। सभी धर्मों में कहा गया है कि मनुष्य को परस्पर प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना चाहिए और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। मनुष्य जब एकमत होकर कार्य करता है, तो संपन्नता और प्रगति को प्राप्त करता है। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का विशेष महत्व होता है। इसीलिए जब मनुष्य संगठित होकर कोई कार्य करता है, तो उसके परिणाम में विविधता देखने को मिलती है। जिस तरह प्रत्येक फूल अपनी अपनी विशेषता और विविधता से किसी बगीचे को सुंदर और आकर्षक बना देते हैं, उसी तरह मनुष्य भी अपनी अपनी विशेषता और योग्यता से किसी भी कार्य को नया आयाम प्रदान कर सकते हैं। यह भी संभव नहीं है कि किसी विषय पर सभी व्यक्तियों का मत एक जैसा ही हो, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति किसी विषय या समस्या को अपने नजरिए से ही देखता है और इसी आधार पर उसका समाधान भी खोजता है। लेकिन जब बात संगठन की आती है, तब मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। किसी भी धर्म का कोई भी पर्व हो, संगठित होकर मनाने में ही हमें उस पर्व का आनंद और उल्लास पाता है। लेकिन आज के समय में एकल परिवार का चलन बढ़ता जा रहा है। लोग पढ़ने लिखने और शादी होने के बाद अपने परिवार को छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहने के लिए चले जाते हैं और उन्हें अपने माता पिता और परिवार वालों से सिर्फ औपचारिक मतलब ही रह जाता है। और ऐसे एकल परिवार वालों के सामने जब कोई भयंकर समस्या, बीमारी या परेशानी आती है, तो उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता और उन्हें अकेले ही उस समस्या से जूझना पड़ता है। जबकि संयुक्त परिवार में रह रहे लोगों के सामने कितनी बड़ी भी समस्या क्यों ना आ जाए, उन्हें समस्या कठिन नहीं लगती, वरन सबके सहयोग से उन्हें समस्या का तुरंत निदान मिल जाता है, क्योंकि उनके साथ परिवार के सभी लोगों का सहयोग रहता है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर, परिवार, मोहल्ले और समाज में हमेशा कलह का वातावरण उत्पन्न करते रहते हैं। ऐसे लोग भी कभी संगठित नहीं हो पाते हैं और अपने पूरे जीवन में ना किसी के लिए अच्छे बन पाते हैं, न ही कोई उनके लिए अच्छा हो पाता है और वो अपना पूरा जीवन समस्याओं से जूझते रहते हैं। इसीलिए सफल

0: जीवन के लिए संगठन बहुत ही आवश्यक है। संगठन में प्रत्येक मनुष्य को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं पर नियंत्रण करना होता है, इसीलिए संगठन में व्यक्ति को शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक और बौद्धिक रूप से भी समर्पित होना पड़ता है। तब कहीं जाकर उसे संगठन का सही लाभ मिल पाता है और उसका जीवन सफल हो पाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेताकारी चेत्यनया सह वार्षिक शिखरसम्मेलनस्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखरसम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीययात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकायची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिकयात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारतजापानयोः मध्ये विशेषरणनीतिकवैश्विकसहमतिम् अग्रेवर्धनदिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिकसञ्चारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापकचर्चायाः आशां करोति, यया भारतजापानयोः विशेषरणनीतिकवैश्विकसहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्जक्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 एई राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते 6-मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य 4-मार्गीय अभिगमन नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
3: पहला प्रोजेक्ट 6-लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियमस्य 25.2 अंतर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25.1 दिनानां सवेतन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी प्वाइंट इन स्पेस यानी पेंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, धान की फसल पर भावांतर राशि दी जाएगी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय, लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार। और भारत इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच बारिश के कारण ड्रॉ रहा, दूसरा मैच शनिवार को होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ताकाइची की यह पहली भारत की आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है और ये यात्रा इसे आगे ले जाने में सहायक होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब धान की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे हालधर किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, इस धरा के वास्तविक शुभंकर हैं। किसानों की खुशहाली ही हमारी सरकार का संकल्प है, क्योंकि किसान समृद्ध होगा तभी हमारा प्रदेश और देश समृद्ध होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महाकौशल की धरती धान उत्पादन के लिए जग प्रसिद्ध है। क्षत्रिय धान को अब भौगोलिक संकेतक जी टैग मिल गया है। श्री यादव ने कहा,
2: धान पर भी

0: भावांतर देने वाले जोरदार ताली बजाए, भावांतर योजना। आप धान लगाओगे, जो भाव आपको मंडी में बेचे अच्छे से अच्छा भाव दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर नहीं मिला तो बीज का अंतर वो हमारी सरकार आपको देने वाली है। आपके माध्यम से हमारी सरकार खेत से लेकर कारखाने तक और बाग से लेकर बाजार तक हरेक क्षेत्र में मूल्य संवर्धन श्रृंखला लगा रही है। हरेक किसान को उसकी फसल का ठीक से लाभ मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल सिवनी जिला मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जीएसटी को लागू करना एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा तक सीमित नहीं होकर एक राष्ट्र एक संकल्प और एक साझा उत्तरदायित्व का जीवंत प्रतीक है। राज्यपाल श्री पटेल कल जीएसटी के 9वें वर्ष के अवसर पर भोपाल के रविन्द्र भवन में सुगम कर सशक्त भारत थीम पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी की 9 वर्षों की इस यात्रा से देश को दशकों पुराने इंस्पेक्टर राज और जटिल कर

0: विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 24 घंटे नवकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत कर दी है। उन्होंने बताया कि दावोस में की गई घोषणा के अनुरूप प्रदेश 24 घंटे हरित ऊर्जा देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में आयोजित प्री बिड मीटिंग को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है। कल उज्जैन, बालाघाट, कटनी, सीहोर, उमरिया, धार और मंडला समेत 7 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और सागर संभाग को मॉनसून पूरी तरह कवर कर चुका है, जबकि उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में दस्तक बाकी है। राजधानी भोपाल में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। कल भी दिनभर यहां रूक रूक कर बारिश होती रही। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय होने के बाद लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग ने कल के लिए बालाघाट और डिंडौरी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इसके साथ ही श्रृंखला 0-0 से बराबरी पर है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया स्थित शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल से 9 प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 दिवसीय दीक्षांत कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की स्मृति में कल जबलपुर के मानस भवन में गौरव शिखर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिवपुरी में अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने पोहरी के ग्राम अनभौरा में लगभग 3 करोड़ रुपए की 150 बीघा से अधिक पट्टे की भूमि को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराया। खंडवा में बीबीजी रामजी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ आज विकासखंड की ग्राम पंचायत बमन गांव आखई में होगा। वहीं बीबीजी रामजी योजना का आगरमालवा में जिला स्तरीय शुभारंभ 2 जुलाई को यानी आज सुबह ग्राम पंचायत पिपलिया चाचा में किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य बारेलाल अहिरवार आज अशोकनगर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे। झाबुआ कलेक्टर ने रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। शिविर में 67 यूनिट रक्तदान हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बुंदेली सुगंध कार्यक्रम। इसमें सुनिए डॉक्टर देवदत्त द्विवेदी से वार्ता श्री रामचरित मानस में बुंदेली।
2: रामचरित मानस खो अवधि भाषा को ग्रंथ मानो जात पे रामचरितमानस खो अवधि भाषा को ग्रंथ मानो जात पे इमे ब्रज और बुंदेली भाषा को सोई खूब प्रयोग भाव है। इको कारण है कि रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास जी को जीवन काल बुंदेलखंड के चित्रकूट धाम में ज्यादा बीतो है। ऐ से बुंदेली संस्कृति और बुंदेली भाषा को प्रभाव मानस के हर कांड पे साफ दिखात है। मानस की रचना में मुख्य रूप से अब

सिंधी, ब्रज और बुंदेली भाषा को मिश्रण मिलत है। इको साफ कारण है कि अवधि से ब्रज जावे की गैल बुंदेली के बीच ही बीच से गई है। यही से मानस के दोहा और चौपाई चौथे हिस्सा बुंदेली से सजे धजे दिखात हैं। समस्या तो जा हो गई है कि जब रामचरित मानस बन के तैयार भाव ऊ समय बुंदेली को पक्ष लेबे बारे जनबा कम हते। इसे काऊ ने बुंदेली की बातें ही नहीं उठाई। और तो और ऊ बखत के नीखरा बुंदेली भक्ति रस बारे साहित्य तक्खो ब्रज और अवधि के खाते में जोरदा गौ तो आगे चल के जब गीता प्रेस गोरखपुर बालन ने मानस के संपादन और विस्तृत टीका अर्थ के लाने एक कमेटी बनाई थी, उमे भी को बुंदेली जानबे वारो और बोलबे वारो नहीं हतो। यही से बुंदेली से प्रभावित मानस के केव भाव विचार और प्रसंग अर्थ बुंदेली ना समझबे के कारण आज लो अच्छी तरह से नहीं खुल पाए। बुंदेली हजारन साल पुरानी बोली भाषा है। इकी केव उपबोली हैं। सबसे बड़ी बात तो जा है कि बुंदेली में जोन मिठास और अपनोपन है, जैसी सपाट बयानी और भाव की गहराई है, बा और लोक भाषण में कम है। बुंदेली तो ठसकीली आन बान भरी ताल ठोक के चलबे बारी बहादुरी की भाषा है। यही से हिंदी और हिंदी से मिली जुली हर भाषा बोली की पोथियन में बुंदेली देख बेखो मिल जात है। आज हम अपन से सबसे पहला रामचरित मानस में बुंदेली संस्कृति खो देखें, फिर बुंदेली भाषा पे नजर डालें। मानस के बालकांड में राम जन्म से लेके राम के ब्याह तक में जिन संस्कारन को वर्णन मिलत है, वे सब संस्कार बुंदेली संस्कृति के खास आए जो अभी तक चलत आ रहे हैं। जनकपुरी में श्री राम के ब्याह के समय बारात की पंगत में जनकपुरी की सखियां जोन गारी गीत गाउती हैं, जैसे जैसे नेंग चार भय वे सब बुंदेली संस्कृति के आए। जैसे जै

ता जूसे जब गांव की औरतें गैल चलत में आन के मिलती जुड़ती हैं तो वे सीता जूसे खूबई बतियाती हैं। वे कह रही हैं कि हम तो ठहरी गांव की गमान्ने, अपन हमारे पूछवे को बड़ा न मानियो। जा बताओ कि जे दो जने को आए, एक जने सांवरे हैं और दूसरे जने खूब गोरे नारे हैं, ई दो ही जनन से अपनो का रिश्तो ना तो है जे अपने को लगत हैं। सीता जी सोई उनके भोरेपन की सूदी सहज बातें सुन के उन्हीं जैसी बोली बानी और मान मर्यादा से दो ही जनन को परिचय देती हैं। चौपाई देखी जाए सहज स्वभाव सुभग तन गोरे और नाम लखन लघु देवर मोरे। आगे कह रही बहोर बदन विधु अंचल ढांकी पिय तनु चिताय भोह कर बांकी और खंजन मंजु तिरीछे नैनन निज पति कहेउ तिनह सिय सेनन। ई तरह से बुंदेली मान मर्यादा को पालन सीताजू ने सोई करो। ऐसा ही बुंदेली संस्कृति और भाषा को असर केवट प्रसंग में खूबई भरो परो है। केवट एक पक्के बुंदेलखंडी ढीमर की तरह अपनी अखंडता और सहजता से राम के सामने पेश होत है। उके सवाल जवाब और हाव भाव अपने आप में बुंदेली को बखान करत हैं। मांगी नाव न केवट आना। इस प्रकार से हम कह सकत हैं कि बुंदेली संस्कृति के रीत रिवाज स्वागत सत्कार खान पान और लोक रीत के सबई प्रसंग पूरे मानस में मिलत हैं। अब बुंदेली भाषा को देखो जाए तो मानस के साथ ही कांड बुंदेली से रंगे दिखा रहे हैं। हजारन चौपाई और दोहा ऐसे हैं जिनमें बुंदेली को खूब प्रयोग भाव है। खास तौर से बुंदेली की क्रिया और विशेषण तो हर तीसरी चौथी चौपाई में दिखा पड़त हैं। जैसे जब श्री राम ने जनकपुरी में शंकर जी को धनुष टोरबे खो उठाओ तो चौपाई आई है के लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काहू न लखा देख सब ठाणे। ई चौपाई में पूरी की पूरी बुंदेली है। ऐसा ही ब्याह के समय आदर सत्कार की चौपाई है। सादर सबके पांव पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे। ई में सबके पांव पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे शब्द बुंदेली के हैं। यही समय के कछु और उदाहरण हैं, जैसे समय समय स्वर बरसहि फूला सादर परन लगे पनवारे और कुंवर चढ़ाई पाल की सुमरे सिद्ध गणेश। यही तरह से मंथरा के कई संवाद में तुलसीदास जी ने बुंदेली भाषा के गहरे प्रभाव बारे शब्दन को खूब इस्तेमाल करो है। केकई मंथरा के बतकाय में लोक संस्कृति के सहज बुंदेली शब्द भाव को प्रकट करवे के लाने प्रयोग करे गए। जैसे अनमनी उसासु ढारय गरब घर फोरू काने कोरे कुबरे पटोरे थोरे आदि बुंदेली के शब्द हैं। बुंदेली की क्रिया और विशेषण की यही कांड में चौपाई मिलत है। चले समीर बेग है हाके और लागत सरत सैल बन बांके। ई चौपाई में हाके बुंदेली की क्रिया है तो बांके बुंदेली को शुद्ध विशेषण है। ई प्रकार से छांटो जाए तो एक कांड में हजारन हजार बुंदेली के शब्द मिलत हैं। कछु चौपाई तो ऐसी हैं जिनमें दो चार शब्द अवधि के हैं, बाकी पूरी बुंदेली में रची गई हैं। जब श्री हनुमान जी के संग पूरी बंदर सेना पंपापुर के राजा साई बगीचा के फल टोल टार के खान लगत है तो सुग्रीव जो समाचार सुन के कात हैं, जो न होत सीता सुध पाई और मधुपन के फल सकत न खाई।

चौपाई में होत पाई सकत खाई शब्द बुंदेली के हैं। ऐसा ही जो एक दोहा देखो जाए, और करे अपराध को और पाए फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। ई दोहा में भी और करे को पाए भोग जोग जाने बुंदेली भाषा के शब्द हैं। इस तरह से पूरे मानस में कम से कम एक चौथाई बुंदेली भाषा को प्रयोग भाव है। अब जरूरत है कि बुंदेली जैसी संपन्न भाषा को हर जगह से खोज के उजागर करो चाहिए, और बुंदेली को एक पूरी भाषा को दर्जा मिलो चाहिए। हम इस वार्ता के माध्यम से निवेदन करते हैं कि वे

अभी आपने फिल्म जोरदार का ये गीत सुना, अनु मलिक, अबू मलिक और कृष्ण मलिक की आवाज में। गीत समीर का था और संगीत अनु मलिक का। अब लीजिए सुनिए, अगला गीत है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई, एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
4: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
3: मतलब
4: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
3: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
5: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: फिल्म संगीत में अब लीजिए सुनिए मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज में फिल्म दरिया दिल का ये गीत। गीत इंदीवर का है और संगीत राजेश रोशन का।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: किसे?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अब लीजिए सुनिए फिल्म आसमां से ऊंचा का ये गीत, शब्बीर कुमार और साधना सरगम की आवाज में। गीत इंदिवर का है और संगीत राजेश रोशन का।

फिल्म संगीत में अब लीजिए सुनिए अनूप जलोटा और साथी की आवाज में फिल्म दाना पानी का ये गीत। गीत हसरत जयपुरी का है और संगीत अनु मलिक का।

अभी आपने फिल्म दाना पानी का ये गीत सुना अनूप जलोटा और साथी की आवाज में। इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात हिंदी में। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज अंग्रेजी में समाचार।

0: फरहत के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी प्वाइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा

0: गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल डीजल सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉ सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉ सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी

0: दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने एक खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, पत्र लिखता है गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं, लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए, जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है लक्ष्मण प्रसाद दुबे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जबलपुर से वृंदा हिंगनीकर और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय स्वाधीनता का इतिहास ऐसे अनेक राष्ट्रभक्तों की कहानी कहता है जो समय की प्रचंड आंधियों के बीच दीप नहीं दिशा बनकर उभरे। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे गणेश घोष। उनकी यात्रा उस नदी की तरह थी जो चट्टानों से टकरा कर भी अपना मार्ग बनाना जानती है। उनका संकल्प उस अग्नि की तरह था जो स्वयं तप कर भी अपने आसपास उजाला बिखेरती है। गणेश घोष का जन्म 22 जून सन 1900 को अविभाजित भारत के जैसोर नामक स्थान पर हुआ था जो बांग्लादेश के खुलना जिले के पास स्थित है। उनके पिता का नाम विनोद बिहारी घोष था। गणेश घोष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे तथा अपने आसपास की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति देखकर बहुत अधिक उद्वेलित हुआ करते थे। उनकी शिक्षा आगे बढ़ती रही और आरंभ में उन्होंने ब्रिटिश रेलवे में काम भी किया, लेकिन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान कोलकाता के बंगाल तकनीकी संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए उन्होंने चिटगांव में एक स्वदेशी कपड़े की दुकान भी खोली थी। उन्होंने जो मैकेनिकल और तकनीकी कौशल की शिक्षा ग्रहण की थी वो शिक्षा केवल आजीविका के लिए नहीं थी, बल्कि इस कौशल का प्रयोग वो देश को आजाद कराने के लिए हथियार और बम बनाने के लिए भी करने का विचार करने लगे। भारत की आजादी उनकी आंखों का पहला सपना था। अंग्रेजों की गुलामी से वो अत्यधिक आक्रोशित रहा करते थे तथा मन ही मन क्रांति पथ पर चलने का उन्होंने संकल्प ले लिया। उन्हें विश्वास था कि भारत बहुत जल्द आजाद होगा।

कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान ही गणेश घोष बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर के संपर्क में आ गए थे। वो बहुत जल्द इस संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। चटगांव में रहते हुए ही उनकी भेंट मास्टर सूर्यसेन से हो चुकी थी। सूर्यसेन की सादगी और दृढ़ संकल्प से वो अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके सहयोगी बन गए। बहुत जल्द चटगांव में क्रांतिकारियों का समूह बना, जिसमें सूर्यसेन के साथ गणेश घोष, अनंत सिंह और लोकेन बल शामिल थे। इन्हें चटगांव में क्रांतिकारियों की त्रिमूर्ति कहा जाता था। गणेश घोष ने चटगांव के युवाओं को व्यायामशालाओं के माध्यम से संगठित करना शुरू किया। वो युवाओं को शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने, लाठी चलाने और अनुशासन सिखाने के प्रभारी थे। वो मास्टर सूर्यसेन द्वारा स्थापित चटगांव रिपब्लिकन आर्मी में सघन रूप से सक्रिय हो गए। ये एक सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से चटगांव को मुक्त कराना तथा पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी भड़काना। इस तरह इस क्रांतिकारी संगठन ने मजबूत आकार ले लिया। सन 1930 आते आते चटगांव की धरती पर एक बड़ी योजना आकार लेने लगी और इसके सूत्रधार थे मास्टर सूर्यसेन, गणेश घोष और अनंत सिंह। इन्होंने निश्चय किया कि अंग्रेजी शासन को सीधे चुनौती दी जाए। योजना बनी कि चटगांव के दोनों शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया जाए, संचार व्यवस्था को ठप कर दिया जाए, रेलवे संपर्क काट दिया जाए ताकि ब्रिटिश सेना की सहायता वहां तक न पहुंच सके। 18 अप्रैल सन 1930 गुड फ्राइडे का दिन था। रात करीब 10 बजे भारतीय रिपब्लिकन आर्मी की वर्दी पहने क्रांतिकारियों ने हमला बोल दिया। गणेश घोष ने पुलिस शस्त्रागार पर हमला करने वाले दस्ते का नेतृत्व किया। उन्होंने बड़े ही साहस और चतुराई से वहां मौजूद पहरेदारों को निष्क्रिय कर दिया तथा भारी मात्रा में बंदूकें और मस्कट जब्त कर लिया। उधर अनंत सिंह के समूह ने सहायक बल शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां मास्टर सूर्यसेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सैन्य सलामी दी गई।

अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। गणेश घोष इस नवगठित क्रांतिकारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ संलग्न हुए, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सेना ने चटगांव को चारों ओर से घेर लिया। परिस्थिति देखकर क्रांतिकारी दल जलालाबाद की पहाड़ियों की ओर बढ़ चला।

22 अप्रैल सन 1930 को ब्रिटिश सेना ने जलालाबाद की पहाड़ियों को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस युद्ध में गणेश घोष ने युवाओं का ऐसा हौसला बढ़ाया कि क्रांतिकारियों की सटीक फायरिंग के सामने ब्रिटिश सेना टिक नहीं पाई, उसे पीछे लौटना पड़ा। इसके बाद मास्टर सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर गांवों में छिपने का आदेश दिया। गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकेन बल और आनंद गुप्ता हुगली जिले के चंदन नगर में पहुंचे, जो उस समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, इसलिए ये स्थान ब्रिटिश पुलिस के सीधे अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यहां क्रांतिकारी सुहासिनी गांगुली और शशधर आचार्य ने पति पत्नी होने का नाटक कर एक घर किराए पर ले लिया, जहां गणेश घोष और उनके साथी छिपे हुए थे। ब्रिटिश खुफिया विभाग को इस ठिकाने का पता चल गया। पुलिस ने इसे घेरकर भयंकर गोलाबारी शुरू की। इस मुठभेड़ में गणेश घोष के साथी मखनलाल घोष शहीद हो गए और गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। अपनी जेल यात्रा में भी वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने जेल में दो बड़ी भूख हड़ताल भी की थी। उनकी रिहाई के लिए देशव्यापी आंदोलन चले। महात्मा गांधी, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर और अन्य शीर्ष नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बनाया और अंततः 1946 में वो रिहा हुए। आजादी के बाद उन्होंने शस्त्र छोड़कर जन आंदोलन और चुनावी राजनीति का रास्ता चुना। वो पश्चिम बंगाल के गरीब और शोषित वर्ग की आवाज बनकर उभरे। आजादी के बाद वो लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गए। सदन में वो अपनी प्रखर वाणी और शोषितों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। सन 1967 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। वो दक्षिण कलकत्ता की सीट से चुनाव जीतकर 4th लोकसभा के सदस्य बने। अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि चटगांव विद्रोह और उनके शहीदों का इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक अवश्य पहुंचे। उन्होंने इसी उद्देश्य से बंगाली और अंग्रेजी में कई संस्मरण, लेख और पुस्तकें लिखीं। उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है चट्टग्राम विप्लवेर बन्ही शिखा। ये उस दौर का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। वो जीवन के अंत तक कोलकाता के एक छोटे से मकान में बहुत ही सादगी से रहे। उन्हें जो भी पेंशन या भत्ते मिलते थे, उसे वो जन कल्याण हेतु दान कर दिया करते थे। अपने जीवन का पल पल भारत भूमि को समर्पित करते हुए उन्होंने 16 अक्टूबर सन 1994 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज हमारे कलाकार हैं विद्या विश्वकर्मा। ढोलक पर इनके साथ हैं वीरेंद्र अहिरवार, बेंजो पर अशोक मस्ताना और मंजीरा पर है बाबू रैकवार। तो आइए इनसे सुनते हैं ये लोकगीत।

अभी आपने विद्या विश्वकर्मा से ये कछियाई लोकगीत सुना, अब लीजिए इन्हीं से सुनिए दादरा।

लोक रंग कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए लगुन गारी, ये लोकगीत विद्या विश्वकर्मा की आवाज में। इनके साथ ढोलक पर हैं वीरेंद्र अहिरवार, बेंजो पर अशोक मस्ताना और मंजीरा पर हैं बाबू रेखवार।

बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में अब लीजिए सुनिए नशा मुक्ति पर आधारित ये लोकगीत विद्या विश्वकर्मा की आवाज में।

लोकरंग कार्यक्रम का अंतिम लोक गीत लीजिए, सुनिए राय का टप्पा, ये श्रृंगार लोक गीत विद्या विश्वकर्मा की आवाज में।

इसी लोकगीत के साथ लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। इसमें आज आपने सुना विद्या विश्वकर्मा को, ढोलक पर इनके साथ थे वीरेंद्र अहिरवार, बेंजो पर अशोक मस्ताना और मंजीरा पर बाबू रैकवार। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही गायक, इसमें सुनिए सुखविंदर सिंह के गाए कुछ फिल्मी गीत। पहला गीत है फिल्म दाग द फायर से, गीत समीर का है और संगीत राजेश रोशन का। श्रोताओं, हम आपको बता दें भारतीय पार्श्व गायक के गायन के इतिहास में कुछ ऐसी आवाजें हैं जो अपनी विशिष्ट शैली, ऊर्जा और बहुमुखी प्रतिभा के लिए पहचानी जाती हैं। सुखविंदर सिंह इसी श्रेणी के एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी आवाज में रूहानियत और जोश का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उन्हें भारतीय संगीत का वह पावर हाउस माना जाता है जिन्होंने अपनी गायकी से कई यादगार गीतों को कालजयी बना दिया है। 18 जुलाई 1971 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सुखविंदर का संगीत के प्रति प्रेम

बचपन से ही प्रगाढ़ था, उनकी कलात्मक यात्रा मात्र 8 वर्ष की आयु में मंच प्रदर्शन से शुरू हुई थी। मुंबई जैसे प्रतिस्पर्धी महानगर में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया और उनका अटूट संकल्प अंततः रंग लाया।

एक ही गायक में, अब लीजिए सुनिए अस्तित्व फिल्म का ये गीत। गीत और संगीत सुखविंदर सिंह का है। श्रोताओं, सुखविंदर सिंह को देशव्यापी ख्याति 1998 में आई फिल्म दिल से के सदाबहार गीत छैया छैया से मिली। एआर रहमान के संगीत निर्देशन में बनी इस रचना ने सुखविंदर की आवाज को एक नई पहचान दी और उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उनकी आवाज में एक विशिष्ट रफ एंड टफ एहसास है जो उन्हें सूफी, पॉप, रॉक और शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को सहजता से निभाने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है।

एक ही गायक में अब लीजिए सुनिए फिल्म हल्ला बोल का ये गीत। गीत समीर और दुष्यंत कुमार का है, संगीत सुखविंदर का है। श्रोताओं, उनके करियर का ग्राफ केवल व्यावसायिक सफलताओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का मान बढ़ाया है। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के विश्व प्रसिद्ध गीत जय हो के गायन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके लिए उन्हें ऑस्कर के वैश्विक मंच पर सराहा गया। इसके अलावा फिल्म हवाई हवा हवाई के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चक दे इंडिया, कर हर मैदान फतेह, राम रे और दर्द दे डिस्को जैसे उनके गीतों ने न केवल संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया, बल्कि उन्हें एक ऐसा कलाकार बनाया जो हर मूड के गाने को जीवंत कर सकता है।

अब लीजिए सुनिए फिल्म भूतनाथ का ये गीत। गीत जावेद अख्तर का है और संगीत विशाल शेखर का। श्रोताओं, सुखविंदर सिंह की गायकी की सबसे बड़ी ताकत उनकी ऊर्जा है। वे केवल सुरों का मेल नहीं करते बल्कि प्रत्येक शब्द में भावनाओं का समावेश करते हैं। उनकी आवाज में पंजाब की मिट्टी की सौंधी महक और सूफी संगीत की गहराई का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है, चाहे वह फिल्म का रिकॉर्डिंग स्टूडियो हो या लाइव कंसर्ट का मंच। उनका समर्पण और जुनून हमेशा एक जैसा रहता है। उन्होंने गायन के साथ साथ संगीत रचना के क्षेत्र में भी अपना हाथ आजमाया है और कई फिल्मों में बतौर संगीतकार काम किया है।

गायक में अब लीजिए सुनिए फिल्म शूल का ये गीत। गीत समीर का है, संगीत शंकर एहसान लॉय का है। श्रोताओं, आज सुखविंदर सिंह केवल एक पार्श्व गायक ही नहीं बल्कि भारतीय संगीत उद्योग का एक स्तंभ बन चुके हैं। उनका सफर संघर्ष, धैर्य और निरंतरता की एक जीवंत मिसाल है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि कला में सच्चाई और मेहनत का समावेश हो तो सफलता की कोई सीमा नहीं होती। बल्कि आज भी जब देश में जोश, राष्ट्रप्रेम और सूफी गहराई की बात होती है तो सुखविंदर सिंह की आवाज पहली पसंद उभर कर आती है।

0: शूल फिल्म के गीत के साथ ही एक ही गायक कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव, वाचन स्वर दीपा सिंह। सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसे आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में गत माह प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव के दौरे, जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन और योग दिवस आदि प्रमुख घटनाएं चर्चा में रहीं। वहीं जून माह के आखिरी में शुरू हुई मॉनसून की बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जिले में बोनी का कार्य शुरू हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने दो दिवसीय बैतूल

0: जिले के हिल स्टेशन कुकरू पहुंचे। यहां उन्होंने कृष्णा आजीविका स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने समूह द्वारा तैयार किए गए मावा और रबड़ी का स्वाद लिया, महिलाओं से आत्मीय संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्व सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कुकरू प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विकसित होने की अपार संभावनाएं रखता है। प्रवास के दौरान रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान रात्रि चौपाल में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्रामीणों से आत्मीय भाव से खुले मिले। ग्रामीणों ने स्थानीय कुरकू भाषा में पारंपरिक गीत प्रस्तुत किए। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो भजन सुनाकर सभी का मन मोह लिया। इसी बीच प्रदेशव्यापी जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत खेड़ी सावलीगढ़ में किया गया। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। श्री पटेल ने जलगंगा संवर्धन अभियान के सफल संचालन के लिए जिलेवासियों को बधाई दी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश पढ़कर सुनाया। उधर खरीफ सीजन में किसानों को कृषि कार्यों के लिए डीजल की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि किसानों को निर्धारित पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत प्लास्टिक केनों में अधिकतम 50 लीटर तक डीजल उपलब्ध कराया जाए। दूसरी ओर जिले में कनूठा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम ग्राम पंचायत घाट पिपरिया में आयोजित किया गया। आयोग के ब्रांड एम्बेसडर सारिका घारू के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और सुधार करवाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारंपरिक पपेट शो रहा, जिसने स्थानीय भाषा में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कहानी को बेहद रोचक अंदाज में पेश किया। उधर गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं का पता लगाने और समय रहते उनका उपचार सुनिश्चित कर सुरक्षित प्रसव करवाने के लिए प्रतिमाह 9 और 25 तारीख को प्रधानमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. जगदीश ठकोरे ने बताया कि जिले में 25 जून को आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर में 508 गर्भवती महिलाओं की जाँच की गयी और 222 हाई रिस्क चिन्हित कर 50 की सोनोग्राफी भी की गयी। वह आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय स्कूलों के शिक्षकों का 23 जून से 25 जून तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें किशोर बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उनके सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। उधर शहर में नशा मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशा मुक्त समाज का निर्माण करना रहा। कार्यक्रम में नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसानों पर पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई गई। उपस्थित युवाओं को नशा मुक्ति हेल्पलाइन की जानकारी दी गई। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को जिले भर में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, जन अभियान प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य सुधाकर पंवार उपस्थित थे। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए सबरंग कार्यक्रम, इसमें सुनिए कुमाऊनी लोकगीत। आज कलाकार हैं डूंगरमल और साथी। आइए इनसे सुनते हैं घूमर लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे सबरंग कार्यक्रम। इसमें आपने सुने कुमाऊनी लोकगीत। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को अपनी रेडियो मित्र दर्शना गोस्वामी का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली से। आवाज लता मंगेशकर और मुकेश की है। गीत मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। हमारे श्रोताओं ने ईमेल भेजी है। डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजबीए राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीए।

मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से ईमेल भेजी है महाराज कीर्तन, परी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा।

चंडीगढ़ सिटी से हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली का ये गीत।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म महबूब की मेहंदी से, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। ईमेल आई हुई है, पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से हैं दिनेश चौहान। बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर बबलू अंसारी। गोला बाजार बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से हैं राज एंड डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। अस्तुपुरा जिला मऊ से हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। आकोट से हैं विनायक बेड़े, श्रीमती मंगला बेड़े, विजय शुभम बेड़े, पवन जरिए, संजीव डाबेराव। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म महबूब की मेहंदी का ये गीत।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म आंखियों के झरोखे से। आवाज हेमलता की है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। हमारे श्रोताओं के ईमेल आए हैं। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक आलौकिक चंसोलिया। भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता। ये ईमेल भेजा है दीपेश वर्मा ने। ग्राम पीपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर।

दुर्गा कॉलोनी हांसी से ये है ईमेल आया है। राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, मरटकट से दिग्दर्शन और कविता गौण। निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से है अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा कलेर बिहार से, मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन। बागपत उत्तर प्रदेश से है संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म अखियों के झरोखों से का ये गीत हेमलता की आवाज़ है।

आपकी ये पसंद कार्यक्रम का अंतिम गीत है फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से। आवाज मोहम्मद रफी की है, गीत मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। हमारी ईमेल आई हुई है, जिला नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंत और मनु। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से है ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय श्रीमती अमित कुमार राय हैप्पी राय दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय और श्रीमती रोशनी राय। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंत और मनु। पीहरा बाजार झुमरी तलैया से शिवानी कुमारी प्रियंका कुमारी साहू अभय कुमार गुड्डू कुमार। खदान कोठी बोरोपारा चौक बस बेरिया डब्ल्यूबी से श्रीमती मुन्नी देवी शाह जयप्रकाश साव बसंतलाल साव हीरा मोती पन्नालाल रिया जिया टूसी आयुषी अनिरुद्ध बाबू। साथ ही शिव मंदिर चौक। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अगले कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

श्रोताओं, अगर धरती की धड़कनों को सुनना हो तो किसी जंगल के एकांत में कुछ पल बिताइए, किसी पेड़ की छाया में बैठकर देखिए, वहाँ हवा केवल बहती नहीं कितनी ही स्मृतियाँ साझा करती है कि कभी ऐसे ही अरण्य में ऋषियों के मुख से ऋचाएं फूटी थीं, वन के एकांत गीत में ही वेदों ने जन्म लिया था, कि कभी ऐसे ही अरण्य में श्री राम भटके थे अपनी सीता के लिए, कभी ऐसे ही वनों की नीरवता में ईश्वर को ढूंढते बुद्ध ने स्वयं को पा लिया था। वृक्षों की पत्तियां झूमती हुई समय के गीत गुनगुनाती हैं, और जंगल का सन्नाटा इन वृक्षों के प्रति कृतज्ञ होता हुआ कहता है कि तपस्वियों की तरह धरती पर घोर साधना में लिप्त जान पड़ते हैं ये वृक्ष, जिनका सब कुछ दूसरों के लिए है। निश्चित ही ये वृक्ष वाल्मीकि, दुर्वासा या बुद्ध के वंशज होंगे।

0: तभी तो ये ऋषि पुत्र जब भी लिखते हैं वसंत ही लिखते हैं। श्रोताओं, दरअसल पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, वो ऋतुओं के इतिहासकार हैं, पीढ़ियों के साक्षी हैं और आने वाले कल के सबसे विश्वसनीय प्रहरी भी। पेड़ों से ही हमारा कल, आज और कल है। श्रोताओं, हमारे देश में इन्हीं पेड़ों के उत्सव का सप्ताह होता है वन महोत्सव, जो जुलाई महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस धरती के लिए, हमारे आपके लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे सुंदर उपहार एक पौधा ही है, क्योंकि एक पौधा केवल आज को ही नहीं, आने वाले कल को भी हरा भरा करता है। तो आज बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में, हम और आप मिलकर वन महोत्सव मनाएंगे, बात करेंगे पेड़ों की, हरियाली की, पेड़ों से जुड़ी आपकी यादों की और आपके संकल्प की। बताइए हमें कि आपकी जिंदगी का वो एक पेड़ कौन सा है जिससे आपकी सबसे आत्मीय यादें जुड़ी हुई हैं? किसी पेड़ से आपका कोई खास रिश्ता हो तो बताइए हमें, और पेड़ों से जीवन का क्या रिश्ता है ये भी बताइए। साथ ही बताइए हमें कि वन महोत्सव आप कैसे मना रहे हैं, क्या संकल्प है आपका इस बरस। हमें उम्मीद है कि आपकी बात किसी न किसी के मन में हरियाली का एक नया बीज जरूर बोएगी। बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं खेरो कला, ग्राम खेरो कला, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश से रमेश नायक बोल रहा हूँ। बहन जी, कौन बोल रही हैं आप?
0: मैं सुनीता बोल रही हूँ।
1: अरे सुनीता सिंह, दो साल से इंतजार किया है आपका, जो है सुनीता सिंह से बात हो जाए।
0: जी जी जी जी,
1: मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप लोगों को सच बोल रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: मैं आपका जो है आवाज अच्छी लगती है बोलने की, और आपको बोलने का आइडिया भी बड़ा अच्छा है।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश नायक जी, कैसे हैं?
1: ठीक है जी।
0: हाँ, मौसम कैसा है?
1: मौसम तो परसों बारिश हो गई काफी, अब तो बोनी भी चालू हो गई।
0: बिल्कुल, तो बारिश का मौसम आ गया है, और आप जानते ही हैं कि जुलाई के महीने का जो पहला सप्ताह होता है उसे हम वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं। बारिश के
1: जैसे आपने कहा कि पेड़ पौधे लगाइए, शासन भी, सरकार भी इसी पर जोर दे रही है बहन जी।
0: जी जी,
1: पेड़ लगाना भी चाहिए और लगाए लोग बाग, उसकी परवरिश करें। जो नहीं कि पेड़ लगा दिया और फिर छोड़ दिया, परवरिश करें उसकी, जैसे जानवर ना खा पाए, पानी डालते रहे।
0: जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सिर्फ पौधा लगा देना आपका दायित्व नहीं है, उसकी परवरिश भी करें, उसको संरक्षण भी दें। हम ये जानना चाह रहे थे रमेश जी कि पेड़ों से जुड़ी कोई आपकी याद हो, बचपन की कोई याद हो। अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं तो पेड़ों के बीच खेलते भी हैं, पेड़ों पर चढ़कर भी खेलते हैं, है ना? तो कोई बचपन की याद हो, किसी पुराने पेड़ की याद हो तो उसका आप जिक्र कर सकते हैं।
1: अब पेड़ की याद तो कुछ नहीं, पौधे तो लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं बहन जी। यहाँ के छोटे में बस वो पेड़ों पे चढ़ के खेला करते, गिल्ली डंडा कहीं कुछ, ये यही याद है। और पेड़ काटने वाले एक दो आदमी नहीं है, कई लोग काटते हैं। अब बताओ वन या जंगल कैसे रहे, और इसका बहुत जरूरी है, इसलिए शासन भी जो है इसको गौर कर रही है कि पेड़ लगाओ, माँ के नाम लगाओ, उसकी परवरिश करो। ये लगा देने से कुछ नहीं होता है, उसकी परवरिश भी करनी पड़ती, जानवरों से बचाया, बकरियों से, कहीं गाय भैंसों से, या उसकी जो है तारबारी भी करनी पड़ती है बहन जी, सुनीता जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो रमेश जी ये बताइए कि आपका क्या संकल्प है, आप कितने पेड़ लगाएंगे इस बार?
1: नहीं, हमने लगाए भी है और भी जो है लगाएंगे हम।
0: कौन कौन से पेड़ लगाए हैं?
1: ऐसे देखो, छोटे मोटे पेड़ लगाना नहीं होता है, पेड़ तो लगा तो बड़ा का या पीपल का या महुआ का।
0: नीम,
1: ये ठोस पेड़ होते हैं।
0: तो आप कह रहे हैं कि नीम, पीपल, बड़, है ना, आंवला, इस तरह के अगर हम पौधे लगाते हैं तो आने वाले समय में
1: हो, जैसे ये खटाऊ पेड़ होते हैं, ये 100-100, 200-200 साल, 500-500 साल की उम्र होती इनकी।
0: जी, तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि ऐसे पेड़ लगाएं जिनकी उम्र भी लंबी होती है, तो आपके लगाने का जो फायदा है वो लंबे समय तक लोगों को मिलेगा।
1: जी जी जी जी, अब आज फार्मेसी प्रोग्राम तो है नहीं बहन जी।
0: नहीं, आज तो हमारी पसंद का गीत आप सुनेंगे, आपने हमें फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा।
1: सुनीता जी
0: जी,
1: गीत हम ठीक नहीं, हम फरमाइश नहीं बता रहे, लेकिन कोई गीत सुनवाना तो रफी की आवाज हो या लता की आवाज हो, इनमें से कुछ कुछ अलग गीत सुनवा दे। एक मोहम्मद रफी, एक लता मंगेशकर, इनका कोई सानी नहीं है, ना कोई गाय हुआ है ना होगा।
0: बिल्कुल, तो रमेश जी आपने हमें फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो औषधीय पेड़ हैं, पौधे हैं, जैसे आपने नीम की बात की, आंवला, जामुन, इस तरह के अगर पेड़ लगाते हैं तो दोहरा लाभ हो जाता है ना?
1: जी मैम,
0: बचपन की कोई याद हो पेड़ों से जुड़ी हुई तो आप साझा कर सकते हैं।
1: बचपन की वो तो बता रही मैडम कि एक पेड़ लगाया था नीम का हम लोगों ने, अभी वो नीम का पेड़ है, एक जामुन का लगाया था, अभी जामुन का पेड़ भी है, बचपन की लगभग चल रहा है।
0: क्या बात है, क्या
1: तो
0: बात है,
1: 50 साल पहले हमारे पिताजी वगैरह ना फोन लगा था,
0: आप
1: हम
0: लोगों ने
1: लोग
0: मिलकर लगाया
1: अच्छी
0: था।
1: तरह, आपके आंवला भी लगा है, नींबू भी लगा है,
0: बहुत सुंदर बात।
1: जामुन भी लगा है।
0: तो देखिए, पिताजी ने पेड़ लगाया, उसके फल आप खाते हैं, आप जो पेड़ लगाएंगे आने वाली पीढ़ी उसका फल खाएगी, उसका लाभ
1: बिल्कुल
0: लेगी,
1: बिल्कुल
0: इसलिए ये जिम्मेदारी
1: बिल्कुल
0: हमारी होती है कि हम
1: बिल्कुल
0: वृक्षारोपण जरूर करें। तो राम सखी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी, सनी शर्मा, गंजवासो राजेंद्र नगर।
0: तो सनी जी कैसे हैं?
1: दीदी बढ़िया है।
0: अच्छे हैं। तो आज के विषय पर क्या कहेंगे? हम वन महोत्सव मना रहे हैं, पेड़ों का क्या महत्व है जीवन में, वनों का क्या महत्व है जीवन में, और पेड़ों से जुड़ी कोई याद अगर आपकी हो तो वो भी साझा कर सकते हैं आप।
1: पेड़ हमको फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और छाया देते हैं।
0: बिल्कुल। और जो पेड़ है वो बारिश को बुलाकर भी ले आते हैं।
1: जी जी जी जी,
0: जी। और कितनी चीजें उनसे मिलती हैं, फल फूल लकड़ी सब कुछ पेड़ों से हमें प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है कि पेड़ों से ही जीवन है, है ना? तो अभी जब हम वन महोत्सव मना रहे हैं तो आप बताइए कि कौन सा पौधा लगाने का आपने निश्चय किया है?
1: नीम का।
0: नीम का पौधा लगाएंगे, किस लिए?
1: फल भी मिलेंगे, छाया भी मिलेगी
0: और ऑक्सीजन भी, है ना? बहुत गुणकारी पौधा है नीम का, जरूर लगाना चाहिए नीम का पेड़। और कोई याद अगर बचपन की हो, पेड़ों के साथ तो हमारा बचपन बीतता है, अगर खास तौर पर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, है ना? तो बचपन की कोई याद हो पेड़ों से जुड़ी हुई तो वो आप साझा कर सकते हैं।
1: पेड़ों पर चढ़ना, पेड़ों पर झूला डालना।
0: सावन के महीने में पेड़ों पर झूला डालना। हाँ
1: दीदी।
0: अभी भी डालते हैं?
1: हाँ दीदी, अभी भी डालता।
0: क्या बात है। तो देखिए, पेड़ों के साथ एक आनंद है, जीवन का उत्सव है, है ना? तो हमें बहुत अच्छा लगा सनी जी आपसे बात करके, और जो आपने कहा है कि आपका संकल्प है एक नीम का पौधा आप लगाएंगे, जरूर लगाइएगा। हमारी गुजारिश ये रहेगी कि पौधा लगाने के बाद भूल मत जाइएगा, जैसे एक छोटे से बच्चे को परवरिश की जरूरत होती है, पेड़ों को भी परवरिश और संरक्षण की आवश्यकता होती है।
1: रोज पानी डालना, जी, खाद डालना।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। रोज पानी डालना, खाद डालना और उसका संरक्षण करना कि उसे जानवरों से कोई हानि ना हो, जानवर उसे खा ना जाए, है ना? तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप तक भेजते हैं प्यारा सा गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो मैम,
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: नमस्कार। जानकी गुप्ता, ग्राम भांगवन थनगा, जिला टीकमगढ़ मसूरी से बोल रहे।
0: जानकी जी टीकमगढ़ से बोल रही हैं, कैसी हैं?
1: बहुत अच्छे हैं मैम, और फोन लग जाता तो और अच्छी हो जाती।
0: बिल्कुल, बहुत देर से हमारे श्रोता प्रयास कर रहे होते हैं, और जब फोन लगता है तो ऐसा लगता है जैसे मेहनत का फल मिल गया हो, है ना
1: हम रोटी बना रहे थे, फोन
0: जी।
1: लगा रहे थे,
0: हाँ
1: लग
0: हाँ
1: गया।
0: रोटियां बना रही थी आप।
1: हाँ, फोन रखे थे,
0: अच्छा
1: पास में लगा, नंबर रखे थे, डाल कर रहे थे, इसलिए लग गया।
0: बहुत अच्छी बात है कि काम के बीच भी आपको आकाशवाणी की सुध रही, याद रखा आपने।
1: रेडियो सुनते रहे थे।
0: हाँ, तो आज के विषय पर क्या कहेंगी? वन महोत्सव पर हम बात कर रहे
1: मैं
0: हैं।
1: ये कहना चाहती कि वृक्ष अपन को लगाने चाहिए, अपन को हवा भी देते हैं और फल भी देते हैं, और वृक्ष की सब वर्षा भी होती है जहाँ वृक्ष ज्यादा लगे रहते हैं।
0: बिल्कुल। तो आपके आसपास किस
1: हमारे
0: किस
1: आसपास, हमारे खुद दरवाजे के पास नीम लगी, बहुत बड़ा वृक्ष नीम का।
0: अच्छा नीम का पेड़ है आपके घर के
1: हाँ, और हम
0: पास?
1: अपने आंगन में लगाए, एक मीठी नीम का पेड़ लगाए, एक
0: हाँ
1: गुलाब का पेड़ लगाए।
0: जी। तो इस बरस वन
1: इस साल
0: महोत्सव
1: में
0: में
1: हम और दूसरा पेड़ लगाएंगे, और
0: कौन सा लगाएंगे?
1: नीम ही का लगाएंगे, एक और मीठी नीम का।
0: मीठी नीम। तो चलिए, ये तो छोटा
1: हाँ
0: सा पौधा हुआ, लेकिन अगर कुछ बड़े फलदार वृक्ष हम लगाते हैं या कुछ बड़े पौधे लगाते हैं जो कि आगे चलकर बड़े वृक्ष बनते हैं, जिनकी उम्र बहुत लंबी होती है, तो बहुत अच्छा होता है। जैसे आप पीपल का कोई पौधा लगा दें, या
1: हाँ
0: आप
1: मुझे सही कहीं लेके हमारे यहाँ ऐसी जगह ना
0: अच्छा
1: लगाने
0: अच्छा
1: के। हाँ,
0: जी। फिर भी गांव में सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से किसी एक स्थान पर भी लगा
1: ऐसे तो
0: सकते हैं।
1: बहुत पेड़ लगे हमारे ऐसे
0: हाँ
1: अगल बगल, बहुत
0: जी
1: ज्यादा मीठी नीम के लगे, पीपल के लगे,
0: जी
1: बरगद का लगा
0: तो
1: पेड़।
0: देखिए, किसी ने कभी लगाया था तो ये पेड़
1: हाँ
0: अभी
1: लगाया है
0: है ना, तो ये पेड़ आज
1: अभी
0: आपके लिए
1: अभी
0: हैं।
1: कुछ कुछ पेड़ के पीपल के छोटे छोटे भी हैं।
0: तो उनको पानी देते रहिए, उनको संरक्षित करिए। और हम ये जानना चाह रहे थे जानकी जी कि बचपन हमारा अगर ग्रामीण इलाके में बीता है

0: तो पेड़ों से बड़ा गहरा रिश्ता होता है। तो कुछ याद अगर रोचक सी हो पेड़ों से जुड़ी हुई तो वो आप साझा कर सकती हैं हमसे।
1: चाचा के जब छोटे थे हम तो जिन्हें के अमरूद के पेड़ है ना,
0: हाँ
1: बहुत
0: हाँ
1: अच्छा रखे थे
0: और अमरूद खाते थे
1: नहीं जाने के बगीचा में लगे थे तो
0: जी
1: जाते थे तो
0: हाँ।
1: चढ़ते थे फिर अमरूद खाते थे और छुपा छुपल खेलते थे पेड़ों पे
0: वाह वाह वाह, पेड़ों पर आप मतलब छुपा छुपोवल खेलती थी, बहुत अच्छी बात
1: हाँ
0: है। और कई बार तो पेड़ पर बैठकर ही हम फल खाया करते थे अमरूद के,
1: हाँ
0: है ना।
1: चढ़ जाते थे पेड़ों पे
0: हाँ मुझे तो याद है कि मैं अपने अमरूद के पेड़ पे चढ़ के अमरूद भी खाती थी और वहीं पढ़ाई भी करती थी
1: हाँ सही कह रही बात है।
0: तो चलिए, पेड़ों की अच्छी याद आपने साझा की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत
1: थैंक यू मैम।
0: धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। नमस्कार, नाम बताएं।
1: हाँ दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: आपके नियमित श्रोता भागचंद्र साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज वासोदा, जिला विदिशा।
0: अच्छा, भागचंद साहू जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है दीदी, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। मौसम कैसा है?
1: मौसम बढ़िया है, गंज वासोदा में थोड़े बदल हो रहे हैं।
0: तो बारिश आ रही है और वन महोत्सव मनाया जा रहा है। मौसम को देख कर ही जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है, तो हम चाहते हैं कि आप इस विषय पर कुछ कहें, अपने विचार रखें वन महोत्सव पर, वनों के महत्व पर, पेड़ों से जुड़ी कोई याद हो तो वो भी साझा कर सकते हैं।
1: हाँ, हम तो ये कहना चाहते हैं दीदी, देखो हर व्यक्ति को पेड़ों की कटाई बिल्कुल ना करे, क्योंकि ये बरसात, इसी के कारण से बरसात डिफरेंस हो रही है।

0: आदमी क्या है, वृक्ष वगैरह काट रहे हैं, पेड़ पौधे कम लगा रहे हैं, पेड़ पौधे ज्यादा लगाए अपन ऑक्सीजन मिलेगी है और छाया भी मिलेगी एक प्रकार से, उनमें पानी समय समय पानी दें, उनकी छटाई करें
1: उसकी परवरिश
0: करें। हमने
1: तो
0: एक नीम का पेड़ लगाया था दीदी।
1: अच्छा,
0: वो अभी लगा है।
1: अच्छा, कब लगाया था?
0: हमने दीदी कम से कम होगा 20 साल हो चुके हैं उसको।
1: वाह, तो ये तो बड़ा हो गया होगा पेड़।
0: अरे बहुत बड़ा है दीदी, इतना अच्छी छांव है उसकी, गर्मी में वहीं बैठते हैं हम।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: हाँ हाँ, नीम का पेड़ कितना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।
1: बहुत अच्छा होता है, गुणकारी पेड़ है ना, कई औषधीय गुण इसके अंदर होते हैं। आप इस बरस कौन सा पेड़ लगाने वाले हैं
0: दीदी? अब तो हम देखो अब उसका लगाएंगे, आम का पेड़ लगाना चाहते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है,
0: हमारा आम का पेड़ लगाएंगे जिससे सबको फल भी मिले खाने के लिए।
1: हाँ,
0: और एक प्रकार से छाया भी मिले।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है भागचंद साहू जी कि आपने एक नीम का पेड़ लगाया था 20 बरस पहले और अब आप कह रहे हैं कि आम का पेड़ लगाएंगे जो कि फल भी देगा।
0: बिल्कुल, आम का एक पेड़ जरूर लगाएंगे, माँ के नाम।

0: आम का
1: जी
0: पेड़ लगाएंगे जिससे सबको फल भी मिले खाने के लिए और
1: हाँ
0: एक प्रकार से छाया भी मिले।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है भागचंद साहू जी कि आपने एक नीम का पेड़ लगाया था 20 बरस पहले और अब आप कह रहे हैं कि आम का पेड़ लगाएंगे जो कि फल भी
0: हाँ बिल्कुल,
1: देगा।
0: आम का एक
1: हाँ
0: पेड़ जरूर लगाए और माँ के नाम लगाए।
1: क्या बात है, एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाइए।
0: बिल्कुल लगाएंगे जी, हमारा वादा है।
1: तो भागचंद साहू जी बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर कि आपने एक नीम का पेड़ लगाया था 20 बरस पहले जो बहुत बड़ा हो गया है, छाया देता है, और इस बरस आप आम का पेड़ लगाने वाले हैं। तो इस संकल्प को बनाकर रखिए और अपने साथ और भी लोगों को जोड़िए। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हमें फोन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: अपने फूलों के लगा लिए, कभी पीपल का लगा लिया, कभी नीम का लगा लिया, कभी इमली का लगा लिया।
1: अच्छा,
0: तो
1: बहुत
0: ये क्या
1: अच्छी
0: है कि
1: बात है।
0: शायद आप रख भी रहते हैं मैम, और आगे अपने को फायदा भी है इनसे।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी फायदा है, आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा है, इसलिए
0: जी
1: वृक्षारोपण
0: हाँ
1: जरूर करना चाहिए। अच्छा, बचपन की कोई याद हो आपको, अगर जंगलों से जुड़ी हुई, वनों से जुड़ी हुई या पेड़ों से जुड़ी हुई
0: जी
1: कोई याद
0: याद है
1: हो?
0: ना मैम, याद है। पहले बचपन में छोटे थे तब हमारे दादाजी आम का वृक्ष लगाते थे खेतों पे, तो वो छोटे छोटे वृक्ष जो रहते थे ना, तो उस समय हम वो कलम तारी का जो खेल होता था एक
1: जी
0: पहले,
1: जी
0: जो उस हिसाब से वो खेल याद है बचपन का, हम खेलते थे छोटे थे
1: तो आप
0: बस।
1: मतलब पेड़ों पर आप लोग खेलते थे
0: जी हाँ,
1: बहुत
0: पेड़ के,
1: अच्छी
0: वो
1: बात है।
0: खेल ही पेड़ के वृक्ष पे था मैम।
1: तो क्या करते हैं इस खेल में?
0: अरे जैसे एक लकड़ी ले लेते हैं, और चार पांच जो साथ में अपने मित्र लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ऊपर वृक्ष पे चढ़ के उस लकड़ी को फेंकते थे, इतना दूर फेंकते थे कि जहां तक जा सके, वो उसको
1: जी
0: फेंकते, तो वो एक जो लड़का जो रहता वो उसको लेके ना वापिस वृक्ष के नीचे रख देता उस लकड़ी को, और
1: ओहो
0: ऊपर पेड़ पे चढ़ के हम सबको पकड़ने के लिए आते थे।
1: क्या
0: तो
1: बात
0: एक एक
1: है
0: करके जो नीचे कूद के ना उस लकड़ी को हाथ लगा रहे, उसको उसको तो पकड़ नहीं पाता, वो ने जो ऊपर रहते उनको पकड़ते थे।
1: तो चलिए, बड़ा ही रोचक सा ये खेल था। कोशिश कीजिएगा कि आपके बच्चे भी इसको खेलें, उन्हें सिखाइए क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी मेहनत होती होगी कि स्वास्थ्य भी बनता होगा इसमें, है
0: जी
1: ना?
0: हाँ, स्वास्थ्य के लिए तो खेल बहुत लाभदायक होते हैं मैम।
1: जी जी तो गोविंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत प्यारी
0: जी
1: मीठी सी याद भी
0: थैंक यू
1: आपने
0: मैम,
1: साझा
0: थैंक
1: की,
0: यू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: गोविंद पाटीदार।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी मंदसौर जिले से।
0: मंदसौर जिले से। तो गोविंद जी, आज हम वन महोत्सव पर बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? वनों का क्या महत्व है? जंगल कभी गए हैं आप?
1: जी हाँ।
0: तो किस तरह का?
1: वनों का तो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है मैम। पहले के जमाने में इतने जंगल थे कि मतलब बिना कहे बारिश हो जाती थी। अब मतलब अपने आसपास का जो वातावरण रहता था वो बहुत ही शुद्ध और अच्छा रहता था।
0: जी जी, वन ज्यादा होते हैं तो पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करते
1: हाँ,
0: हैं,
1: आकर्षित करते हैं। हाँ, सही बात।
0: और बारिश तो होती ही है, मिट्टी के कटाव को वो रोकते हैं। तो कौन सा पौधा लगाएंगे इस साल आप?
1: जी इस साल तो हम आम का पौधा लगाएंगे।
0: आम का? अच्छा, तो अकेले लगाएंगे या आपके साथ कुछ और दोस्त भी हैं?
1: जी हमारा तो खेती बाड़ी है, जो हम तो बोले अकेले लगाएंगे। मैं हर साल हमारे तो पौधे लगाने का काम रहता, कभी नींबू का लगा लिया, कभी
0: जी जी जी, जी।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम सुमत कुमार जैन, रिटायर्ड शिक्षक, पिंडरई जिला मंडला से बोल रहा हूँ मैडम।
0: आज वन महोत्सव पर हम बात कर रहे हैं और आपने जैसा कि बताया कि आप एक शिक्षक रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से आप?
1: वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है मैडम। ये वन महोत्सव जो मनाया जा रहा है, ये भी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन से भरपूर, छांव से भरपूर जीवन जीने के लिए वृक्षों की बहुत आवश्यकता है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: माताएं बहने कुछ वृक्षों की, जैसे बड़ का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, इनकी पूजाएं भी करती हैं और इनको बहुत महत्व भी देती हैं। तो मैं समस्त लोगों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण और जीवन को सफल बनाएं।
0: तो बहुत ही सुंदर।
1: मैं अपने स्कूली जीवन में भी नीम के पेड़, पीपल का पेड़ और कंजी का पेड़, ऐसे पेड़ों को लगाते रहता था और उनकी देखभाल भी करता था और आज वो जीवित भी हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। और देखिए, जैसा संदेश आपने दिया है, कुछ इसी तरह का आह्वान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, है ना, चाहे धरती माता के नाम या अपनी माता जी के नाम, एक पेड़ लगाने का आह्वान उन्होंने भी किया है देशवासियों से। तो इस बरस आप कौन सा पेड़ लगाएंगे?
1: मैं इस बार तो आम का पेड़ अभी लगाया हूँ, उनकी गोहियाँ जो है अच्छी प्रकार की गोहियाँ हैं, उनको मैंने अभी लगा दिया हूँ अपने घर के सामने। अब वो जब छोटा पौधा बन जाएंगी तो मैं उनको कहीं व्यवस्थित लगाने का प्रयास करूंगा मैडम।
0: तो आप कुछ
1: फलदार वृक्ष जीवन में सफलता, फलदार वृक्ष जीव, सब लोगों को खाने पीने का मौका भी मिलता है, पेड़ पशु पक्षियों को भी उसमें आवास बनाने की सुविधा मिल जाती है। जीवन में सफलता ही देते हैं मैडम। पेड़ पौधों को काटना या उनको नुकसान पहुंचाना हमारे मानव जीवन को खतरा पैदा करना है।
0: बिल्कुल। तो आपका संदेश लोगों तक पहुंचा सुमत कुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी मैडम, धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जसराम जाटव
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जिला सीपी, गांव का नाम जोराई।
0: जोराई से जसराम जाटव जी बोल रहे हैं। क्या कहेंगे वन
1: हाँ,
0: महोत्सव पर? किस तरह से आपके यहाँ वन महोत्सव मनाया जा रहा है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वृक्षारोपण किया जाता है इस सप्ताह में, तो वन महोत्सव में आप लोग क्या कर रहे हैं और पेड़ों का क्या महत्व है, आप क्या कहेंगे?
1: पेड़ों का मतलब यह है मैडम, क्या पेड़ लगाना चाहिए तो इससे छाया मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलता है मैडम, इससे बहुत अच्छा रहता है। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: मैडम,
0: आप कौन सा पेड़ लगाएंगे इस बरस?
1: या मैडम इस तरह पेड़ लगाएंगे, क्योंकि इस तरह पेड़ लगाएंगे तो बरसात आएगी तो अच्छा, अच्छे से हो जाएगा ना।
0: हाँ, ये तो महत्व की बात हो गई। आप कौन सा पौधा लगाने जा रहे हैं?
1: आम का पेड़ लगाने की सोच रहे हैं मैडम।
0: आम का पौधा लगाएंगे, और उसको जब लगाएंगे तो उसकी
1: हाँ
0: परवरिश भी कीजिएगा और उसको संरक्षण भी दीजिएगा, ताकि वो एक बड़ा पेड़ बन सके, है ना?
1: हाँ वो तो सही है।
0: तो कोई याद है बचपन की पेड़ों से जुड़ी हुई?
1: हाँ मैडम, क्या बचपन की याद है, वो क्या है, हम हमारे दोस्त के साथ में रहते थे तो बहुत अच्छा लगता था, खेलना खेलना कूदना अच्छा लगता था मैडम हमको।
0: तो पेड़ों पर चढ़ के खेलते थे?
1: हाँ मैडम, जो क्या पहले पेड़ पे जो पेड़ वाला जो खेल नहीं होता है वो खेल को खेलते थे पहले।
0: कौन सा खेल?
1: अरे जो पेड़ पे खेलते है ना, जो क्या बोलते हैं,
0: लुका छुपी?
1: रक्षाबंधन बोलते,
0: क्या बोलते हैं?
1: वो रक्षाबंधन बोलते थे मैडम। तो क्या है, इस पे डंडा, एक एक एक लकड़ी का डंडा लेते थे तो इस पे पेड़ पे खिलका देते थे।
0: हम समझ गए, हमारे एक और श्रोता ने इस खेल का नाम बताया था। लुका
1: हाँ
0: छुपी की भी बात कुछ लोग करते हैं इसमें। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके आसपास इस तरह के खेल हैं जो पेड़ों से जुड़े हुए हैं, और इन खेलों को आप
1: हाँ
0: खेलते हैं। आज के बच्चे भी खेलते हैं?
1: मैडम, क्या बच्चे भी खेलते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। पेड़ पौधों के
1: हाँ
0: साथ जब आप रहते हैं तो एक रिश्ता उनसे बनता है आपका, है ना? बचपन की एक याद आपके मन में है कि आप किस तरह पेड़ों के साथ खेलते थे। तो जसराम जी, आपने हमें फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। आम का पौधा जरूर लगाइएगा, और कुछ लोगों को और प्रेरित कीजिएगा कि वो भी पौधे लगाएं। तो आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: मैम जी आपका स्वागत। मैं आपका नीमे सोता बोल रहा हूँ जी। जय नरसिंह देव FM रेडियो ग्रुप ग्राम करकडेल तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार।
0: कमलेश कहार जी, आपने हमारा स्वागत किया जबकि स्वागत हमें करना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: सब कुशल है मैम जी। हरियाली के बीच में खड़ा हूँ मैम जी मैं आज।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहेंगे, वन महोत्सव किस तरह से मनाया जा रहा है?
1: अच्छा मैम जी विषय यही है।
0: हाँ जी, विषय यही है, वन महोत्सव पे हम बात कर रहे हैं, वनों पर, पेड़ों पर।
1: तो मैं थोड़ा सा अपना माहौल वहाँ को देखा हाल सभी श्रोताओं को और आपको सुनाना चाहूंगा आकाशवाणी के
0: जी
1: माध्यम से
0: जी
1: कि मेरे सामने चांदनी का वृक्ष लगा है जिसमें कि छोटे छोटे फूल लगे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और दूसरा वृक्ष कह सकते हैं नींबू के लगा है, बिही
0: अच्छा
1: का लगा है जिसमें फल भी फले हैं बिही के, और कम से कम बिही के 10-12 वृक्ष ऐसे हैं जो फले हुए हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: और
0: तो ये बताइए कि वनों का क्या महत्व देखते हैं आप कमलेश जी?
1: देखिए वनों का महत्व यदि वन है तो हम है।
0: बिल्कुल
1: यदि ईमानदारी से बात की जाए, सचमुच में बिल्कुल हकीकत में जमीनी स्तर पर बात की जाए
0: जी,
1: तो वन के माध्यम से हमारा जीवन है। यानी जंगल और जीवन ये दोनों आवश्यक है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: यदि जीवन चाहिए तो जंगल जरूरी है। जंगल किसका? कंकीण का नहीं मैम जी, पेड़ पौधों का।
0: पेड़ पौधों का बिल्कुल। अगर वन है तो ऑक्सीजन है ना, वन है तो मिट्टी का कटाव रुकता है, वन है तो प्राकृतिक जो जीव है, जीव जंतु, उनको भी आवास मिलता है, और हमें भी फल फूल लकड़ी औषधि सब वनों से प्राप्त होता है ना।
1: और वन के माध्यम से मैम जी देखिए बरसात है वो आकर्षित होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखिए मैम जी यही कह रहा था कि पौधे की बात हुई है तो मैं तो मैम जी सबसे ज्यादा पौधे छोटे रूप में पसंद करता हूँ। मैंने कभी बरगद का वृक्ष लगाया था जो कि आज वो पेड़ का रूप आकार ले चुका है, और एक नीम का लगाया था, उसकी नीम की छा में आज वर्तमान में लोग खड़े होते हैं।
0: क्या बात है, आपने दोनों बड़े महत्वपूर्ण पेड़ लगाए, बरगद और नीम। जी
1: मैम जी जब पेड़ के नीचे खड़े होते हैं ना लोग ये महसूस करते हैं कि काश पेड़ होते, लेकिन जब उस छाया से जब वो दूर चले जाते हैं तो उस पेड़ को काटने की भी सोचते हैं। तो ये दो प्रकार की गतिविधियां आती हैं मनुष्य के मानसिक रूप से।
0: जी जी। तो पेड़ों की रक्षा करनी है और पेड़ ना कटे इसके लिए प्रयास करना चाहिए हमें। तो कमलेश जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि बचपन की कोई याद हो पेड़ों से जुड़ी हुई, कितने व्रत अनुष्ठान पेड़ों से जुड़े होते हैं, कितना खेल पेड़ों से जुड़ा हुआ होता है ना, तो इस तरह की कोई याद हो अगर आपके मन में बचपन की।
1: देखिए मैम जी बचपन में पेड़ों के साथ बहुत खेले, क्योंकि बिना पेड़ पौधे के मैं समझता हूँ जीवन अधूरा है, पहले ही कहा है।
0: जी जी।
1: तो बहुत से वृक्षों पे चढ़ते थे, फल भी तोड़ते थे, गिर भी जाते थे, पुनः खरोसी पर चढ़ते थे। तो उछल कून पेड़ों के माध्यम से, पौधों के माध्यम से हुई है, और वर्तमान में मेरे घर में भी छोटे छोटे पौधे लगे हैं फल फूल के, जिनको मैं स्पर्श करता हूँ, रोज ही कह सकता हूँ उनके चरण पड़ता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: फूल चढ़ाने की बात होती है तो फूल चढ़ाने से पहले मैं फूल वाले जो वृक्ष होता है, पौधा होता है, उसके सचमुच में पेड़ पड़ता हूँ और स्वीकृति मांगता हूँ कि मैं एक दो फूल तोड़ लूँ।
0: बहुत सुंदर बात है। आयुर्वेद में भी ये कहा जाता है कि जिन औषधियों को जब वैद्य तोड़ने जाते थे औषधियों को, तो पहले वो उस पेड़ की पूजा करते थे, उस पौधे की पूजा करते थे, अनुमति लेते थे और आभार के साथ वो औषधि वो लेते थे अपने दूसरे लोगों के इलाज के लिए। तो हमारी तो संस्कृति ही आभार की रही है। आपकी बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा कमलेश जी कि

0: आप अगर एक फूल भी तोड़ते हैं तो आभार के साथ तोड़कर उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं।
1: और मैम जी, आभार आपका भी है, बहुत ही अनुकूल वृक्ष विषय रखा है, मेरे अलावा आपने अपनी बात भी रखी है, अच्छा लगा है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया। इसी तरह जुड़े रहिए हमसे, आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत। ये

तो श्रोताओं, आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में ये सफर बेहद हरा भरा और खूबसूरत रहा। आपने केवल पेड़ों की चर्चा नहीं की, उनका महत्व ही नहीं बताया, बल्कि उनसे जुड़े अपने जीवन के वो अनमोल रिश्ते भी हमसे साझा किए जिनकी छांव में यादें महकती हैं, संस्कार पनपते हैं और भविष्य मुस्कुराता है। याद रखिए, पेड़ कभी अपने लिए नहीं जीते, वो खुद धूप सहते हैं और दूसरों को छाया देते हैं। वो बारिश को थामते हैं, पंछियों को घर देते हैं और निस्वार्थ भाव से जीवन को समृद्ध बनाते हैं। और ये भी याद रखिए कि वन महोत्सव का ये सप्ताह तभी सार्थक होगा जब हमारे आपके हाथों से लगाया गया एक छोटा सा पौधा आने वाले सालों में किसी राहगीर को छाया दे, किसी पक्षी को आश्रय दे और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा का उपहार दे। आइए आज एक छोटा सा संकल्प लें कि हम हर वर्ष कम से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे और उससे भी बढ़कर उसे वृक्ष बनने तक अपना स्नेह और संरक्षण देंगे। चलते चलते हमारी यही कामना कि धरती यूं ही हरी भरी रहे, नदियां गुनगुनाती रहें, पंछियों का कलरव यूं ही गूंजता रहे और आने वाली पीढ़ियां भी खिलखिलाती रहें, चहकती रहें, महकती रहें। इसी कामना के साथ अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता करेंगे। इसमें पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ताकाइची के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की आशा है। स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में मध्य प्रदेश के 10 विद्यालय विभिन्न श्रेणियों में चयनित हुए हैं, जिसमें रतलाम जिले के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और राजधानी भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि प्रदेश की नवीन श्रम संहिताओं के प्रस्तावित राज्य नियमों को अधिक सरल, व्यवहारिक और श्रमिक केंद्रित बनाया जाए। गौरतलब है कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर 4 नई श्रम संहिताएं तैयार की गई हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा कल से शुरू हो रही है। इसके लिए आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से कड़ी सुरक्षा के बीच 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। जत्थे में बालटल और पहलगाम रूट के यात्री शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य प्रदेश पहुंचने की संभावना है। आज भोपाल, इंदौर सहित उज्जैन और 40 से अधिक जिलों में तूफान के साथ बारिश का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हमने ली है आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, रामाधार दुबे, सुमेर सुदामा, शेख मुनीर और इनके गांव के लोगों ने ये हमें खत लिखा है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, आप सभी ने हमें लिख भेजी है भीगी पलकें फिल्म के गाने की फरमाइश, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। तो आइए आपकी फरमाइश पर हम सुनवाते हैं भीगी पलकें फिल्म से ये गीत।

भाटरपारा, दंतेर गीसे, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जाविंद्र कुमार वर्मा, बंडा बेलई से लक्ष्मण रेकवार, विनीता रेकवार, वैशाली, वैष्णवी, अनरत, हल्ले, ऋषि रेकवार। आप सभी ने सुनना चाहा है रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का नगमा, जिसे आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी के फरमाइश पर ये नगमा।

आइए सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं साहू नगर से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतना, रोशनी और बेबी प्रियांशी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से नकमा, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये नकमा।

शाहजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि लक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, रिया, रीत, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य। डोंगर गांव से राजपाल गजबीय, राधिका, बेबी अनिष्का और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है फना फिल्म का नगमा, आवाज़ें सोनी निगम और सुनिधि चौहान की। वाइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं फना फिल्म से ये नगमा।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले, खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफी की आवाज में ये नगमा।

0: जीने की राह फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
2: सच?
1: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
2: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
1: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
2: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
1: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं हंसना मना है धारावाहिक का पहला भाग।

दोस्तों नमस्कार। आप सभी को आज की इस खास और बहुत खास महफिल में शामिल करते हुए मुझे यानी आपके दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी को बेहद खुशी हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मनमांगी मुराद मिल गई हो, मीठे मीठा रसगुल्ला मिल गया हो। यूं तो कहने को इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है हंसना मना है, मगर हमारी कोशिश आपको ज्यादा से ज्यादा हंसाने की होगी। इसे यूं भी समझ लीजिए कि हमने आपकी नाक घुमाकर पकड़ने की कोशिश की। दोस्तों हंसना हंसाना अकेले में कभी अच्छा नहीं लगता, बस यही सोचकर हमने अपने साथ शामिल किया है राजेश मिश्रा, विनय जैन, गोपाल तिवारी, संजय गायकवाड़ और मकरंद बड़नेरकर को। ये सभी बारी बारी से आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। अगर पसंद आए तो हमारे साथ हंसिएगा जरूर, और ना पसंद आए तो भी जरूर हंसिएगा। दोस्तों आज के जमाने में हंसना हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। आप हम सभी दिन रात लगे रहते हैं अलग अलग जोड़ तोड़ में, है ना, मगर हमारी जोड़ तोड़ है आपको हंसाने की। तो आइए शुरू करते हैं ये खास प्रोग्राम जो आपके लिए है, जिसका नाम है हंसना मना है।

0: प्रॉब्लम। एक बार कोलंबस गुम हो गया था तो उसने अमेरिका की खोज कर ली थी। अपना मुन्ना गुम हो गया तो किसी देश का उद्धार करेगा वो। एक बच्चे की माँ ने अपने बच्चे से पूछा, क्यों पप्पू, तुम्हें जो भाषण कला में स्कूल में पहला इनाम मिला था, ये खबर सुनकर तुम्हारे पापा ने क्या कहा? लड़का बोलता है, मम्मी उन्होंने कहा कि तेरी माँ के जो गुण हैं वो धीरे धीरे तेरे अंदर आ रहे हैं। एक फिल्म निर्माता ने पूरे दावे के साथ एक बात कही। वो क्या बोलता है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे पूरे देश में भावनात्मक एकता है। तो लोगों ने बोला, भाई कैसे, ये बात आप कैसे बोलते हो? तो उन्होंने कहा, मेरी फिल्म महाराष्ट्र में पहुंची, पिट गई, मध्य प्रदेश में पहुंच गई, पिट गई, बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, जहां मैंने अपनी फिल्म को प्रदर्शित किया वहां पर पिट गई। इस तरह से ऐसा महसूस होता है कि पूरे देश में भावनात्मक एकता है। एक फिल्म डायरेक्टर ने एक कलाकार को बुलाया और उससे कहा, हाँ तो तुम एक काम करो, तुम मेरी फिल्म में एक बेवकूफ का रोल करोगे। लड़का बोलता है, किसका रोल करेंगे सर? ओहो, तुम मेरी फिल्म में एक बेवकूफ कलाकार का रोल करोगे, तो सर इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो डायरेक्टर बोलता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जैसे दिखते हो बिल्कुल ठीक है फिट है रोल में। ट्रेन चल रही थी, लोग सफर कर रहे थे, मैं भी बैठा था, कुछ और भी लोग बैठे थे, कुछ माताएं बहनें बैठी थी, बच्चे भी बैठे थे। जो चार पांच महिलाएं बिल्कुल आमने सामने जो बैठी थी वो आपस में बातचीत कर रही हैं। एक ने कहा, मेरी उम्र इस समय होगी करीब करीब 33। लगे बोला झूठ, उनकी उम्र 33 नहीं, उससे ज्यादा थी। तो सामने वाली बोलती, आपकी 33 से मेरी भी करीब कोई 31 होना चाहिए, जबकि उनकी कम से कम 50 थी, लेकिन बोलती है 31 की। तो कोई बोलता है 25, कोई बोलता है 28, कोई बोलता है कुछ। अचानक ये सब बातें सुनते सुनते ट्रेन तो चली जा रही थी, तो एक लड़का छोटा सा ऊपर बैठा हुआ था, करीब करीब होगी उसकी उम्र 17-18 साल की, वो अचानक गिरा, वो नीचे, कहा वो जो माताएं बहने बैठी थी उनके पास में जाके गिरा। तो एक महिला बोलती, अरे तू कहां से आया? तो लड़का बोलता, मेरा जन्म अभी अभी हुआ है। एक बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था, उनके पिताजी उसके बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। बच्चा पढ़ता है, क्या पढ़ता है, 8 2 6 56, 8 2 6 56, 8 2 6 56। तो उसके पिताजी क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वाह वाह। लड़का फिर पढ़ा, 8 2 6 56, उनके पिताजी तारीफ किए जा रहे हैं। मैं अचानक उनके घर पहुंचा और मैंने जब वो बच्चे को पढ़ते और उनके पिताजी को तारीफ करते देखा तो मैंने जरा सा सोचा विचार किया, फिर मैंने कहा, भाई साहब आपका बच्चा 8 2 6 56 बोल रहा है जबकि ये गलत है, 8 2 16 होता है, आपको कम से कम अपने बच्चे को समझाना चाहिए, आप तो तारीफ किए जा रहे हो। तो उनके पिताजी बोलते हैं, बच्चे के पिताजी बोलते हैं, हमको मालूम है 8 2 16 होता है, मैं अपने बच्चे की तारीफ इसलिए कर रहा हूं वो बोल रहा है 8 2 6 56, मैं मानता हूं कि वो गलत है, उसके बाद मैं अपने बच्चे की तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि कल में और आज में बड़ा फर्क है। मैंने कहा, साहब आपकी बात समझ में नहीं आई, यही बच्चा मेरा कल 8 2 96 बोल रहा था। क्यों लटोरे लाल, यहां आओ भाई, यहां आओ। लटोरे मेरे पास आया और कहता है, नमस्ते बाबू जी, बोलिए। क्यों लटोरे, ये जो तुम कमीज पहने हो इसमें गांठ बंधी है, क्या बात, कुछ बंधा हुआ है क्या?
1: नहीं बाबू जी, गांठ मतलब हमको याद रखने के लिए बांधी गई है।
0: अच्छा, किसने बांधी?
1: मेरी धर्मपत्नी ने ये गांठ बांधी है।
0: क्यों भाई, ऐसा क्या है, क्यों बांधी?
1: नहीं, उन्होंने कहा था हम जो तुमको चिट्ठी दे रहे हैं तुम जाके पोस्ट ऑफिस में डाल देना, भूलना नहीं, इसलिए हम तुम्हारे कमीज में गांठ बांध रहे हैं।
0: हमने, बहुत बढ़िया स्टाइल है भाई, तो वो चिट्ठी कहाँ है?
1: वो हमारी धर्मपत्नी हमको देना भूल गई।
0: ध्यान रहे, आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है हंसना मना है, मगर जब विनय जैन आ जाते हैं तब हंसी आए बिना कहाँ रुकती है।
2: दुनिया में तरह तरह के इंसान हुआ करते हैं, कुछ लोग आधी बात सुनकर उसका पूरा मतलब निकाल लेते हैं और कुछ लोग आधी बात समझे बिना ही उसका मतलब निकाल लिया करते हैं। तो देखिए, आधी बात सुनकर और जो लोग बात दूसरी निकल आती है और उसका गलत अर्थ कैसे निकालते हैं या उसकी कैसी स्थितियां बन जाती है, उसका नमूना देखिए।

एक ऐसे शहर की कहानी लेके आया हूं आपके सामने जहां बहुत सारे तांगे चलते हैं, टैक्सियां भी हैं और वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, मगर तांगे बड़े जबरदस्त थे। तो तांगे पे सफर कर रहे थे एक महाशय जो पहली बार उस शहर में पहुंचे थे। तो सफर करते करते जहां उनको जाना था जा रहे थे, धीरे धीरे तांगा चला जा रहा था, अचानक उन्होंने दो चार गधे उस शहर में देखे। तो कुछ मजाक करने का उनका मूड आ गया, तो तांगे वाले से क्या बोलते हैं, क्यों तांगे वाले भाई आपके शहर में गधे बहुत हैं? तो तांगे वाले ने जवाब नहले पे दहला दिया। उन्होंने सवारी से क्या बोला, हाँ साहब गधे तो खैर हैं, लेकिन कभी कभी बाहर से भी आ जाते हैं। एक पत्नी ने अपने पति से क्या कहा, अजी सुनते हो, मुन्ने को पकड़े रहना वरना गुम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उनके पतिदेव क्या बोलते हैं,

0: एक साहब अपने दोस्त से बहुत दिन बाद मिले और पूछा कि क्या बात है भाई बद्री, बहुत उदास दिख रहे हो। कोई बात नहीं है, कुछ तो बात है यार, तुम हमारे इतने अच्छे दोस्त हो, बचपन से हम तुम्हें जानते हैं, जरूर तुम बात छुपा रहे हो। अब तुम तो मेरे खास दोस्त हो, तुमसे क्या छुपाना। बात दरअसल ये है कि हमारे घर में वो जानवर पालने का शौक घर वालों को रहा आया है, तो वो भैंस पाली थी तो उसके कारण थोड़ा उसका स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसलिए मेरा मन खराब है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे गाय भैंस तो हमारे घर के लोग भी पाला करते थे। है हाँ, और क्या फिर, और क्या, एक बार हमारी भी भैंस की तबीयत खराब हो गई थी, अपन ने तो बस भैया वो आधा लीटर मिट्टी के तेल में खली चुनी मिला के खिला दी थी। है और क्या, इतने में बात खत्म हो गई, दूसरी निकल आई, भैया की आधी बात रह गई, चले गए। दूसरे दिन मिले तो और उदास। बोले क्यों बद्री, क्या बात है। बोले यार गड़बड़ हो गया यार। गड़बड़ हो गया, कैसे गड़बड़ हो गया। बोले साहब जैसा आपके यहाँ आपकी भैंस की तबीयत नहीं खराब हुई थी तो आपने आधा लीटर मिट्टी के तेल में खली चुनी मिला के खिला दिया था, हमने भी खिला दिया। हाँ फिर वो तो मर गई यार। हाँ वही तो, हमारी भी तो मर गई थी। और कुछ लोग बहुत ज्यादा समझदार हुआ करते हैं, पूरी बात सुनने के बाद भी उसका अर्थ किस तरह निकालते हैं, इसका नमूना देखिए। दो साहब विदेश घूमने पहुंचे, एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे उनके पास एक गाइड आ जाता है और फौरन उनसे पूछता है, एक्सक्यूज मी सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मे आई हेल्प यू। दोनों समझदार एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। गाइड समझता है कि शायद इनको अंग्रेजी ना आती हो, तो वो उनसे हिंदी में सवाल करता है, महाशय जी क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो। दोनों समझदार फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, तो तीसरी बार वो चीनी भाषा में इनसे यही सवाल करता है। दोनों समझदार फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, फिर वो रशियन लैंग्वेज में गाइड उनसे यही बात पूछता है, ये फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, फिर वो जैपनीज में पूछता है, दोनों समझदार फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, सबसे आखिरी में वो इनसे कौन सिर खपाए निकल जाता है। दोनों समझदार एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। जब वो चला जाता है तो एक समझदार दूसरे समझदार से बोलता है, यार सत्ते अब ऐसा लगता है अपन लोगों को भी दो चार भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। तो दूसरा समझदार जवाब देता है, कोई मतलब नहीं है, उसको भी तो चार पांच भाषाएं आती थी, कोई मतलब निकला। एक मास्टर साहब क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, जब भी अपनी विद्यालय में अपनी कक्षा में पढ़ाने जाते तो क्रिकेट की बातों का समावेश जरूर रहता था। अचानक उनके दिमाग में क्रिकेट भरा हुआ था और जैसे ही वो अपनी कक्षा में पहुंचे एक बच्चे को फौरन खड़ा कर दिया,
1: राजेन खड़े हो जाओ, क्रिकेट का पहाड़ा सुनाओ।
0: लड़का घबरा गया, उसके बाद भी धीरे से चालू हुआ,
2: है ना क्रिकेट एकम क्रिकेट, क्रिकेट दुनिया विकेट, क्रिकेट दिया कैच, क्रिकेट चौकी मैच, क्रिकेट पंजे फील्डिंग, क्रिकेट छक्के बैटिंग, क्रिकेट सत्य सेंचुरी, क्रिकेट अट्ठे कमेंट्री, क्रिकेट नंबर डाउट, क्रिकेट धाम आउट।
3: हाँ भैया क्रिकेट धाम आउट, बहुत अच्छा पहाड़ा बनता तुमसे, बहुत हंस रहा है, दांत निकाल के निबंध लिखो अंग्रेजी में, हमारी टोपी पर निबंध लिखो, चलो अंग्रेजी में निबंध लिखो, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, गलती हो तो हमसे पूछ सकते हो, चलो निबंध लिखो इंग्लिश में, हमारी टोपी पर लिखना है, माफा फटी फटाई की स्पेलिंग क्या होती, भेजा फटी फटाई की स्पेलिंग क्या होती है।
4: गोपाल तिवारी बड़े शरीफ इंसान हैं, मगर इतने भी नहीं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ये कुछ ना समझते हो। अब देखिए, पता नहीं इन्होंने कहां क्या देख लिया, सीधे चले आए कुछ सुनाने, अगर यकीन ना हो तो सुनते हैं इन्हें।
5: एक विद्यालय में मैं गया तो बहुत बढ़िया एक बात देखी कि एक बहुत अच्छे संस्कार उन्होंने अपने बच्चों में डाले थे कि बच्चों से प्रार्थना के समय गुरुजी कहा करते, चलिए सावधान की स्थिति में आंखें बंद और सबसे पहले अपने अपने माता पिता और गुरु का ध्यान करेंगे, ये दो मिनट होगा, चलिए सावधान, सब बच्चे सावधान, आंखें बंद बंद, गुरुजी का ध्यान, माता पिता का ध्यान। मैं भी गया, मैंने देखा कि आंखें मैंने बंद नहीं की थी क्योंकि मैं थोड़ा सा कलाकार हूं तो ऑब्जर्व करना चाह रहा था, मैंने देखा कि बच्चे कुछ जो हैं आंखें बंद की थी और कुछ बच्चे जो हैं धीरे से देख रहे थे। हमने अलग अलग बच्चों से बाद में पूछा, हमने क्यों बेटा तुम आंखें नहीं बंद करे थे,
6: नहीं हम, ये तो मौका रहता है कि गुरुजी जब बोलते हैं आंखें बंद करो तो हम अपनी सहेली को देख लेते।
5: मैंने एक दूसरे बच्चे से पूछा, मैंने बेटा ये बताएं कि आप जब आंखें बंद करते हैं तो अस्थिर सा मन क्यों होता है आपका।

0: हमारा मन इसलिए अस्थिर होता है कैसा कि इसलिए अस्थिर होता है क्योंकि जब हम आग बंद करते हैं ना तो ऋतिक रोशन दिखता है।
1: अच्छा बेटा गुड़िया तुम ये बताओ कि तुम जब आंख बंद करती तो तुम्हें कैसा लगता है?
0: नहीं सर, मैं जब आंख बंद करती हूँ ना तो मुझे संजू याद आता है, इतना अच्छा लगता है ना स्वीट यू।
1: तो आंखें बंद करने का ये मामला साहब, और वैसे भी जब हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान में पतिव्रता स्त्रियां अभी तक होती आई हैं और ये विश्व का रिकॉर्ड है। मैं एक बार विदेश यात्रा में गया तो मैंने देखा कि एक महिला कब्र के पास बैठी हुई पंखा चल रही थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मैंने हिंदुस्तान में तो बहुत बड़ी सती देखी हैं, पतिव्रताएं देखी हैं, लेकिन पति के प्रति इतना प्रेम कि कब्र पर पंखा चल रही है, ये तो बहुत गजब बात हो गई। तो मैंने उससे पूछा, मैडम एक्सक्यूज मी, आप इतना चाहती थी अपने पति को कि उनकी कब्र पर पंखा चल रहे हैं? तो उसने कहा कि
0: नहीं, उनकी आखिरी इच्छा थी कि जब तक हमारी कब्र सूख न जाए दूसरी शादी न करना।
1: एक और मामला के बड़े भैया ने छोटे भैया को आदेश किया कि
2: देखो तुम्हारा नाम छुट्टू।
1: जी भैया।
2: हम जा रहे थोड़ी शहर और तुम जो गैया है और बढ़िया गैया लगा के रखना और दूध बच्चों को दे देना और थोड़ा दूध उबाल के रख देना। समझ गया? नहीं समझ गया? बिल्कुल गैया ध्यान से लगा लेना।
1: छुट्टू ने क्या कहा? भैया हम गैया नहीं लगाएंगे।
2: क्यों क्यों नहीं लगाओगे?
1: बहुत एक नंबर के आलसी।
2: क्यों क्यों नहीं लगाओ गैया?
1: अरे हम गैया नहीं लगाए भैया, यार गैया बहुत लात फटकार।
2: तुम गैया क्यों नहीं लगाओगे?
1: ये गैया लगाते हैं ना तो हमारा मुंह पे रहता है। गैया लगाने मुंह पे रहता है? गैया हाथ से लगाना कि मुंह से लगाना है? नहीं लगाना तो हाथ से है, लेकिन काय जब गैया लगाएंगे तो लात फटकारेगी तो पुचकारना नहीं पड़ेगा।
3: दो मक्खियां शहर का दशहरा देखने आई, और दशहरा शहर जबलपुर का वैसे भी बड़ा प्रसिद्ध है। दशहरा देखने के पश्चात जब वे मक्खियां रात को शहर से लौट रही थीं तो मक्खियों की जो आपस में चर्चा हुई वो एक चर्चा देखिए, कल्पना है ये और देखिए मजा लीजिए। पहली मक्खी ने दूसरी मक्खी से कहा,
0: मतलब क्या से लगो तो मतलब अरे खूब अच्छे लगो, हम तो चौपाटी तरफ निकल गए सो हमने कहूं चाट में बैठे कहूं चाइनीज में और रसगुल्ला की ट्रे में बैठे तो ऐसे पंख ना चकवा गए हाँ, तो हमने पंखों का बिल्कुल खूब धो धाओ। और आजकल सुनो मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है शहर में, मतलब ऐसा मामला है कि गंदो पानी नहीं वो पाउच को पानी पियो, हमने खूब मजा आये, हम तो खूब घूमे फिरे खूब मजा आनंद लाओ। अच्छा एक चीज बताओ के तुमने दशहरा देखा? खूब देखो राजा बड़ी बड़ी दुर्गा जी और यहाँ सो पूरा मल्ला बढ़िया देखा। अब जी बताओ कि घर कैसे चलो? तो कहीं काम करें कि अपन 407 में चले गए, यहाँ 407 में चले तो कहीं 407 में भीड़ रहे लचर पचर हो गए। तो उन्होंने कहा कि फिर कैसे करें? फिर एक काम करें कि अपन ऑटो रिक्शा में चले, कहीं यहाँ ऑटो रिक्शा वाले 5:25 बता रहे खूब लूटा मारी मचाए हैं। तो फिर काश्चन एक काम करे कि अपन रिक्शा कर ले, कई रिक्शा तो कर लेते लेकिन अपना वजन देखो रिक्शा देखो। कहीं अपन बैठे और रिक्शा लचर पचर होगा हो। तो अब तुम्हें बताओ मतलब कैसे चले? साल कल में बैठ जाए? नहीं साल कल में कैसे बैठो भाई, डंडा पे बैठो पर दिक्कत हो बैठने में। तो बताओ काश चले, कई एक काम करो, क्या करें? कुत्ता कर ले कान में बैठ के निकल चले।
4: ध्यान रहे आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है हंसना मना है।
5: मैं नगर विकास योजना समिति का सदस्य हूं और आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ये बात दो लोगों के बीच में हो रही है, जिससे बोला गया वो बोलता है कहले साहब बहुत अच्छा साहब आप नगर विकास योजना समिति के सदस्य हैं और बहुत राइट टाइम साहब आप हमारे घर में आए। क्या है कि शादी के बाद हमारी योजना थी एक लड़का और एक लड़की, है ना? तो योजना अधिकारी बोलते हैं आप मुझको गलत समझ रहे हैं साहब, आप ये सोच रहे हैं कि शायद मैं परिवार नियोजन से आया हूँ। मैं परिवार नियोजन का से नहीं आया हूँ, मैं योजना अधिकारी हूँ, नगर विकास योजना अधिकारी। खैर चलिए ठीक है, वैसे आपके बच्चों की संख्या पूछ लेता हूँ, क्या दो लिख लूँ? तो वो सज्जन बोलते हैं फिर तो आप एक काम करो 7 लिखो, ये हमारी योजना का परिणाम है, हमें लड़के की प्रतीक्षा है।

0: एक होटल में लिखा था, आइए खाइए पैसा मत दीजिए। मतलब इसका यह हुआ कि आप जो भी कुछ खाएंगे आपको पैसा नहीं देना होगा, आपका पोता पैसा देगा, यानी आपके लड़के का लड़का। अरे साहब तो मजे वाली बात हो गई, पहुंच गए दो चार लोग, खाना खाने लगे, खूब जम के खाया, मिठाई भी आने दे, रोटी भी आने दे, पूड़ी भी आने दे, सब्जी भी आने दे, कौन पैसा देना है, देगा पोता। सब खा पी के जब बढ़िया मजा आ गया, उठने लगे तो एक बिल आ गया। बिल में लिखा था 990 रुपए 40 पैसे। तो जो खा रहे थे उन्होंने होटल के नौकर से पूछा, क्यों भाई आपने तो यहाँ लिखा हुआ है कि आप जो भी कुछ खाएंगे उसका पैसा पोता देगा है, तो ये बिल काय का है? तो नौकर बोलता है, ये आपके दादा का है। एक चोर पकड़ा गया, अदालत में पहुंचा, जज साहब ने पूछा, यहां वहां की चर्चाएं हुई और कहा, तो तुमने रोटियां चुराई हैं, हैं? तुमको 500 रुपए तुम्हारे ऊपर जुर्माना किया जाता है। लेकिन वो जो रोटी चुराने वाला था बड़ा गरीब था, कहां से देता 500 रुपए? तो जज साहब बहुत ज्यादा समझदार थे, उन्होंने 500 रुपए स्वयं निकाले और उसके जुर्माने बतौर भर दिए। कितनी अच्छी बात है। लेकिन जज साहब ने एक और बहुत अच्छा काम किया, अदालत में जितने भी लोग बैठे थे सबके ऊपर 10-10 रुपए जुर्माने कर दिए। वो काय के लिए कर दिए कि वे जितने भी लोग बैठे हैं वो ऐसे समाज के लोग हैं जहां पे लोग रोटी के लिए चोरी करते हैं।
1: बहुत देर हुई, विनय जैन कहां है? बड़े खामोश है, जरा देखे तो इतनी देर में उन्होंने क्या कुछ नया बना लिया।
2: एक विवाह योग्य बालक ने इंटरनेट पर शादी के लिए अर्जी लगाई, जल्द ही हो गई सुनवाई, 15 मिनट में ही खुशखबरी आई, मामला फिट है, बिल्कुल हिट है, और इंटरनेट पर ही हो गई शादी, और कुछ दिनों बाद इंटरनेट पर ही हो गया विधिवत डाइवोर्स, लड़का लड़की दोनों खुश, चलो इसी बहाने हो गया कंप्यूटर का कोर्स। दोस्तों कोर्स कंप्यूटर का है, लेकिन बात हंसने हंसाने की है, बहुत अच्छी बात आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले एक दिमाग की डॉक्टरों के पास अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचा हुआ एक मरीज, जिससे डॉक्टर द्वारा किया गया एक जरूरी सवाल कि साहब क्या समस्या है, और जैसे ही डॉक्टर साहब का सवाल सुना इन्होंने कि क्या समस्या है, आपका जवाब, समस्या कैसी समस्या, कौन सी समस्या, कोई समस्या नहीं है, हम बादशाह अकबर हैं। अरे भला बादशाह सलामत की कोई समस्या हो सकती है? समस्या तो मैडम जोधा बाई की है। क्या समस्या है आपकी मैडम की? ये अपने आप को मिसेस भटनागर समझती है। एक महिला रेलगाड़ी के एसी के डिब्बे में बैठ के सफर कर रही थी, और उनकी गोद में उनका एक बच्चा जो काफी देर से खेल रहा था, और वो बच्चे को खिलाती हुई महिला और अपने कहीं पानी पीती हुई, कहीं बच्चे को पानी पिलाती हुई अपने सफर को लगातार जारी किए थी। अचानक वो देखती है कि सामने की बर्थ पर बैठा हुआ नवयुवक उनके बच्चे को बड़ी देर से घूर कर देख रहा है। जब महिला से रहा नहीं गया, काफी देर तक ये बात नोटिस करने के बाद उस युवक से उन्होंने पूछ लिया कि भाई साहब क्या बात है, मैं देख रही हूँ कि आप काफी देर से मेरे बच्चों को घूर घूर कर देख रहे हैं। तो वो सामने वाले सज्जन जवाब देते हैं, मैडम मैंने जीवन में पहली बार इतना बदसूरत बच्चा देखा है। अपने बच्चे के बारे में इतनी भद्दी बात सुनकर महिला को क्रोध आ जाता है, थर थर कांपने लगती है और फौरन कंडक्टर को तलब करती है, कंडक्टर इस आदमी को फौरन मेरी सीट के सामने से उठा दिया जाए और इसको मेरी नजरों से दूर कर दिया जाए, इस आदमी ने मेरी भारी तौहीन की है। कंडक्टर साहब फौरन आ जाते हैं और बोलते हैं, मैडम ये रेलवे का रिजर्वेशन है, हो सकता है सामने वाले यात्री ने आपके साथ कोई अशिष्टता की हो, मैं इसके लिए रेलवे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, और ये रिजर्वेशन के कारण इसको इसकी बर्थ से तो उठा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको आपकी मौजूदा सीट से बेहतर सीट दिलवाने का इंतजाम करता हूँ, और जबकि मैं तो कहता हूँ कि आप मेरे साथ डाइनिंग कॉर में चलिए, तो मैं आपको रेलवे की तरफ से एक फटाफट गर्मा गर्म कॉफी पिलवाता हूँ ताकि आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा, और आपकी गोद में जो ये बंदर है मैं इसे एक केला लाके देता हूं।
0: अपनी कहानी अखबार में छपे, इस चक्कर में लेखक महोदय ने अपनी कहानी तो अखबार को भेज दी, साथ में एक लेटर भी डाल दिया संपादक को, उसमें लिखा था, मेहरबानी करके आप जहां चाहें उचित समझें, विराम चिन्ह वगैरह लगाकर

0: मेरी कहानी पूरी छापे। संपादक ने उनकी कहानी तो नहीं छापी, लेकिन एक लेटर जरूर लिख दिया। उसमें क्या लिखा? आप भविष्य में केवल विराम चिन्ह दिया करें, कहानी हम लिख देंगे। एक छोटा बच्चा अपने पिता से बोलता है,
1: पापा पापा हमारी शादी कब होगी?
0: तो उनके पिताजी बोलते हैं, बेटा जब तुम 21 साल के हो जाओगे तब तुम्हारी शादी होगी। तो लड़का बोलता है,
1: जब हम 21 साल के हो जाएंगे तब तो हमारी शादी होगी पापा, लेकिन हमको हम आपको अपनी शादी में नहीं ले जाएंगे।
0: तो लड़के का बाप बोलता, आप हमको क्यों अपनी शादी में ले जाएंगे? तो लड़का बोलता,
1: क्यों इसलिए हम आपको अपनी शादी में नहीं ले जाएंगे क्योंकि आप भी हमको अपनी शादी में नहीं ले गए थे।
2: एक ऐसे पतिदेव जो अपनी पत्नी की हर चीज में नुक्स निकाला करते थे, अचानक खाते खाते नाश्ते की प्लेट में उन्होंने एक आवाज लगाई,
3: सुनो
4: जी अभी आई,
3: ये सूजी में शक्कर कम है।
4: ये सूजी नहीं उपमा है।
3: हाँ हाँ मालूम है, उपमा में नमक ज्यादा है।
2: सुबह नाश्ते के समय अचानक श्रीमती जी ने आमलेट और कॉफी का नाश्ता सामने रखा तो पतिदेव की भ्रकुटी तन गई। आमलेट देख के फौरन पत्नी से बोले,
3: इधर आओ, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मालूम नहीं हमको बिल्कुल आमलेट पसंद नहीं है। कॉफी के साथ आप आमलेट बना के ले आई, आज हमारा बिल्कुल आमलेट खाने का मन नहीं है, कुछ भी अपने मन से करती रहती हो, हटाओ ये आमलेट फॉमलेट सामने से हमारे।
2: श्रीमती जी निराश हो गई कि पतिदेव को पसंद नहीं आमलेट। दूसरे दिन नाश्ते में वो उबले हुए अंडे लेके आ गई। पतिदेव को उबले अंडे ज्यादा पसंद थे, जैसे उन्होंने उबले अंडे देखे तो भ्रकुटी फिर तन गई।
3: तुम्हारा पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है, है? आज हमको आमलेट खाने का मन हो रहा था तो तुम अंडे उबाल के ले आई,
2: बिल्कुल तुम्हारा दिमाग ठिकाने है ही नहीं। श्रीमती जी को बहुत दुख होता है कि पतिदेव कोई बात उनकी समझते ही नहीं है, और तीसरे दिन अचानक उसका मूड इस तरह का बन जाता है कि वो आधे अंडे उबाल के और आधे अंडों का आमलेट बना के ले आती है, तो जैसे दोनों प्लेट देखते पतिदेव फौरन भ्रकुटी तन जाती है। पता नहीं तुम्हें कवा का लाएगी, जो अंडों को उबालना था उनका आमलेट बना लाई और जो उनका आमलेट बनाना था उनको उबाल लाई।
5: एक साहब हाथ दिखाने के बहुत शौकीन थे, जहां देखो वहीं अपना हाथ लिख के बैठ जाते। एक पंडित जी को देखते ही से उन्होंने फौरन अपना हाथ दिखाया और पंडित जी को प्यार से बुलाकर, पंडित जी हाथ देख के बताइए कैसा है। पंडित जी थोड़ा बैलेंस करने के चक्कर में हाथ देखें और धीरे से बताया, बोले साहब आपकी तो बहुत अच्छी आयु है और आपका जीवन बहुत ही स्वस्थ और सुंदर नजर आता है। पंडित जी हाथ में खुजली भी होती है। पंडित जी बोले, बेटा खुजली होती बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब धन आता है, ओम लक्ष्मी कमिंग। पंडित जी इस वाले हाथ में भी होती है। बेटा यही तो गड़बड़ है, यहां से धन आता है यहां से निकल जाता है, ये तो गड़बड़ है। पंडित जी इसका कुछ उपाय? उपाय तो सब चीज का है। पंडित जी पैर में भी होती है खुजली? अरे बेटा बहुत अच्छी बात है, पैर में अगर खुजली होती इसका मतलब तुम भारत भ्रमण पर जाओगे, इंडिया टूर करोगे। पंडित जी जी वाले पांव में भी होती है? भैया बहुत अच्छी बात है, वर्ल्ड टूर करोगे, सारे संसार भ्रमण करोगे। पंडित जी पीठ में भी होती है? बोले भैया तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें खुजली है।
0: और दोस्तों हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मना है की पहली कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 12:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: अब भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाकौशल की धरती धान उत्पादन के लिए जग प्रसिद्ध है।

0: है और क्षत्रिय धान को जीआई टैग मिल गया है। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि प्रदेश की नवीन श्रम संहिताओं के प्रस्तावित राज्य नियमों को अधिक सरल, व्यावहारिक और श्रमिक केंद्रित बनाया जाए। गौरतलब है कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर 4 नई श्रम संहिताएं तैयार की गई हैं। केंद्र सरकार ने ईपीएफ योजना 2026 को 29 जून से प्रभावी कर दिया है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। नई योजना में ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जीएसटी को लागू करना एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा तक सीमित नहीं होकर एक राष्ट्र एक संकल्प और एक साझा उत्तरदायित्व का जीवंत प्रतीक है। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में मध्य प्रदेश के 10 विद्यालय विभिन्न श्रेणियों में चयनित हुए हैं, जिसमें रतलाम जिले के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और राजधानी भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और श्री अमरनाथ जी की यात्रा कल से शुरू हो रही है। आज यात्रियों का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से रवाना हुआ। 147 गाड़ियों के काफिले में बालटाल रूट के 2312 लोग और पहलगाम रूट के 2510 लोग यात्रा पर हैं। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला सभा।

कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। बशीर बद्र साहब के इसी ख्याल के साथ ही महिला सभा से स्वीकार कीजिए हिमलता खरे का प्यार भरा नमस्कार। बड़े ही खूबसूरत होते हैं एहसासों के ये धागे, बंध जाते हैं इनसे हम बिना ही बांधे। बहनों, बड़े ही खूबसूरत होते हैं एहसासों के ये धागे और हम इनसे बिना ही बांधे भावनात्मक रूप से बंध जाते हैं। रिश्ते हो या फिर परिवार, इनको बांधे रखने के लिए एहसासों की नमी भी बहुत जरूरी होती है, वरना रेत भी यदि सूखी हो तो मुट्ठी से फिसल जाती है। और रिश्ते हो या परिवार, अपनेपन के एहसासों से बड़ी ही खूबसूरती से बांधे रखने का हुनर रखती हैं महिलाएं। परिवार और रिश्तों में महिलाओं की भूमिका किसी भी समाज की नींव होती है। वे एक ही समय में कई रिश्तों के रूप में प्रेम, संस्कार, करुणा, दया के भावों को संजोकर रखती हैं। बहनों, आधुनिक युग में भी वे भावनात्मक संबल और पारिवारिक प्रबंधन के साथ साथ आर्थिक रूप से परिवार की प्रगति में बराबर की भागीदारी निभा रही हैं। महिलाएं सभी रिश्तेदारों के बीच सामंजस्य बनाए रखती हैं। वे बच्चों की प्रथम गुरु होती हैं, जो उन्हें शिष्टाचार, नैतिकता और मानवीय मूल्यों की शिक्षा देती हैं। बहनों, महिलाएं हमारी संस्कृति, परंपराएं और त्योहारों को जीवित रखती हैं और अगली पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। कभी हंसकर, कभी मुस्कुराकर, कभी कुछ भूलकर तो कभी कुछ टालकर हर बात को संभालने का हुनर भी रखती हैं। घर की सुख समृद्धि, सौभाग्य और शांति की बागडोर भी महिलाएं ही संभालती हैं। रिश्तों और परिवारों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महिलाएं परिवार के को धागे में पिरोए उस बहुमूल्य मोती की तरह होती हैं, जो परिवार को एक साथ संजोकर रखती हैं। अपने प्रेम, ममता और करुणा से हर रिश्ते को सींचकर परिवार को जोड़े रखती हैं। वे रिश्तों की सच्ची शिल्पकार होती हैं और यदि रिश्तों में प्यार, सम्मान, करुणा, दया हो तो परिवार कभी बिखरता नहीं और एक समृद्ध परिवार समृद्ध और सशक्त समाज का निर्माण करता है। सच में महिलाएं ममता की छांव और विश्वास की डोर हैं। उनके होने से ही रिश्तों में भोर है। वे सहेजती हैं हर रिश्ते को ऐसे जो बागों में माली सहेजता है फूलों को जैसे। और बहनों, अब चलते हैं गीत संगीत की ओर और आपको सुनवाते हैं अभिमान फिल्म का ये गीत। शब्द रचना मजरूह की है, संगीत निर्देशन

एक खुशहाल परिवार की आधारशिला होती हैं महिलाएं, और एक परिवार तभी खुशहाल हो सकता है जब घर की महिलाएं स्वस्थ और खुश हों। और महिलाओं का स्वास्थ्य निर्भर करता है सही पोषण पर। महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का सीधा संबंध होता है एक सुखी, सशक्त और खुशहाल परिवार से। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद महिलाओं में होने वाले शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल बदलाव के दौरान समस्याओं को कम करते हुए बीमारियों से बचाते हैं। बहनों, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए दूध, दही, हरे पत्तेदार सब्जियों को भोजन में शामिल करें। आयरन की कमी को दूर करने के लिए चुकंदर, गाजर, खजूर, गुड़ वगैरह आहार में अवश्य शामिल करें। इसके अलावा पर्याप्त पानी पिएं, पर्याप्त नींद लें।

0: योग ध्यान प्राणायाम करें। प्रतिदिन कुछ किलोमीटर पैदल अवश्य चलें। इसके साथ ही समय पर भोजन करें। नाश्ते और भोजन का समय निर्धारित करें। समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य करवाएं। बहनों, उचित पोषण हृदय रोग, मधुमेह और कई तरह की बीमारियों को रोकने में मदद करता है। संतुलित आहार हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सही पोषण मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है, जिससे मूड अच्छा रहता है और जब मन प्रसन्न होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो बहनों, सही पोषण को अपनाइए और वादा कीजिए खुद से कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखेंगी और हमेशा प्रसन्न रहेंगी, क्योंकि जब आप मुस्कुराएंगी तो आपके साथ साथ आपका परिवार भी मुस्कुराएगा। तो जरूर ख्याल रखें अपना, अपने लिए ही नहीं अपनों के लिए भी, क्योंकि घर ही नहीं घर का संसार हैं आप, घर परिवार का असली आधार हैं आप। तन हो निरोगी और मन में हो विश्वास, स्वस्थ नारी से ही बनता है समृद्ध समाज। स्वस्थ नारी समृद्ध समाज एक अटूट सत्य है। एक सशक्त और स्वस्थ महिला को परिवार और राष्ट्र की समृद्धि का आधार माना जाता है। तो इसी विषय पर केंद्रित लीजिए, सुनिए ये वार्ता, स्वस्थ नारी समृद्ध समाज। वार्ताकार हैं शालिनी विश्वकर्मा।
1: स्वस्थ नारी समृद्ध समाज। किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है। ठीक उसी प्रकार एक स्वस्थ नारी ही एक स्वस्थ परिवार और अंततः एक स्वस्थ समाज की नींव होती है। एक महिला घर में माँ, बहन, पत्नी और बेटी की भूमिका निभाते हुए पूरे परिवार के पोषण, स्वास्थ्य और खुशी का ध्यान रखती है। यदि वह स्वयं स्वस्थ नहीं होगी तो वह अपने परिवार की देखभाल कैसे कर पाएगी। महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो महिलाएं के व्यापक स्वास्थ्य, एनीमिया, मधुमेह, कैंसर जांच पर केंद्रित हैं। केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही काफी नहीं है, नारी का आर्थिक और मानसिक रूप से सशक्त होना भी आवश्यक है। एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और एक स्वस्थ वातावरण देती है। शिक्षित और समृद्ध महिलाएं जंजीरों को तोड़कर समाज में लौकिक समानता को बढ़ावा देती हैं। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को अनदेखा किया जाता है। हमें उनके पोषण, मासिक धर्म की स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। जब हम महिलाओं के लिए सुरक्षित और समान अवसर वाले कार्य स्थल और समाज का निर्माण करेंगे, तभी सही मायने में सशक्तिकरण होगा। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में महिलाओं का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया स्वस्थ नारी और समृद्ध समाज अभियान इस दिशा में एक बेहद जरूरी कदम है। यह पहल न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बल्कि पूरे समाज, आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पहल समय की मांग है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां अभी भी गंभीर हैं। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और एनीमिया जैसी समस्याएं गंभीर जन स्वास्थ्य शिक्षा का विषय बनी हुई हैं। इसलिए यह कार्यक्रम महिलाओं को उनके जीवन चक्र के हर चरण में स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। क्या हम महिलाओं के स्वास्थ्य को अनदेखी कर रहे हैं? किसी भी परिवार, समाज या राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। अगर महिला स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है और सुरक्षित रहता है। माँ का स्वास्थ्य सीधे तौर पर उसके नवजात शिशु के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। यही नवजात शिशु आगे चलकर किशोर अवस्था पार करके वयस्क बनेगा और नई पीढ़ी को जन्म देगा। इस तरह जीवन चक्र चलता रहता है। माँ या कहे महिला इस जीवन चक्र का केंद्र बिंदु है। इसलिए स्वस्थ नारी और समृद्ध समाज को राष्ट्रीय विकास की नींव माना जाता है। आज भी भारत में मातृ एवं शिशु मृत्यु पर चिंताजनक विषय बना हुआ है। मातृ मृत्यु दर को कम करने और शिशु जीवन रक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर देखभाल अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया जैसी बड़ी चुनौती है, जो उनके प्रदर्शन, शिक्षा और जीवन की एक समग्र गुणवत्ता को प्रभावित करती है। सरकार ने स्वस्थ नारी समृद्ध समाज अभियान को समय पर लागू किया है। यह केवल एक स्वस्थ अभियान नहीं बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को एकीकृत करता है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के जीवन चक्र के दौरान उनके स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें गर्भधारण से पहले, गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के समय और प्रसवोत्तर चरण शामिल है। किशोरियों से लेकर वृद्ध महिलाओं तक हर चरण में आवश्यक पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श प्रदान किया जाता है। भारत सरकार पहले से ही एनीमिया मुक्त भारत जैसी प्रभावी कार्यक्रम चला रही है। यह नई पहल इसे और मजबूत करेगी। किशोरियों और

0: महिलाओं में होम्योग्लोबिन के स्तर में सुधार लाएगी, गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं को कम करेगी और स्वस्थ प्रसव सुनिश्चित करेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के बड़े पैमाने पर कम करने के लिए मेडिकल कॉलेजों, जिला स्तरीय अस्पतालों आदि द्वारा देश भर के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना है और इसका प्राथमिक लक्ष्य समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित प्रसव और निवारक एवं उपचारक चिकित्सा देखभाल करना है। जब महिलाएं स्वस्थ होती हैं तो परिवार की उत्पादकता और बच्चों की शिक्षा और पोषण में स्वतः सुधार होता है। आज की कामकाजी महिलाओं का स्वास्थ्य जीवन देश की अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करता है और एक स्वस्थ महिला एक स्वस्थ समाज की नींव है। स्वस्थ नारी समृद्ध समाज अभियान इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। मातृ मृत्यु दर को 70 से नीचे लाना है और शिशु मृत्यु दर को कम करना है, इस लक्ष्य के प्रमुख घटक हैं। इस नई पहल इस नए लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रत्यक्ष योगदान देगी। एनीमिया को नियंत्रण करना, महिलाओं के पोषण में सुधार करना इस लक्ष्य को मजबूत करेगा। महिलाओं के स्वास्थ्य पर केंद्रित यह अभियान महिलाओं को सशक्त बनाकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। इस प्रकार यह पहल न केवल स्वास्थ्य से संबंधित है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। जीवन चक्र दृष्टिकोण का अर्थ है कि एक महिला स्वस्थ केवल गर्भावस्था या प्रसव तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि उसके पूरे जीवन भर उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किशोर अवस्था में पोषण, मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य एवं एनीमिया की रोकथाम पर ध्यान देना चाहिए। प्रजनन आयु में परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। गर्भावस्था में प्रसव पूर्ण देखभाल, सुरक्षित प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल पर ध्यान देना चाहिए। मध्य और वृद्धावस्था में हड्डियों के स्वास्थ्य जो मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यदि स्वास्थ्य की रक्षा हर स्तर पर की जाए तो महिला जीवन भर स्वस्थ रहेंगी और उनके परिवार, समाज और देश की मजबूत और सुरक्षित रहेंगे। इस पहल से समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगी। महिलाओं को न केवल देखभाल करता बल्कि देखभाल प्राप्त करता के रूप में भी मान्यता दी जाएगी। नीतिगत स्तर पर यह पहल भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करेगी और महिला की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाएगी। इसलिए यह कहना बिल्कुल उचित है कि एक स्वस्थ महिला एक मजबूत परिवार और समृद्ध भारत की नींव है। स्वस्थ समाज के निर्माण में नारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत है। नारी को समाज की धुरी माना जाता है। वह न केवल एक परिवार को जोड़ती है बल्कि पूरे राष्ट्र के चरित्र और स्वास्थ्य का निर्धारण भी करती है। बच्चा अपनी पहली शिक्षा माँ से प्राप्त करता है। नारी ही बच्चों में नैतिकपूर्ण अनुशासन और संस्कार बोती है। एक शिक्षित और जागरूक नारी ही आने वाली पीढ़ी को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती है। घर की रसोई और आहार का प्रबंधन मुख्य रूप से नारी के हाथों में होता है। परिवार के सदस्यों को संतुलित और पौष्टिक भोजन देना, स्वच्छता बनाए रखना और बीमारियों के प्रति सतर्क रहना, ये सभी कार्य नारी की कुशलता पर निर्भर करते हैं। एक स्वस्थ नारी ही एक स्वस्थ परिवार और अंततः एक स्वस्थ समाज का आधार बनती है। नारी समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे नशाखोरी, दहेज प्रथा और अनपढ़ता के खिलाफ सबसे सशक्त आवाज बन सकती है। जब नारी जागरूक होती है तो वह न केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ती है बल्कि समाज को भी सही दिशा दिखाती है। आज की नारी केवल घर तक सीमित नहीं, वह डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बनकर राष्ट्र के अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है। आर्थिक रूप से सशक्त नारी परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाती है। नारी अपनी सहनशीलता, प्रेम और करुणा के माध्यम से परिवार और समाज में तनाव को कम करने और सहयोग की भावना बढ़ाने का कार्य करती है। नारी शिक्षित, सुरक्षित और सम्मानित है तो समाज स्वतः ही उन्नति और स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होगी। स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही कहा था कि जिस देश में नारियों का सम्मान नहीं होता वह देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। स्वस्थ समाज के लिए नारी को समान अवसर और सम्मान देना अनिवार्य है। किसी भी देश या समाज की सफलता का अंदाजा वहाँ की महिलाओं की स्थिति से लगाया जा सकता। नारी के बिना स्वस्थ समाज की कल्पना अधूरी है। यदि हम नारी को शिक्षा, सम्मान और समान अवसर प्रदान करें तो वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को एक बेहतर दिशा दे सकती है। इसलिए हमें नारी के महत्व को समझना चाहिए और इसे सशक्त बनाना चाहिए, तभी एक स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण होना संभव है।
1: अभी बहनें सुन रही थी ये वार्ता स्वस्थ नारी समृद्ध समाज। वार्ताकार थी शालिनी विश्वकर्मा। और बहनों अब सुनिए सिलसिला फिल्म का ये गीत। शब्द रचना हसन कमाल की है, संगीत निर्देशन शिवहरी का और स्वर है लता मंगेशकर का।

तीज त्योहार हो या शादी पार्टी, हम बहनें सबसे खूबसूरत दिखना चाहती हैं। आप अपनी ये ख्वाहिश जरूर पूरी कर सकती हैं इन ब्यूटी गाइड टिप्स से। ब्यूटी गाइड टिप्स से आप अपने सौंदर्य को निखार सकती हैं। इसके लिए रोजाना ये टिप्स फॉलो करें। रोजाना सुबह नहाते वक्त और शाम को या रात को सोने से पहले फेस वॉश से चेहरा जरूर धोएं, जिससे चेहरे पर जमी गंदगी निकल जाएगी और चेहरा निखर उठेगा। दिन में दो बार चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। घर से बाहर निकलने से पहले हाथ पैर में अच्छी तरह से सनस्क्रीन लगाएं। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से त्वचा की रक्षा करती हैं, जिससे झाइयां और झुर्रियों की समस्या से निजात मिलती है। बहनों, रात को सोने से पहले क्लींजिंग मिल्क से चेहरा क्लीन कर लें। ऐसा करने से रोम छिद्र खुल जाते हैं। चेहरे की क्लीनिंग के बाद चेहरे की टॉनिंग करना ना भूलें। इसके लिए कॉटन बॉल को टोनर में डुबोएं और हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर घुमाएं। टोनर लगाने से चेहरे पर कसाब आता है। इसके अलावा पर्याप्त नींद लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, फल और जूस का भी सेवन करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप हमेशा प्रसन्न रहें और सकारात्मक सोचें, क्योंकि हमारी सोच का प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है। आप प्रसन्न रहेंगी तो आपका सौंदर्य और भी अधिक निखर उठेगा। तो बहनों, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें और सौंदर्य के साथ साथ पाएं ढेर सारी तारीफें भी। एक छोटी सी बिंदिया उस हसीन चेहरे को और भी हसीन बना देती है। एक छोटी सी बिंदिया उस हसीन चेहरे को और भी हसीन बना देती है। एक छोटी सी मुस्कुराहट उस हसीन मुखड़े को और भी सजा देती है। तो बहनों, हमेशा हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, और इससे आपका सौंदर्य और भी अधिक निखर उठेगा। फिलहाल अब फिर चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवाते हैं आपको आए दिन बहार के फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और स्वर है लता मंगेशकर का।

अभी आप सुन रही थी आए दिन बहार की फिल्म का ये गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और स्वर था लता मंगेशकर का। तो बहनों, इसी तरह आप थोड़ा सा समय निकालकर हमारे ये कार्यक्रम जरूर सुनती रहिएगा, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि आज हम सभी बहुत व्यस्त हैं और अपने लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे। तो थोड़ा सा समय अपने शौक के लिए जरूर निकालें।

और यदि आप खुश और स्वस्थ रहना चाहती हैं तो समय समय पर खुद के लिए समय निकालें, अपने शौकों को पूरा करते रहिए और हमारे कार्यक्रमों को सुनती रहिए। तो हर पल मुस्कुराते रहिए, हर पल मुस्कुराते रहिए, कभी चुपके से मुस्कुरा कर दे और हर पल मुस्कुराते रहिए। कभी चुपके से मुस्कुरा कर देखना, कभी चुपके से मुस्कुरा कर देखना, दिल पर लगे पहरे हटा कर देखना। कभी चुपके से मुस्कुरा कर देखना, दिल पर लगे पहरे हटा कर तो देखना। ये जिंदगी भी आपके साथ साथ मुस्कुरा उठेगी, खुद पर कुछ लम्हे लुटा कर तो देखना, खुद पर कुछ लम्हे लुटा कर तो देखना। तो बहनों, आपका आने वाला हर पल मंगलमय हो, आप हमेशा हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, इसी कामना के साथ अब अनुमति दीजिए हेमलता खरे को। नमस्कार। अभी महिलाओं के लिए महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कृपया अब अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार। अभी महिलाओं के लिए महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कृपया अब अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा।

0: नेशन की धड़कन।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे नीलम कुलकर्णी के गाए लोकगीत।

नीलम कुलकर्णी की गायी इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। ये कार्यक्रम जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे मानस रॉय चौधरी के गाये भजन और गीत।

0: प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत यादों की बारात। पहला गीत इस फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी का गीत और राहुल देव बर्मन का संगीत।

लव इन टोक्यो कार्यक्रम का अंतिम गीत इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, हसरत जयपुरी का गीत है और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री से अपने कैबिनेट सहयोगियों का परिचय कराया। दोनों नेता 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के तहत आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे ताकाइची की पहली भारत यात्रा पर उनका स्वागत करके अत्यंत प्रसन्न हैं। प्रदेश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी VBG रामजी का आज प्रदेशव्यापी शुभारंभ किया गया। सभी जिलों में जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है। कार्यक्रमों में नागरिकों को 125 दिवस रोजगार गारंटी, पारदर्शी भुगतान प्रणाली और विकेंद्रीकृत ग्राम स्तरीय योजना निर्माण की जानकारी दी जा रही है। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी। दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने की वजह से हो रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक शाह का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। डॉ साहा भोपाल में आयोजित 28वें AOMSI मिड टर्म कन्वेंशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये राष्ट्रीय सम्मेलन आज से 4 जुलाई तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी परिसर में क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन थीम पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत 29 जून से आंशिक धन निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार सदस्यों को खाते में कम से कम 25% राशि सुरक्षित रखनी होगी। अब घर खरीदने, निर्माण, मरम्मत के साथ बीमारी, पढ़ाई और विवाह जैसे खर्चों के लिए भी धन निकाला जा सकेगा। ईपीएफओ जल्द ही यूपीआई और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सेवाएं शुरू करने जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस वर्ष इंदौर जिले में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दी गई। पौधरोपण आज से शुरू हो गया है और BSF परिसर में सर्वाधिक पौधे लगाए जाएंगे। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि यह अभियान केवल पौधरोपण नहीं बल्कि प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रदेश की सभी 78,000 से अधिक शालाओं ने इस रेटिंग में सहभागिता की थी। सभी चयनित विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा 1,00,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ग्रैंड चेस टूर 2026 के तीसरे इवेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर जगह बनाई है। विश्व चैंपियन डी गुकेश एक हार और एक जीत के बाद छठे स्थान पर रहे। वहीं फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा 5 अंकों के साथ अकेले शीर्ष पर बने हुए हैं। टूर्नामेंट में अब सुपर रैपिड के 6 राउंड और खेले जाने बाकी हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आज के लिए हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन और छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर में कल तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 28% कम बारिश हुई है, लेकिन जुलाई में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एम्स भोपाल के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार महापात्र ने सुश्रुत कॉमन एंडो ट्रेनर फैसिलिटी का उद्घाटन किया। यह सुविधा लेप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी

और जटिल सर्जरी का सुरक्षित और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। निवाड़ी में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के तहत यूएन वीमेन इंडिया की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव शोको इशिकावा ने परियोजना से जुड़ी बालिकाओं से संवाद कर उनके अनुभवों को जाना। डिंडौरी में डेंगू निरोधक माह के अवसर पर डेंगू से बचाव और जनजागरूकता के लिए डेंगू रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और गुना के क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय में नए छात्र छात्राओं के स्वागत और मार्गदर्शन के लिए दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है।

0: 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
2: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं। पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7

0: प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मधपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बार पहली जीत दर्ज की। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर

0: सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजिए नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजिए नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। कबाईसारपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव ने इन सब ने सुनना चाहा है सीता और गीता फिल्म का ये नगमा। आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है राहुल देव फरमन ने।

आशा भोंसले की आवाज में सुनिए समाधि फिल्म का ये नगमा। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है आरडी वर्मन ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं समाधि फिल्म का ये गीत।

जयबजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बेली जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली वैष्णवी, अनरथ रेखवार, लल्लू ऋषि रेखवार, कंवर कॉलोनी पड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। आप सबने सुनना चाहा है मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा चित्तर और साथियों की आवाज में शोर फिल्म का ये गीत, बोल राजकपि इंद्रजीत सिंह के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगला गीत है रामपुर का लक्ष्मण फिल्म से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी का गीत है और राहुल देव वर्मन का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से एमएम राजावत, राजे, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं समस्त राजावत परिवार ने। तो सुनिए आपकी फरमाइश का ये नगमा।

विक्टोरिया नंबर 203। लता मंगेशकर की आवाज में इस फिल्म का गाना सुनिए, वर्मा मलिक का गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मालवा रेडियो श्रोता संघ से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा ने। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

पिया का ख्याल कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए इस फिल्म से, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत को पसंद किया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतला राजेश, घंटागर छुक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने।

0: इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इसके साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। प्रदेश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी VVGRAMJI का आज प्रदेशव्यापी शुभारंभ हुआ। सभी जिलों में जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक शाह का उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत 29 जून से आंशिक धन निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार सदस्यों को अपने खाते में कम से कम 25% राशि सुरक्षित रखनी होगी। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस वर्ष इंदौर जिले में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दी गई। और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर और रात 8:15। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:00। 6:30 आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर ऋतु पांडे से ली गई भेंटवार्ता, विषय है वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद की सलाह। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:00। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे 10:00 और 9:30 फिल्म संगीत। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल हम रात 10:30 से आकाशवाणी दिल्ली से आपको सुनवाएंगे। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। आज की हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है उनका मनचाहा कार्यक्रम युववाणी।

0: स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आस्था द्विवेदी और मेरे साथ है
1: शिवांशु प्रजापति।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
1: जब कोई खिलाड़ी इतिहास रचता है तो दुनिया उसकी जीत देखती है, लेकिन उस जीत के पीछे की कहानी दुनिया तक कौन पहुंचाता है?
0: मैदान में खिलाड़ी खेलता है, लेकिन उस खेल की भावनाएं, संघर्ष, आंकड़े और सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का काम खेल पत्रकार करते हैं। यही कारण है कि हर वर्ष 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है।
1: साथियों, ये दिन उन पत्रकारों को सम्मान देने के लिए समर्पित है जो खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को निष्पक्षता और

0: जिम्मेदारी के साथ दुनिया के सामने लाते हैं।
1: इस दिवस की शुरुआत 1994 में हुई थी, जबकि इसकी तारीख 2 जुलाई इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन 1924 में पेरिस ओलंपिक के दौरान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी।
0: साथियों, सिर्फ स्कोर बताना ही खेल पत्रकारिता नहीं है। एक अच्छा खेल पत्रकार खिलाड़ियों के संघर्ष, उनकी मेहनत, खेल भावना, रिकॉर्ड विवाद, रणनीतियों और खेल से जुड़े सामाजिक प्रभावों को भी सामने लाता है।
1: आज के डिजिटल दौर में खेल पत्रकारों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है, जब वे केवल अखबार या टीवी तक सीमित नहीं है बल्कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट और लाइव विश्लेषण के माध्यम से करोड़ों लोगों तक तुरंत और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाते हैं।
0: साथियों, ऐसे समय में जब गलत जानकारी और अफवाहें तेजी से फैल सकती हैं, निष्पक्ष और तथ्य आधारित खेल पत्रकारिता खेलों की विश्वसनीयता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है।
1: लेकिन खेल पत्रकारिता का असली महत्व सिर्फ बड़ी जीत या हार तक सीमित नहीं है। कई बार यही पत्रकार उन खिलाड़ियों की कहानियां दुनिया के सामने लाते हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं।
0: उनकी रिपोर्टिंग के कारण कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचान, आर्थिक सहायता और बेहतर अवसर मिलते हैं। यानी खेल पत्रकार केवल खबर नहीं लिखते बल्कि कई खिलाड़ियों के भविष्य को भी नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: साथियों, इतिहास गवाह है कि कई बड़े खेल घोटालों, डोपिंग मामलों और खिलाड़ियों के साथ होने वाले अन्याय को भी खेल पत्रकारों की खोजी रिपोर्टिंग ने उजागर किया है।
0: विश्व खेल पत्रकार दिवस हमें ये याद दिलाता है कि खेल केवल पदक जीतने का नाम नहीं बल्कि प्रेरणा, अनुशासन, संघर्ष और एकता की कहानी भी है। इन कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने वाले खेल पत्रकार ही खेल और समाज के बीच मजबूत सेतु है।
1: इसलिए आज का दिन उन सभी खेल पत्रकारों के समर्पण, साहस और निष्पक्ष पत्रकारिता को सलाम करने का दिन है जो हर जीत के पीछे छिपी असली कहानी को दुनिया के सामने लाते हैं।
0: तो दोस्तों, ये तो थी महत्वपूर्ण चर्चा विश्व खेल पत्रकार दिवस के बारे में। और आज था, आज है गुरुवार और हमारे दोस्त बेसब्री से इंतजार करते हैं अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स का।
1: बिल्कुल, हमारे दोस्तों का मन पसंदीदा कार्यक्रम फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स, तो क्यों ना सुनवा दिया जाए।
0: बिल्कुल आज था।
2: हेलो हेलो फ्रेंड्स,
3: हेलो, आप कौन और कहां से बोल रहे हैं?
4: जी, मैं जिला रादरेली ग्राम पहाड़ीपुर से रामराज बोल रहा हूं।
3: जी रामराज जी, कैसे हैं आप?
4: जी हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं?
3: बढ़िया है हम भी। और हेलो फ्रेंड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: लग जाता है तो बहुत खुश होते हैं।
3: जी जी, और आज क्या पसंद है आपकी?
4: जी मुझे फिल्म क्रोधी का गाना सुनवा दीजिए, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा।
3: जी जी, बहुत अच्छा गाना पसंद किया है आपने। और आपका मौसम कैसा है?
4: जी मौसम हमारे यहाँ बारिश तो अभी रायबरेली जिले में कहीं कहीं हुई है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, बादल छाए हुए, ठंडा है, लेकिन बारिश अभी नहीं हुई है।
3: जी जी बिल्कुल, बारिश का मौसम आ ही गया है तो धीरे धीरे बारिश भी आ जाएगी।
4: हाँ जी आ जाएगी, लेकिन मौसम ठंडा है।
3: जी जी, तो जी। गर्मी से काफी राहत मिली होगी, मौसम ठंडा है तो?
4: बहुत गर्मी होती थी, इस समय तो ठंडा है बढ़िया।
3: जी जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत।
4: जी नमस्कार।
3: नमस्कार।

0: हेलो हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताइए, कौन और कहां से बात
1: जी
0: कर रहे हैं?
1: योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, विमय तरह छत्तीसगढ़।
0: योगेश जांगड़े
1: जी
0: जी जी आपका हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। फरमाइश बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फरमाइश रहेगा, फिल्म है हम आपके है कौन, और गीत के बोल है ये मौसम का जादू है मितवा।
0: बहुत ही बढ़िया गीत है योगेश जी। और क्या करते हैं योगेश जी आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं भैया मूल रूप से, और कल ही तो धान की बुआई शुरू की है।
0: जी जी जी चलिए बढ़िया, आप खेती करते हैं
1: जी।
0: आइए योगेश जी, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत
1: जी। शुक्रिया,
0: नमस्कार।

0: हेलो फ्रेंड्स, में आपका स्वागत है।
1: हेलो फ्रेंड्स
0: जी हेलो फ्रेंड्स, आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम चंग बमहरी कलां जलटकमगढ़ से जस पाठक बात कर रहे हैं। दीदी, गाना सुनना है?
0: कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज आप?
1: हिंदू फिल्म का सुनवा दीजिए, कोई भी अच्छा सा।
0: जी बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत।
1: आप कौन बोल रहे हैं दीदी?
0: जी
1: नाम
0: जी, मेरा नाम आस्था द्विवेदी है।
1: अच्छा
0: जी,
1: पुराना श्रोता हूँ दीदी।
0: जी जी बिल्कुल, आप हमारे पुराने श्रोता हैं। और आपको आकाशवाणी के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं?
1: कार्यक्रम सभी आते हैं, सभी अच्छे लगते हैं
0: जी।
1: हेलो फ्रेंड्स है, हेलो फरमाइश है, जो भी है, चतरपुर से आकाशवाणी से आते हैं कार्यक्रम, सभी अच्छे लगते हैं दीदी हमको।
0: जी जी, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आ रहे हैं।
1: जी दीदी, ओके
0: जी, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।
1: ओके
0: जी, नमस्कार।

0: हेलो हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताइए, कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
1: जी सर, मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, आपका दोस्त मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूं सर।
0: बेटा सिंह यादव जी, आपका हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी सर, बहुत धन्यवाद।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: जी सर, मैं बढ़िया इस समय, और आज बारिश भी हो गई है तो धान की फसल जो लगाने वाले थे
0: जी जी,
1: तो अभी उसी की तैयारी चल रही है सर।
0: अच्छा अच्छा, धान की तैयारी चल रही है।
1: जी जी सर,
0: इस समय तो आपके यहाँ मौसम ठंडा हो गया होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, आज सुबह में ही बारिश हुई थी, अभी तक तो बहुत ज्यादा गर्म पड़ रही थी
0: जी,
1: लेकिन
0: जी।
1: आज सुबह में 10 बजे के बीच में बारिश, घनघोर बारिश हुई है सर, जबरदस्त बारिश जिसको बोलते हैं, बारिश पूरा खेत वेत भर गए।
0: बिल्कुल, इसका मतलब है कि मानसून आ चुका है।
1: जी जी जी
0: जी, तो आज फरमाइश बताइए बेटा सिंह जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी सर, फिल्म का नाम रहेगा अंदाज और गीत की बोल रहेगा आएगा मजा या बरसात का, तेरे मेरे दिल के मुलाकात का।
0: प्यारा गीत आपने पसंद किया है।
1: जी जी जी सर
0: जी, चलिए बढ़िया। और क्या करते हैं बेटा सिंह जी आप?
1: जी सर, वैसे फिलहाल मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, अब एक किराने की दुकान खोलने वाला हूँ, तो मतलब वो बंद रहा किराने की दुकान जो भी है, और महीना डेढ़ महीने के अंदर वो भी खुल जाएगी सर, तो दुकान में बैठे बैठे आपका रेडियो कार्यक्रम भी सुनते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फरमाइश, जो इतने सारे कार्यक्रम आते हैं
0: जी,
1: और छतरपुर के कार्यक्रम वैसे भी मुझे बहुत ही पसंद आते हैं सर, जितने भी सारे कार्यक्रम आते हैं।
0: जी जी, आप किस माध्यम से सुनते हैं? रेडियो, रेडियो के माध्यम से या न्यूज़ ऑन एयर के माध्यम से?
1: बिल्कुल सर, रेडियो रखा हूँ मैं और रेडियो के माध्यम से ही सुनता हूँ।
0: रेडियो के माध्यम से सुनते हैं, तो चलिए आप आकाशवाणी छतरपुर को ऐसे ही सुनते रहिए। तो आइए बेटा सिंह जी, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।
1: ओके साहब, नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: हेलो फ्रेंड्स, में आपका स्वागत है। आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हेलो फ्रेंड
0: जी। हेलो फ्रेंड से
1: जी, मैं ग्राम तरसमा जिला मुरैना से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: जी तोमर जी, कैसे हैं आप?
1: आपकी दुआ इसी सुबह से बहुत अच्छी तरह से हूँ।
0: जी जी, और आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: फिल्म का नाम है सबक।
0: जी, सबक फिल्म का कौन सा गीत?
1: बरखा रानी जरा जम के बर तू मेरा दिल भर जान पाए।
0: अरे वाह, बिल्कुल आपने मौसम के अनुरूप गाना चुना है। तो बारिश का मौसम आ चुका है, आपके यहाँ भी बारिश हो रही होगी?
1: अभी तो नहीं हो रही, बादल छाए हुए, आशा करते हैं हो सकती है।
0: जी जी, बादल छाए हुए हैं तो जरूर जल्द ही बारिश होगी। और क्या करते हैं आप?
1: खेती किसानी करता हूँ मैं।
0: जी जी, खेती किसानी करते हैं। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताइए, कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
1: जी नमस्कार भैया, मैं दीपक सिंह गुर्जर बात कर रहा हूँ, ग्राहकल विकास खंड नदीगांव, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश।
0: दीपक सिंह गुर्जर जी, आपका हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: क्या करते हैं दीपक जी आप?
1: मैंने बीएड कर लिया है और वर्तमान में खेती किसानी में हाथ बटाता हूँ मैं परिवार के साथ।
0: खेती किसानी करते हैं, और क्या बोया है इस बार खेती में?
1: धान की बोनी चल रही है हमारे यहाँ।
0: धान की बोनी चल रही है। मौसम कैसा है इस समय आपके यहाँ का?
1: मौसम जैसा छतरपुर का है वैसा ही यहाँ है। बारिश अभी पिछले 2-3 दिन पहले हल्की सी हुई थी। बारिश का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि हमारे किसान भाइयों को धान की बहुत ही अपेक्षा होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आज फरमाइश बताइए दीपक जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज आप मुझे सुनवा दीजिए, फिल्म है फिदा और गीत के बोले दिल मेरे ना और इंतजार कर।
0: क्या बात है, बहुत ही प्यारा गीत है।
1: जी जी बिल्कुल, उदित नारायण और अलका जी की आवाज में है।
0: जी जी, कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हो दीपक जी आप आकाशवाणी छतरपुर से?
1: युवक है तो आकाशवाणी का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो हम पसंद नहीं करते हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक के सारे कार्यक्रम सुनते हैं आपका, भक्ति संगीत, ग्राम सभा, मानस प्रवचन और आपका डेली सुगंध, नारी के जगत और युवाणी, ग्राम सभा इत्यादि, और जो भी वार्ताएं, भेंट वार्ताएं, स्वस्थ वार्ताएं आदि सभी सुनते हैं।
0: जी जी, तो आप ऐसे ही आकाशवाणी छतरपुर को सुनते रहिए। तो आइए दीपक जी, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।
1: नमस्कार भैया।
0: नमस्कार।

0: हेलो फ्रेंड्स, आप
1: हेलो
0: कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: जी, और आपको आकाशवाणी के कार्यक्रम कैसे लगते हैं?
1: जी, कार्यक्रम से मैं जुड़ा रहता हूँ, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम आते हैं और मोबाइल एप के कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं।
0: जी, कौन कौन से
1: जी,
0: कार्यक्रम
1: और
0: आपको अच्छे लगते
1: आपको
0: हैं
1: बताऊँ,
0: आकाशवाणी के?
1: फोन प्रोग्राम सुनता हूँ, पत्रों पर आते हैं वो सुनता हूँ,
0: जी,
1: और गीत गीत के जो कार्यक्रम आते हैं ना, चित्रलोक वगैरह, विविध भारती से सुनता हूँ, और फिल्म संगीत भी सुनते हैं।
0: जी, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आकाशवाणी के कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आज क्या फरमाइश है आपकी? कौन सा गीत सुनना
1: जी
0: चाहेंगे?
1: जी फिल्म का नाम है मर्डर, और गाने के बोले कहो ना कहो।
0: जी, मर्डर फिल्म का कहो ना कहो। अच्छा गाना पसंद किया है आपने, हम आपको
1: जी
0: जरूर
1: बिल्कुल
0: सुनवाएंगे। और क्या करते हैं आप?
1: जी, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, अभी सोयाबीन की फसल लगाई है हमने।
0: जी, तो बिल्कुल
1: जी हाँ,
0: मानसून
1: और
0: आ गया
1: बरसी
0: है,
1: हो
0: तो
1: गई
0: आपके यहाँ
1: हमारे
0: बारिश
1: यहाँ
0: हो
1: पर।
0: रही है या नहीं?
1: हाँ जी, बरसात हुई थी, रात में हुई थी, आज सुबह भी हुई है, और ऐसा लग रहा है शाम तक फिर से बरसात हो जाएगी।
0: जी, बिल्कुल। चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद पर ये गीत।
1: जी थैंक यू सो मच।
0: जी, नमस्कार।
2: तुम भूल गई, मैं तुम्हारी खामोशी भी पहचानता हूँ।
3: कैसे हो सनी?
2: जब मिलोगी तो बताऊंगा।
3: मैं नहीं मिल सकती सनी, ऑफिस से और घर से फुर्सत ही नहीं मिलती।
2: तुम झूठ मुझसे बोल रही हो, अपने आप

0: I know you want to meet me. See me again. है ना?
1: क्यों? क्या मैं ऐसे ही फोन नहीं कर सकती?
0: तुम जैसे फोन कर सकती हो वैसे मिल भी सकती हो. I'm dying to meet you, Simran. ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं. Outside moonlight.
1: नहीं सनी, it's not possible. मैं नहीं मिल पाऊंगी.
0: ठीक है, मत आओ. मैं हमेशा की तरह तुम्हारा इंतजार करूंगा.
1: नरगिस, अगर सुधीर का फोन आए तो प्लीज टेल हिम आई एम इन अ बोर्ड मीटिंग एंड आई कॉल हिम बैक.
2: ऐसी कौन सी जरूरी मीटिंग है जिसके लिए तुम मुझसे झूठ बुलवा रही हो?
1: बाय.
2: किस चक्कर में हो मैडम?
1: बाय.
0: अपन आओ, बैठो बैठो बैठो. बाइक पर बैठना भूल गए हो क्या? ठीक तरह से बैठो ना. सिट प्रॉपर्ली. बाइक नहीं है, टाइम मशीन है ये. सो पुट योर हैंड्स अराउंड मी एंड लेट मी टेक यू बैक इन टाइम.

0: हेलो हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताइए, कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
1: सर, मैं तहसील बहादुरपुर, जिला अशोकनगर, एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूं।
0: सूर्य प्रताप यादव जी, आपका हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर।
0: और इस समय आपके यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है?
1: मौसम तो कभी धूप है तो कभी बारिश हो जाती है सर।
0: तो गर्मी भी काफी ज्यादा हो रही होगी अभी इस समय?
1: हाँ, फिर बाद में गर्मी भी हो जाती है, उमस हो जाती है, बारिश के बाद फिर गर्मी दोबारा से।
0: जी, क्या करते हैं सूर्य प्रताप जी आप?
1: सर, हम खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती करते हैं, तो क्या बोया है इस बार खेती में?
1: अभी धान लगी है सर, खेती में
0: धान लगाई हुई है अभी। तो चलिए, आज फरमाइश बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में?
1: सर, फिल्म का नाम है छोटे सरकार।
0: छोटे सरकार फिल्म का कौन सा गीत?
1: उसमें गाना है सोचो ना जरा ये सोचो ना।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे आपको सूर्य प्रताप जी। आकाशवाणी छतरपुर से कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हो?
1: सारे कार्यक्रम, जैसे कि युवाणी कार्यक्रम है, लोक रंग है, लोक धारा है, और रम टूला है, लोक मंजरी है, सारे कार्यक्रम सुनते हैं। जब आप गुनगुना होते हैं हेलो फरमाइश।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस माध्यम से सुनते हैं, न्यूज ऑन AIR के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से?
1: हम रेडियो के माध्यम से सुनते हैं।
0: रेडियो के माध्यम से आप सुनते हैं छतरपुर आकाशवाणी को। तो चलिए, आप आकाशवाणी छतरपुर को ऐसे ही सुनते रहिए। तो आइए, सूर्य प्रताप जी सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।
1: जी सर, धन्यवाद,
0: नमस्कार।

0: हेलो हेलो फ्रेंड्स,
1: तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। और आस्था, इसी के साथ हम अपने दोस्तों को दे देते हैं आज की रोजगार सूचना।
2: DSSP दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं।
1: पदों की संख्या 1979।
2: शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार भिन्न भिन्न है।
1: आयु सीमा न्यूनतम 18 से 21 वर्ष, अधिकतम 30 से 35 वर्ष, पदों के अनुसार अलग अलग है। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026।
2: अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.dsssb.delhi.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी रोजगार सूचना, और अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले बता देते हैं कल के कार्यक्रम।
2: कल आप सुनेंगे वार्ता मानसिक स्वास्थ्य और युवा, वार्ताकार होंगी आदिति शुक्ला,
1: साथ ही होंगी महत्वपूर्ण चर्चाएं और होगी रोजगार सूचना। तो अनुमति दीजिए अपने दोस्त शुभांशु प्रजापति
2: और आस्था द्विवेदी को
1: नमस्कार।

युवा साथियों के लिए अभी युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आपको बता देते हैं आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सबसे पहले आज की सभा के शेष कार्यक्रम। शाम 6 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिली किया जाएगा प्राचित कार्यक्रम एनसीईआरटी का भाग 1319। शाम 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे लोकधारा, जिसमें आज के हमारे कलाकार होंगे वीरन वंशकार। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ग्रामीण भाई आज सुनेंगे जनोपयोगी चर्चाओं और लोकगीतों पर आधारित कम्पेयर कार्यक्रम। सुनो गीत गुनो बतकाओ, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। साथ ही होगी वार्ता बुंदेलखंड में जलवायु स्मार्ट खेती। वार्ताकार होंगे डॉक्टर आयुष मिश्रा। और आज की सीख होगी जो भूई लौट चले पुरवाई, तब जानो बरखा ऋतु आई। और होगी विभिन्न विषयों पर चर्चा। रात 8 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कवि गोष्ठी, प्रायोजक होंगे हरिशंकर जोशी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 8:30 पर। और रात 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किया जाएगा क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये थे आज के सभा के कार्यक्रम। आइए अब आपको बता देते हैं कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल आकर्षण रहेगा प्रातः 7:20 पर हिंदी महक, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे हिंदी काव्य पाठ विक्रम नामदेव से। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम जो कि बच्चों में आज के समय में होने वाली सामान्य बीमारियों एवं बचाव विषय पर होगी, उस पर जानकारी देंगे डॉक्टर हृदेश खरे। 9 बजे आप सुनेंगे लोक रंग कार्यक्रम, कलाकार होंगे मुस्कान प्रजापति। 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी कव्वालियां। 10:05 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा का भाग 9वां। प्रवक्ता एवं प्रस्तुतकर्ता होंगे महेश शर्मा। गैर फिल्मी भजन सुनिएगा 10:20 पर। श्रोताओं के सोशल मीडिया संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद सुनेंगे आप 10:30 पर। दोपहर 1 बजे महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत महिलाएं सुनेंगी विभिन्न विषयों पर चर्चा। साथी होगा काव्य पाठ सौम्या श्रीवास्तव से और साथी होगी उपयोगी जानकारी। दोपहर 1:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले किया जाएगा साक्षरता पर बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत, जो कि आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगी। 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम, कलाकार होंगे सत्यनारायण तिवारी और यह कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगी। यह कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:45 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से। सांध्यकालीन सभा में युवा साथियों के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:02 पर, जो कि आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होगा। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। शाम 6 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का भाग 1320। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, कल के हमारे कलाकार होंगे शकुंतला शुक्ला। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ग्रामीण भाई कल सुनेंगे विभिन्न विषयों पर चर्चा। साथियों का मानस प्रवचन, प्रसंग होगा मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा, प्रवचन करता होंगे देवनाथ पाठक। साथियों की वार्ता फसल विविधीकरण के ऊपर, जिसमें विषय होगा टिकाऊ कृषि और समृद्ध किसान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। वार्ताकार होंगे पंकज सिंह पटेल। और आज की सीख होगी जितने के भगत नहीं उतने का मंजीरा फूटे। रात 8 बजे आप सुनेंगे रसावतरण के अंतर्गत कवि गोष्ठी। और रात 9:30 पर भी आप सुनेंगे रसावतरण के अंतर्गत कवि गोष्ठी। रात 8 बजे कलाकार होंगे शिवा सक्सेना, रूपनारायण पाठक, रविशंकर बिलैया, राम बिहारी सक्सेना और संजू सूर्यम ठाकुर। और रात 9:30 पर कलाकार होंगे उपेंद्र सोनी, दीपक पटेल, रामबाई आहिरवार, डॉक्टर सुधा गगन कनौजे। और 10 बजे आप सुनेंगे बुंदेली नाटक तुम्हारी ज्ञानवती।

और रात 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित निखिल बनर्जी का सितार पर बजाया राग हेम बिहाग। ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। न्यूज हेडलाइंस कुछ पलों बाद हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की संभावना को देखते हुए आवश्यक तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार ने प्रदेश की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की बड़े पैमाने पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 2548 पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में जनजाति बाहुल्य 25,892 घर अब तक विद्युतीकृत किए जा चुके हैं और चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं। इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का

0: हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
1: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में,
1: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
1: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
1: जी।
0: इसे तराशा जाता है।
1: और
0: हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
1: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
1: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
1: जी,
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
1: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
0: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
1: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
0: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं, और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं,
1: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओं, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओं, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओं, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर, कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है।
3: अति

0: सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
1: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
0: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
2: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
0: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
0: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
1: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुँचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
4: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: हाँ, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
4: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
1: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो।
1: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
8: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज,
9: मेरा कहना है कि राजकुमार

0: कुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
1: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
1: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
0: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
1: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
1: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा
6: कहीं पर बैठ कर
7: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
6: इसके
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
0: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
2: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
1: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
8: महाराज जय हो,
9: महाराज जय हो, महाराज जय हो।
10: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं।

0: सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलड़ू मैं, चल चलू मैं, जल्दी सीख भी जाती।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के

0: बारे में बातचीत करेंगे।
1: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
2: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
1: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
2: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
3: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
4: हम अच्छे हैं।
3: तो बच्चों शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
4: जी हम तैयार हैं।
3: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
4: आदित्य L1 के बारे में?
5: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
2: सर इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
3: बहुत अच्छा सवाल। देखो आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
1: सर टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
3: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
2: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
3: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
2: जी मेरा नाम श्रुति है।
3: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
6: सूर्य ग्रह है या तारा?
3: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
2: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
3: सुमित तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
4: अच्छा सर।
1: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
2: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
3: बच्चों दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
1: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
3: हाँ सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
2: विशाल गैसों का गोला?
1: अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
3: शाबाश, समझ गए ना?
4: जी सर।
2: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
1: सर आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
3: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
4: जी सर।
3: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
2: सर हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
3: हाँ सही कहा, आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
1: सर मेरा नाम दिवाकर है।
3: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
4: जी सर।
3: जी दिवाकर आपका प्रश्न क्या है?
1: सर मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान

0: उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
1: अरे भला जलेगा कैसे? आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
2: जी सर। सर आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
3: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
0: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
3: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
2: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
3: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
5: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: उमंग, अभी आपने NCERT का ये प्रायोजित कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
9: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं वीरन वंशकार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं वीरन वंशकार का गाया ये साक्षरता गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: कार्यक्रम लीजिए। सुनिए ये चौकड़ी।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये देवी गीत वीरन वंशकार से।

और इसी गाड़ी के साथ ही आज का हमारा बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं पर समाप्त होता है। कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार थे वीरन वंशकार। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब आपको बता देते हैं गुमशुदा संबंधी सूचना। गुमशुदा संबंधी सूचना के पहले भी आपने सुना था लोकधारा कार्यक्रम। चलिए अब रुक करते हैं गुमशुदा संबंधी सूचना की ओर। पहली गुमशुदा संबंधी सूचना है हमारे जो हैं वो हैं अनमोल गुप्ता की। पिता का नाम है संतोष कुमार गुप्ता, पता है सिरसा दोगड़ी से, थाना माधवगढ़ जनपद जालौन से। उम्र लगभग 26 वर्ष बताई गई है। कद 5 फुट 7 इंच है। रंग गेहुआ है। निशान जो है चेहरे पर फुड़िया के निशान और ओट मोटे हुए जो है उनके। पहनावा मरून रंग की गोल गले की टी शर्ट, ग्रे कलर का लोअर और पैरों में सफेद रंग की क्रॉस की फाइबर चप्पल पहने हुए हैं। मानसिक स्थिति के बारे में बताया गया है कि वो दिमाग से थोड़े से कमजोर हैं। यह 2 मई से लापता हैं और जिस किसी को भी इनके बारे में जानकारी लगती है वह इन नंबरों पर जानकारी दे सकता है। पहला नंबर है 8924078775 यानी 8924078775। दूसरा नंबर है 9454403601 यानी 9454403601। तीसरा नंबर है 8115392395 यानी 8118115392395। ये थी गुमशुदा संबंधी सूचना अनमोल के बारे में। आइए आपको जानकारी देते हैं रोशनी के बारे में। पता है मोहल्ला काजीपुर कालपी जालौन का। उम्र करीब 23 वर्ष बताई गई है। कद 5 फुट। रंग गेहुआ है। पहनावा काला कुर्ता सफेद पैजामी व लाल रुपट्टा डाले हुए हैं। यह 23 मई 2026 को दोपहर 12 बजे घर से गायब हो गई हैं, जो अभी तक नहीं मिली हैं। जिन किसी को भी इनके बारे में जानकारी लगती है वह इन नंबरों पर जानकारी दे सकता है। पहला नंबर है 9454401429 यानी 9454401429। दूसरा नंबर है 9454403596 यानी 9454050503596। और तीसरा नंबर है 8090985421 यानी 8090985421।

मेडम विपरी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की शिखर वार्ता। आर्थिक, रक्षा और एआई क्षेत्र में हुए कई समझौते। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की तैयारियों के साथ नर्मदा समग्र मिशन की समीक्षा की। मनरेगा की जगह लेने वाली वीबी जीरामजी योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ। अब मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी। और दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, 30 जुलाई को होगा मतदान और 3 अगस्त को मतगणना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच नई दिल्ली में वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता हुई। भारत और जापान ने आर्थिक, ऊर्जा, सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल, रक्षा और एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों ने पहली सह विकास परियोजना पर भी समझौता किया। ऊर्जा सुरक्षा के तहत भारत जापान जैव गैस पहल से देश में 1000 जैव गैस और आर्थिक जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मंत्रालय में अल्प वर्षा की संभावना को देखते हुए विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मसूर और उड़द जैसी कम पानी की फसलों के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा अलनीनो के प्रभाव को देखते हुए एडवांस प्लानिंग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अगले 2 वर्षों की कार्य योजना के तहत जलाभिषेक 2.0 के माध्यम से तालाबों और बावड़ियों के पुनर्जीवन के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नर्मदा समग्र विभिन्न मिशन की भी समीक्षा की। इस मिशन का उद्देश्य नर्मदा नदी का संरक्षण और जल संवर्धन करना है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने

0: आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से विकसित भारत जीराम जी योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि इस योजना के तहत मनरेगा के 100 दिनों की तुलना में अब 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी।
1: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जीराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। केंद्र ने जो अपना शेयर दिया है, पैसा दिया है, वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया। इतनी बड़ी धनराशि मजदूरों को काम और गांव के विकास के लिए दी जाएगी।
0: वहीं प्रदेश में भी विकसित भारत जीराम जी योजना आज से मनरेगा का स्थान ले चुकी है। सभी जिलों में आज जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। डॉ साहा 28वें AOMSI मिड टर्म कन्वेंशन में शामिल होने के लिए भोपाल आए। ये राष्ट्रीय सम्मेलन 2 से 4 जुलाई तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी परिसर में क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन थीम पर आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और पोषण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कुल 2,548 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 781 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1,767 पद सहायिकाओं के लिए हैं। स्थानीय पात्रताधारी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन एमपी ऑनलाइन के जरिए 13 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। दोनों पदों के लिए 12वीं उत्तीर्ण और 18 से 35 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी। दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने की वजह से हो रहा है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के ई नगर पालिका पोर्टल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार की साइबर सुरक्षा श्रेणी में रजत पुरस्कार मिला है। जयपुर में आयोजित समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह सम्मान आयुक्त संकेत भोंडवे को प्रदान किया। आयुक्त श्री भोंडवे ने कहा कि विभाग ने आधुनिक तकनीकों और सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपायों से डिजिटल नागरिक सेवाओं को प्राथमिकता दी है। प्रदेश के सहकारिता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज भोपाल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सहकारी सप्ताह के तहत लगाई गई है। उन्होंने हस्तशिल्प कारीगरों और महिला स्वसहायता समूहों को सिलाई मशीन सहित टूल किट भी वितरित किए। ये प्रदर्शनी 4 जुलाई तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री और धार सांसद सावित्री ठाकुर ने आज पीथमपुर में निर्माणाधीन रेलवे टनल का निरीक्षण किया। इस दौरान वे करीब 70 फीट नीचे उतरकर टनल के भीतर पहुंची। उन्होंने कहा कि रेल परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस परियोजना के पूरी होने के बाद क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अब तक 25,892 जनजातीय घर विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सर्वाधिक 13,058 घरों को विद्युतीकृत किया है। ये योजना आदिवासी बाहुल्य गांवों में परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 40% व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश की पुलिस के लिए 1 जुलाई से EHRMS का ई लीव मॉड्यूल लागू कर दिया गया है, जिसमें पुलिसकर्मी अब ऑनलाइन अवकाश आवेदन और उनकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के निर्देश पर प्रदेश की करीब 120 पुलिस इकाइयों में यह व्यवस्था लागू की गई है। भारतीय रेलवे ने जून 2026 में पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस दौरान 63,81,00,000 यात्रियों ने रेल यात्रा की, जो कि पिछले वर्ष से अधिक है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में आज भोपाल समेत 11 जिलों में तेज बारिश हुई। खरगोन के कसरावद में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से सड़कें और खेत जलमग्न हो गए। शाजापुर के अकोदिया में लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश से किसानों को राहत मिली। वहीं मानसून ने 24 जून को प्रदेश में एंट्री की थी और 9 दिनों में पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। मौसम विभाग ने हरदा, नर्मदा

नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुना और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर में इस बारिश में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। बीएसएफ परिसर सहित देवगुराड़िया, लिम्बोदी और कृषि कॉलेज परिसर में बड़े पैमाने पर पौधरोपण होगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नागरिकों से मां के सम्मान से कम एक पौधा लगाने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण का शुभारंभ किया। रायसेन जिले के 1800 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्कूल रेडीनेस मेला 2 का समापन उत्सव का आयोजन किया गया। बैतूल जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भैंसदही की छात्रा पद्मा मरसकोले ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश पाकर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। देवास जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 3 दिनों में 1,84,000 से अधिक बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई गई। शिवपुरी के कृषि विज्ञान केंद्र पर किसानों के लिए टमाटर और मिर्च की उन्नत खेती को लेकर एक विशेष किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भिंड में फसल बीमा माह के अंतर्गत जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आगरमालवा के शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संगम के तहत कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की शिखर वार्ता, आर्थिक, रक्षा और एआई क्षेत्र में हुए कई समझौते। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की तैयारियों के साथ नर्मदा समग्र मिशन की समीक्षा की। मनरेगा की जगह लेने वाली वीबी जीरामजी योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ, अब मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी और दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, 30 जुलाई को होगा मतदान और 3 अगस्त को मतगणना। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 7:20 हो रहे हैं। ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत है उनका मनचाहा कार्यक्रम ग्राम सभा।

अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा में आज स्वीकार करो अपने छुट्टन भैया की दो ही हाथ जोड़ के राम राम। और देखो भैया, हमारी आवाज अपन तक पहुंच रही है तो इके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है या सबसे बड़ा भैया काम है वो है संचार को, यानी अपन जीखों का है संचार साधन, है ना। अब संचार जो साधन होते हैं उनमें भैया अपनो रेडियो भी आउट है और अपने भैया जो समाचार पत्र हैं, पेपर हैं, ये भी आउट हैं, है ना। कैसे अपन को जो सूचनाएं हैं वे इन सब माध्यम से पहुंचती हैं और दिन भर में जो भी घटनाएं भई हैं और जौन प्रकार की भैया परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ये सब जानकारी अपन को भैया समाचार पत्र और समाचार के माध्यम से मिलते हैं। उनमें रेडियो है, दूरदर्शन है, अपने पेपर हैं, ये सब हैं, है ना। अब अपन सोचा था यो कि छोटन भैया आज एक ही चर्चा

0: काय करण लगे। तो आज हम अपने पंच भैयन को बता दें कि आज है विश्व खेल पत्रकार दिवस, है ना। और इकी भैया शुरुआत सबसे पहले जोन भई हती बा 2 जुलाई 1924 को पेरिस के ओलंपिक खेल के दौरान एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन बना हुआ तो। अब इके बनावे को जो उद्देश्य हतो के जोन अपने पत्रकार भैया हैं और जोन खेल से जुड़ी भाई खबरें अपन तक पहुंचात हैं, उनके सामने कौन कौन सी परेशानी आती हैं, कौन कौन तरीका से वे इन समाचार को तैयार करते हैं, इन समाचार को अपने पास इकट्ठे करते हैं, तो उन की परेशानियां को समाज और दुनिया के सामने लाबो, है ना। और ईखो अपने इते मनावे की जो शुरुआत है बा भाई हती भैया 1994 में, है ना। 1994 में खेल पत्रकार दिवस मनावे को भैया की शुरुआत करी थी। ऐसे हर 2 जुलाई को अपन हर साल विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाउ थे। अच्छा, इको उद्देश्य भी जो ही रात है कि अपन ने देखो ही है कि जब खेल होते हैं, चाहे वे कोनो भी खेल हो, और उनके जो पत्रकार भैया हैं वे अपन तक कौन प्रकार से कौन कठिनाई को सामना करके अपन तक समाचार या न्यूज पहुंचाते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वे समाज को और दुनिया को कैसे पतो चले, यही सब बातन को लेके जो भैया दिवस मनाओ जाते हैं, है ना। तो जा तो हती भैया बतकाओ अपने विश्व खेल पत्रकार दिवस के ऊपर। और भैया अपन ने देखो ये कि इस समय पे अपने जो पंच भैया हैं उनके खेतन में जुताई हो गई है और जिते पानी बरस गयो है तो उते बुवाई भी हो चुकी है। अब ऐसे में वे पंच भैया जोन अपने तिल की खेती करन चाह रहे हैं या तिल की खेती करवे को विचार कर रहे हैं, तो उनके लाने कछु उन्नत प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम अपन को बता रहे हैं। तो उनमें है भैया जैसे टीकेजी 21, आरटी 125, आरटी 127। और भैया जोन जे अपन ने तीन किस्में बताई, जे किस्में अपने टीकमगढ़ जिला द्वारा विकसित करी गई है, यानी टीकमगढ़ जिला में जोन भैया अपनो कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विद्यालय है, उते के द्वारा जे किस्में भैया विकसित करी गई हैं। ई के अलावा भैया जेटीएस 8, जीखो जवाहर तिल 8 के नाम से अपन जानत हो, जेटी 1, जेटी 2, जेटी 10 और B67। इके अलावा कछु और किस्में भी बताई गई हैं जिनमें भैया आरटी 346 जा किस्में भैया ऐसी है कि जहां पे जैसे पानी की कमी है ऊ के लाने सबसे अच्छी है। दूसरी बात भैया जब 75 से 80 दिन में पक्के तैयार हो जाते हैं। एक और है भैया टीकेजी 22 जा भैया 70 से 75 दिन में पक जाते हैं। एक है भैया गुजरात तिल 2 जा बेहद गर्म और भैया शुष्क जलवायु और कम सिंचाई में जा अच्छी उपज अपन को प्रदान करते हैं। तो अपने जो पंच भैया हैं वे पंच भैया जो तिल की खेती करवे को विचार कर रहे हैं, तो अपन ने जो किस्में बताई हैं उन किस्मन को यदि अपन ने उपयोग करो ई बार तो अपन को एक तो अच्छा उत्पादन मिले, है ना, और अपनो जो खर्चा है वो भी भैया कम हुई है। तो हमा तो पंच भैया से जो ही कह वो है कि अपने पंच भैया जोन उन्नत प्रजातियां बताई जाती हैं उन उन्नत प्रजातियां को अपन उपयोग करें, ताकि उन्नत प्रजातियां में एक तो भैया रोग राई रहने की संभावना कम रहते है, है ना, और दूसरी बात जी अपन को कम लागत में अधिक उत्पादन देती हैं, हैं। और अपनो भैया खेती को उद्देश्य भी जो ही है कि अपन को भैया खर्चा कम लगे और उत्पादन ज्यादा हो। कैसे भैया जब अपनो उत्पादन अधिक हुई है तो तभी तो अपन को 2 पैसा ज्यादा मिले, है ना, और तभी घर में भैया खुशहाली आए। तो ऐसे ही अपने पास एक वार्ता भी है कि बुंदेलखंड में जलवायु स्मार्ट खेती, और वार्ताकार हैं अपने डॉक्टर आयुष मिश्रा। तो अपन उनसे सुनाते हैं जा वार्ता के बुंदेलखंड में जलवायु स्मार्ट खेती का है और कौन प्रकार से अपने पंच भैया इको लाभ ले सकते हैं।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं

आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ जो हम सभी किसानों के जीवन और खेती से सीधे जुड़ा हुआ है। विषय है बुंदेलखंड में जलवायु स्मार्ट खेती। किसान भाइयों और बहनों, बुंदेलखंड की धरती संघर्ष और मेहनत की धरती है। यहाँ के किसान सीमित संसाधनों में भी खेती करते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मौसम के बदलते स्वरूप ने खेती को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। हम सभी ने अनुभव किया है कि पहले बारिश का एक निश्चित समय हुआ करता था, किसान उसी के अनुसार खेत तैयार करते थे और फसल बोते थे। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। कभी बारिश देर से होती है, कभी बहुत कम होती है और कभी एक साथ इतनी अधिक हो जाती है कि खेतों में पानी भर जाता है। कई बार फसल को जिस समय पानी की जरूरत होती है उस समय बारिश नहीं होती और जब कटाई का समय आता है तो अचानक वर्षा हो जाती है। बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। केन, बेतवा और धसान जैसी नदियां इस क्षेत्र की पहचान है, लेकिन इसके बावजूद खेती का बड़ा हिस्सा आज भी वर्षा पर निर्भर है। लगातार घटता भूजल स्तर और अनिश्चित वर्षा किसानों की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में खेती के पुराने तरीकों के साथ साथ कुछ नई सोच और नई तकनीकों को अपनाना समय की आवश्यकता बन गया है। इसी सोच को आज हम जलवायु स्मार्ट खेती कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो जलवायु स्मार्ट खेती का अर्थ है ऐसी खेती जो बदलते मौसम के अनुसार खुद को ढाल सके, कम पानी में भी उत्पादन बनाए रखे, खेती की लागत को कम करे और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करे। किसान भाइयों और बहनों, जलवायु स्मार्ट खेती का सबसे पहला आधार है पानी का संरक्षण। बुंदेलखंड में कहा जाता है कि पानी की हर बूंद की कीमत होती है, इसलिए खेत में गिरने वाली वर्षा की प्रत्येक बूंद को बचाना जरूरी है। यदि किसान खेत की मेड़बंदी करें, खेत तालाब बनवाएं, वर्षा जल संचयन करें और खेत से पानी के अनावश्यक बहाव को रोकें, तो मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रह सकती है। आज कई किसान खेत तालाब बनवाकर वर्षा के पानी को संचित कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उसी पानी से सिंचाई कर रहे हैं। जहां संभव हो वहां ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का भी उपयोग किया जा सकता है। इससे कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई संभव होती है। किसान भाइयों और बहनों, जलवायु स्मार्ट खेती का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है फसल विविधीकरण। हमारे क्षेत्र में लंबे समय से गेहूं और कुछ परंपरागत फसलों की खेती की जाती रही है, लेकिन बदलते मौसम की परिस्थितियों में केवल एक या दो फसलों पर निर्भर रहना जोखिमपूर्ण हो सकता है। बुंदेलखंड की जलवायु और मिट्टी दलहनी तथा तिलहनी फसलों के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। अरहर, चना, मसूर, उड़द और मूंग जैसी फसलें कम पानी में भी अच्छा पैदावार देती हैं। इसी प्रकार सरसों और तिल जैसी तिलहनी फसलें भी किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। आज मोटे अनाजों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। ज्वार, बाजरा और अन्य श्री अन्न फसलें न केवल पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सूखा सहन करने की क्षमता भी रखती है। ऐसे में किसानों को इन फसलों पर ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों और बहनों, जलवायु स्मार्ट खेती का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है मिट्टी का स्वास्थ्य। अक्सर हम केवल उर्वरकों पर ध्यान देते हैं, लेकिन मिट्टी की ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। यदि मिट्टी स्वस्थ होगी तो फसल भी स्वस्थ होगा। गोबर की सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। इससे मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ता है और पानी को रोक कर रखने की क्षमता भी बढ़ती है। फसल अवशेषों को जलाने की बजाय उन्हें खेत में मिलाना चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता। मिट्टी परीक्षण करवाना भी बहुत आवश्यक है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि खेत में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और किस उर्वरक की कितनी मात्रा आवश्यक है। संतुलित उर्वरक उपयोग में लागत कम होती है और उत्पादन बढ़ता है। किसान भाइयों और बहनों, जलवायु स्मार्ट खेती का चौथा महत्वपूर्ण पक्ष है मौसम की जानकारी का उपयोग। आज मोबाइल फोन गांव-गांव तक पहुंच चुका है। किसान भाई मौसम विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा मौसम आधारित सलाह का लाभ उठा सकते हैं। यदि हमें पहले से ही जानकारी हो कि अगले कुछ दिनों में वर्षा होनी है तो हम सिंचाई को टाल सकते हैं। यदि तेज हवा या बारिश की संभावना है तो कीटनाशकों का छिड़काव रोक सकते हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। आज कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विभाग द्वारा समय समय पर मौसम आधारित सलाह दी जाती है। किसानों को इन सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। कई बार केवल एक सही मौसम सलाह किसानों को अनावश्यक खर्च से बचा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि अगले दो दिनों में वर्षा होने हो और किसान पहले ही सिंचाई कर दे तो पानी और श्रम दोनों की हानि हो सकती है। इसलिए मौसम की जानकारी को खेती का एक महत्वपूर्ण उपकरण मानना चाहिए।

किसान भाई और बहनों, बुंदेलखंड क्षेत्र में खेती के साथ पशुपालन का विशेष महत्व है। जलवायु स्मार्ट खेती केवल फसल तक सीमित नहीं है। यदि किसान खेती के साथ पशुपालन, बकरी पालन या मुर्गी पालन को जोड़ते हैं तो उनकी आय के स्रोत बढ़ जाते हैं। यदि किसी वर्ष फसल प्रभावित हो जाए तो पशुपालन परिवार की आर्थिक सुरक्षा का आधार बन सकता है। बुंदेलखंड में विशेष रूप से बकरी पालन और दुग्ध उत्पादन किसानों के लिए अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण साधन बन सकते हैं। कम भूमि वाले किसान भी इन गतिविधियों को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। पशुओं से प्राप्त गोबर का उपयोग जैविक खाद बनाने में किया जा सकता है, जिससे खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। यही जलवायु स्मार्ट खेती की मूल भावना भी है कि खेत, पशु और पानी सभी को एक साथ जोड़कर देखा जाए। जब किसान केवल एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहता तब उसकी आर्थिक स्थिति अधिक सुरक्षित होती है। इसलिए खेती के साथ पशुपालन को जोड़ना भविष्य की दृष्टि से एक समझदारी भरा कदम है। किसान भाइयों और बहनों, जलवायु स्मार्ट खेती में कृषि

0: सभी को एक साथ जोड़कर देखा जाए। जब किसान केवल एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहता, तब उसकी आर्थिक स्थिति अधिक सुरक्षित होती है। इसलिए खेती के साथ पशुपालन को जोड़ना भविष्य की दृष्टि से एक समझदारी भरा कदम है। किसान भाइयों और बहनों, जलवायु स्मार्ट खेती में कृषि वानिकी अर्थात खेती के साथ वृक्षों का समावेश भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। बुंदेलखंड क्षेत्र में भूमि कटाव, नमी की कमी और तापमान में वृद्धि जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में खेत की मेड़ों पर उपयुक्त वृक्ष लगाने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। नीम, करंज, सहजन, बबूल तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अन्य वृक्ष की सुरक्षा के साथ साथ अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकते हैं। वृक्ष मिट्टी के कटाव को कम करते हैं, वातावरण में नमी बनाए रखने में सहायता करते हैं और गर्मी के प्रभाव को भी कुछ हद तक कम करते हैं। कई किसान भाई खेत की मेड़ों पर सहजन का पौधा लगा रहे हैं, इससे पोषण भी मिलता है और आय की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार फलदार पौधों पर सीमित स्तर पर समावेश भी किसानों के लिए लाभदायक हो सकता है। आज जब मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है, तब खेती के साथ वृक्षों का समावेश भविष्य की सुरक्षा के रूप में देखा जा सकता है। किसान भाइयों और बहनों, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौती का सामना सामूहिक प्रयासों से अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। यदि गांव के किसान मिलकर जल संरक्षण, तालाबों के रखरखाव और नई तकनीकों के प्रसार का कार्य करें, तो पूरे गांव को लाभ मिल सकता है। किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह और किसान क्लब किसानों को नई जानकारी प्राप्त करने तथा सामूहिक रूप से समस्याओं का समाधान करने में सहायता कर सकते हैं। किसान भाइयों और बहनों, कार्यक्रम के अंत में मैं जलवायु स्मार्ट खेती के लिए कुछ सरल और व्यवहारिक सुझाव देना चाहूंगा। पहला, खेत में गिरने वाली वर्षा की प्रत्येक बूंद को बचाने का प्रयास करें। दूसरा, हर 2 या 3 वर्ष में कम से कम एक बार मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। तीसरा, केवल एक फसल पर निर्भर ना रहें, दलहनी, तिलहनी और मोटे अनाजों को भी फसल चक्र में शामिल करें। चौथा, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग द्वारा जारी मौसम आधारित सलाह पर ध्यान दें। पांचवा, फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए करें। छठा, खेती के साथ पशुपालन, बकरी पालन या अन्य सहायक व्यवसायों को जोड़ने का प्रयास करें। सातवां, नई तकनीकों को अपनाने से पहले उनकी जानकारी प्राप्त करें और छोटे स्तर पर प्रयोग करके देखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सीखना कभी बंद ना करें। खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें नई जानकारी और नई तकनीकें लगातार आती रहती हैं। जो किसान समय के साथ सीखता रहता है, वही भविष्य में अधिक सफल होता है। बदलता मौसम हमारे सामने एक चुनौती अवश्य है, लेकिन यह नई सोच और नए अवसरों का मार्ग भी खोलता है। यदि हम जल संरक्षण, स्वस्थ मिट्टी, फसल विविधीकरण, कृषि वानिकी, पशुपालन और आधुनिक जानकारी का सही उपयोग करें, तो बुंदेलखंड की खेती और अधिक मजबूत बन सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि बुंदेलखंड का किसान अपनी मेहनत, अनुभव और नई तकनीकों के समन्वय से इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेगा। आइए हम सब मिलकर जलवायु स्मार्ट खेती को अपनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, समृद्ध और टिकाऊ कृषि का निर्माण करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
1: तो भैया जे तो हते डॉक्टर आयुष मिश्रा, जोन अपन को जानकारी दे रहे थे कि बुंदेलखंड में जलवायु स्मार्ट खेती कौन प्रकार से अपन कर सकते हैं। पंच भैया ने जा वार्ता सुनी हुई है और ई वार्ता को सुनके अपने पंच भैया जोन प्रकार से मौसम बलदत है, ऊ प्रकार से इनकी जोन बताई हुई बातें हैं उनको यदि अपना है तो उनको भैया लाभ भी हुई है और आय को जोन स्रोत है वो भी बढ़े। और अब भैया अपन चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। कैसे अपने पंच भैया इंतजार कर रहे हैं सुनो गीत गुणो बतका को। तो अपन शुरू कर रहे हैं भैया अपनो कार्यक्रम सुनो गीत गुणो बतकाओ। जो कार्यक्रम अपनी भैया जोन चर्चाएं हैं उन पे आधारित और लोकगीतन पे आधारित कार्यक्रम है। प्रस्तुति है भैया ई कार्यक्रम की रविन्द्र कुमार प्रजापति भैया की। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं और अपन बतकाव करते हैं अवे जल संरक्षण की। कैसे अपन ने देखो ये कि अब भैया बरसात शुरू हो गई है और बरसात में जोन बरसात को पानी है वो भैया अपनी नालियन से या भैया सड़क से होके बह जाते हैं और बेकार हो जाते हैं, है ना। तो अपन को जोन जो पानी है ई

को संरक्षण करने हैं, और इके संरक्षण के लाने जरूरी जो है कि अपन अपने जो जल स्रोत हैं उनकी साफ सफाई करें, उनकी मरम्मत कर लेवें, है ना, और अपने जो नलकूप बने हैं उनके आसपास अपन ऐसी व्यवस्था कर लेवें कि भैया जो अपनो छत पे पानी गिर रहा है वो पानी अपनो भैया नलकूप के बगल में चलू जाए, है ना। तो इसे जो हुई है कि एक तो जो अपनो गर्मियन में भैया नलकूपन में पानी की समस्या आ जाते है उसे अपन को छुटकारा मिल जाए। दूसरी बात जो भी हुई है कि जमीन को जो जल स्तर है वो भी बढ़े, कैसे, जब नदियन तालाबन में पानी बनो रहे है तो जमीन को जो जल स्तर है वो अपने आप बढ़ जाते है। तो अपन सब पंचवियन को जो करवो जरूरी है, कैसे कि जो कही गई है कि पानी बिन सब सुन, तो जा बात बिल्कुल भैया सही है, कैसे यदि अपन को अपने भविष्य को सुरक्षित रखने हैं तो अपन को पानी को संरक्षण करवो जरूरी है, पानी को बचावो जरूरी है, है ना। तो जल संरक्षण करें, और दूसरी बात ई पानी को तो बचाने हैं सो बचाने हैं, संगे संगे अपन को जो अपन उपयोग करत दिन में, है ना, अपन ने देखो ये कि भैया अपन ने नल चला दो बहराव है, या पंच भैया ने पंप चला दो बहराव है, या अपनो भैया ट्रैक्टर धोब रहा हो गाड़ी धोब रही है, तो ई प्रकार को जो अपन भैया जल व्यर्थ जात है ई को भी अपन को बचा के रखने हैं, कैसे यदि अपन को अपने भविष्य सुरक्षित चाहने हैं तो अपन को जल को संरक्षण करवो जरूरी है। और ऐसे ही अपने पास एक लोकगीत है गौरी शंकर पाठक को गाओ भाव, तो अपन सुनाते हैं जल संरक्षण पे जो लोकगीत।

तो देखो भैया, जे तो हते गौरी शंकर पाठक, जिनने अपन को लोकगीत के माध्यम से कौन प्रकार से जल संरक्षण करने हैं, जो संदेश अपन तक पहुंचावे को प्रयास करो है। लेकिन भैया, अपन ने एक चीज गौर करी हुई है कि अपन अबे देख रहे हो कछु सालन से कि कई जगह पानी बरस रहो और कई जगह भैया बहुत तेज गर्मी पड़ रही है ना। अब इको कारण का है, इको कारण जो है कि अपन ने देखो हुई है कि दिन प्रतिदिन भैया जोन पेड़ पौधा हैं उनकी कटाई हो रही है। कैसे कि भैया जिते जिते जितनी तेज गति से भैया विकास हो रहा है, उतना ही तेज गति से जोन अपने पेड़ पौधा हैं भी कट रहे हैं और लग पानी रहे है ना। तो इसे काहू थे, इसे जो है कि जोन अपने आसपास को पर्यावरण है ऊपर प्रभाव पड़ा थे। कैसे कहू भी गौ है के जोन भैया पानी है या बादल हैं उनके लाने जैसे पहाड़ हैं या अपने जोन पेड़ पौधा हैं वृक्ष हैं वे इनको अपनी ओर आकर्षित कराते हैं। कैसे कहो देखो ही अपन ने के जिते भैया जंगल रात है या जिते भैया पहाड़ रात है उतने पानी ज्यादा बरसत है ना। तो अपन को भैया वृक्षारोपण करने हैं है ना, और अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधा लगाने हैं। कैसे यदि अपन ने वृक्षारोपण करो तो एक तो अपन को प्राणवायु शुद्ध मिले है ना, और जब प्राणवायु शुद्ध मिले तो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे अपन को भैया आराम मिले या उनसे अपन को छुटकारा मिले। तो अपने सब पंच भैया को जो आज दृढ़ निश्चय करने के अपन को अपने आसपास चाहे वे खेत हो, जितने भी जमीन खाली डरी हो या अपनो घर हो या स्कूल हो, जितने भी है उतने अपन को पेड़ पौधा लगाने हैं ताकि अधिक से अधिक भैया वृक्षारोपण हो सके। तो ऐसे ही अपने पास एक लोकगीत है रमेश बाबू सोनी की आवाज में, अपन सुनाते हैं भैया जो वृक्षारोपण के ऊपर लोकगीत।

तो भैया जे तो हते रमेश बाबू सोनी जोन अपन को वृक्षारोपण के ऊपर लोकगीत सुना रहे थे। और भैया अब देखो स्कूल खुल गए हैं, कैसे जुलाई को महीना चालू होगा है ना, तो अब स्कूल खुल गए हैं तो अब अपनी जिम्मेदारी जा बनत है कि अपने जोन भैया मोड़ा मोड़ी हैं उनको अपन स्कूल भेजें। कैसे अपने यदि मोड़ा मोड़ी पढ़े लिखे हुई हैं तो समाज अपनो शिक्षित हुई है और समृद्ध हुई है, लेकिन अपनो भी जो कर्तव्य है कि अपन अपने बाल गोपालन को अपने मोड़ा मोड़ियन को स्कूल जरूर भेजें। कैसे जोन प्रकार से अपन अपनी परिवार की जिम्मेदारी निभात हो, वैसे ही एक जिम्मेदारी अपनी जा भी है कि अपने घर के जोन मोड़ा मोड़ी हैं उनको स्कूल पहुंचाएं और जो भी देखें कि बे भैया स्कूल में का पढ़ रहे हैं और उनको जोन काम दाऊगा है वो ऊपे अपन एक बार जरूर गौर करें। तो उसे जो है कि अपने यदि बाल गोपाल पढ़ लिख जे हैं तो अपन को भी भैया बहुत आराम हुई है। और ऐसा ही एक अपने पास लोकगीत है बेटी पढ़ाओ के ऊपर रामनाथ अहिरवार की आवाज में, तो अपन सुनाते हैं भैया जो साक्षरता गीत रामनाथ अहिरवार की आवाज में।

भैया जी तो हते रामनाथ अहिरवार और रामनाथ अहिरवार के गाय भाई ए लोक गीत के संगे अपनो जोन आज को कार्यक्रम है सुनो गीत गुनो बतकाओ जो कार्यक्रम संपन्न भाव। ई कार्यक्रम की प्रस्तुति हती रविन्द्र कुमार प्रजापति भैया की और अब अपन बतकाव करत हैं आज की सीख की। तो आज की जोन सीख है बा है जो भोई लौट चले पुरवाई तब जानो बरखा ऋतु आई। ई को भैया मतलब जो है के ग्रामीण क्षेत्र में जा कहावत ज्यादातर तब कही जात है जब मौसम या बरसात आवे की संभावना होए। कैसे ऐसो कहोगा वह कि जब हवा इतनी तेज गति से चले कि वह नेचे होके जमीन में छुअत भई चले और धूरा उड़न लगे तो समझ लो चाहिए कि भैया बरसात को मौसम आवे वालो है और जल्दी पानी बरसे और बहुत तेज गति से बरसे है ना। तो जो जे अपनी कहावतें हैं जे कहूं ना कहूं कौनों ना कौनों प्रकार से अपन को जानकारी देती हैं और बतकाव करत कर भैया अपने जोन पंच भैया हैं दूर बैठे बेसारो करन लगे कि भैया अब घर चलवे की बेरा हो गई कैसे भैया इंतजार हो रहा है भोजन को। तो चलवे के पहला हम अपन को बता दें काल के कार्यक्रम। काल अपने पंच भैया सुन मानस प्रवचन प्रसंग हुई है मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा प्रवचन करता हुई है देवनाथ पाठक। इके अलावा वार्ता फसल विविधीकरण टिकाऊ कृषि और समृद्ध किसान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम वार्ताकार हुई है पंकज सिंह पटेल। आज की नसीहत में जितने के भगत नहीं उतने के मदीरा फूटे अपनो तुपनो बतकाव हुई है मनोरंजन हुई है और अपने अब छुट्टन भैया को आज्ञा दो पंचो राम राम।

0: ग्रामीण भाइयों के लिए भी ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात के 8 बजने को है। निजी प्रस्तुत है प्रायोजित कवि गोष्ठी। प्रायोजक हैं हरिशंकर जोशी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पंडित हरिशंकर जोशी संतु, शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमोरा, मूल निवासी सटई, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। गायत्री शक्तिपीठ छतरपुर में लगभग पिछले 5 वर्षों से प्रतिमाह
2: कवि गोष्ठी नियमित रूप से आयोजित होती है।
1: इसमें सभी काव्य रसिक भाई बहनों को काव्य पाठ का अवसर दिया जाता है।
2: संयोजक डॉक्टर RB पटेल अंजान,
1: सह संयोजक पंडित हरिशंकर जोशी संतु। मोबाइल नंबर
2: 8959008946 यानी 8959008946।
1: श्रोताओं, विगत 1 जुलाई 2026 को गायत्री शक्तिपीठ छतरपुर के सभागार में पंडित हरिशंकर जोशी संतु, शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमोरा और शिक्षक RB पटेल अंजान और अन्य सहयोगियों द्वारा कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कवि गोष्ठी का संचालन कर रही थी शिक्षक RB पटेल अंजान। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं ये प्रायोजित कवि गोष्ठी।
3: आज कवि वृंद की कवि गोष्ठी गायत्री शक्तिपीठ छतरपुर में कवि वृंद के साथियों द्वारा प्रायोजित है, तो उसकी शुरुआत करते हैं। आज हम गायत्री

गायत्री माता की जय, गुरुदेव की जय, नीम माता जी की जय। हम आपको बता दें, गायत्री शक्तिपीठ छतरपुर में लगभग पिछले 5 वर्ष से प्रतिमाह के द्वितीय रविवार को कवि गोष्ठी नियमित रूप से आयोजित होती है। इसमें सभी कवि रसिक भाई बहनों को काव्य पाठ का अवसर दिया जाता है और इस गोष्ठी के संयोजक पंडित हरिशंकर जोशी संतु जी हैं, सह संयोजक डॉक्टर आरबी पटेल अन्यान। आज हमारे कवि वृंद के साथी श्री शिव सहाय सिंह जी राजपूत शाही, श्री राम शरण जी शरण, श्री एमएल अहरवार जी लाल, श्री हरिशंकर जोशी संतु जी, श्री रूप नारायण पाठक अकेला आज की इस गोष्ठी में सम्मिलित हुए हैं। अपने अपने स्वरचित काव्य पाठ का गायन करेंगे। सर्वप्रथम मैं स्वयं डॉक्टर आरबी पटेल अन्यान, व्याख्याता शासकीय शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर में कार्यरत हूं और सतत काव्य रचना में लीन रहते हुए पुस्तक प्रकाशन और रचनाओं का सतत निर्माण में अपना समय और देता हूं और उसी के तहत आज गीत प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष। मेरे तन के रग रग में है भारत का लहू समाया, जन मन धन सब धन्य हुआ जो भारत

बालक को देखो अंगूठा गुरु हाथ तमाया। और धन्य धन्य हम धन्य हो गए यह गौरव जग ने गाया। अगली कड़ी है पानी हवा।

ते निर्मल उष्ण धूप छाया। और धन्य धन्य हम धन्य हो गए यह गौरव जग ने गाया। वीर भूमि यह कर्म भूमि है लाल बाल वा पाले हुए भगत सिंह चंद्र।

0: धन्य धन्य हम धन्य हो गए, यह गौरव जग ने गाया। अंत मंद है, अनजाने अनोखे अनुपम नर अद्भुत कर्तव्य वाले हैं। आल्हा उदल हर दौले को देखो घर घर के रख वाले हैं। अन्नदाता अन्न पैदा करके, हाँ अन्नदाता अन्न पैदा करके सब जग ने जिसको खाया। धन्य धन्य हम धन्य हो गए, यह गौरव जग ने गाया, यह गौरव जग ने गाया। जय हिंद जय भारत। और अगली कड़ी में, इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने कवि वृंद के वरिष्ठ साधक श्री शिव सहाय सिंह जी राजपूत साहसी जी को कि वो अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। साहसी जी,
1: भारत माता की ऊपर एक कविता है।

तुम्हें सत सत नमन वंदन। बाधा कुकर्मी डालें, बाधा विधर्मी डालें, कहाँ तक

0: देह कंचन हे मात भारती तुम्हें सत सत नमन व बंद। भारत माता की जय।
1: बहुत सुंदर रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने कवि वृंद के साधक श्री राम शरण शरण जी को कि वो अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। श्री शरण जी।
2: धन्यवाद अंजान जी। अभी देशभक्ति पूर्ण रचनाएं आदरणीय राजपूत जी ने सुनाई है। पहले अपना परिचय बता देता हूँ कि मैं सहायक संचालक वित्त के पद पर अभी लेखाधिकारी के रूप में CMHO कार्यालय में पदस्थ हूँ तथा कुछ मैं लेखन कार्य भी करता रहता हूँ। अभी मेरी एक पुस्तक है भीतर की ओर लौटते कदम, अभी कुछ एक सप्ताह पहले छपकर आई है। उसी में से कुछ चंद कविताएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
3: स्वागत है।
2: मैं कविता का शीर्षक है मैं कौन हूँ।
3: बहुत बढ़िया सर, स्वागत है।
2: मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ पूछा आपने, मैं कुछ क्षण मौन रहा, फिर आपने पुनः पूछा आप कौन हो और किस लिए हो। धीरे से मैंने कहा मैं वह हूँ जो विद्यमान है हर एक जीवन में हर एक पल में। तब मैंने धीरे से कहा मैं वह हूँ जो विद्यमान है हर एक जीवन में हर एक पल में। धरती की नमी से लेकर आकाश की अनंतता तक, धरती की नमी से लेकर आकाश की अनंतता तक मैं हवा की तरह तुम्हारे आसपास हूँ पर तुम्हारी पकड़ में नहीं।
3: क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: तुम मुझे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बांध नहीं सकते, फिर भी मैं हूँ।
3: क्या बात है, तुम मुझे छू नहीं सकते, बांध,
2: हाँ, तुम मुझे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बांध नहीं सकते, फिर भी मैं हूँ तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर अनुभूति में। जब कोई शिशु पहली बार रोता है मैं वहाँ होता हूँ। जब कोई शिशु पहली बार रोता है मैं वहाँ होता हूँ। जब कोई माँ चुपचाप प्रार्थना करती है मैं वहाँ होता हूँ।
3: बहुत बढ़िया।
2: जब कोई मनुष्य भीड़ के बीच अचानक अकेला महसूस करता है तब भी मैं उसके भीतर धीरे से उपस्थित रहता हूँ।
3: क्या बात है, बहुत गजब, बहुत सुंदर।
2: मैं उसके भीतर धीरे से उपस्थित रहता हूँ। मैं नामों में नहीं रहता, ना धर्म में, ना देह में, ना किसी सीमा में।
3: क्या बात है, बहुत गजब।
2: मैं बस एक एहसास हूँ जो जीवन को जीवन बनाता है।
3: बहुत बढ़िया।
2: मैं एक एहसास हूँ जो जीवन को जीवन बनाता है। तुम मुझे तर्क से नहीं समझ सकते, मुझे सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
3: क्या बात, बहुत बढ़िया।
2: जैसे भोर की पहली रोशनी, जैसे मौन में उतरी शांति, जैसे भोर की पहली रोशनी, जैसे मौन में उतरती शांति, जैसे किसी अपने का अनकहा अपनापन।
3: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: मैं अदृश्य हूँ पर अनुपस्थित नहीं।
3: बहुत बढ़िया सर, मैं अदृश्य हूँ पर अनुपस्थित नहीं
2: और शायद इसलिए हर मनुष्य मुझे अलग अलग नामों से पुकारता है।
3: बिल्कुल सही कहा सर, बहुत बढ़िया।
2: कोई आत्मा कहता है, कोई ईश्वर, कोई प्रेम और कोई सिर्फ अस्तित्व।
3: बहुत बढ़िया सर, बहुत
1: बढ़िया। अभी हमारे श्री राम शरण जी ने बहुत ही सारगर्भित अपनी भावाभिव्यक्ति दी। अब अगली कड़ी में मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री M.A. लहरवाल लाल जी को, जो पेशे से शिक्षक हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमौरा में, और वो आपके बीच हर दिन नई नई रचनाएं प्रस्तुत करते हैं और आज यहाँ पुनः नवीन रचना लेकर उपस्थित हैं। श्री M.L.
4: स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि देशभक्ति का माहौल है तो देश में कितने राज्य हैं उसको एक गीत में पिरोने का प्रयास किया है मैंने। आप सबसे चाहूंगा कितने राज्य हैं भारत में, हाँ कितने राज्य

से हैं कितने उनको भी पहचान लो, कितने राज्य हैं भारत में। अब कौन कौन से राज्य हैं, ये अल्फाबेट के क्रम में है पूरे राज्य, और गीत में परोया है मैंने कि आंध्र असम अरुणाचल देखो देखो बिहार छत्तीसगढ़ गोवा और गुजरात है न्यारे हरियाणा कुश्ती कागढ़। ओ आंध्र असम अरुणाचल देखो देखो बिहार छत्तीसगढ़ गोवा और गुजरात है न्यारे हरियाणा कुश्ती कागढ़। सो और हिमालय झार खंड कर्नाटक पूरा छान लो, कर्नाटक पूरा छान लो, और शासित केंद्र प्रदेश है कितने उनको भी पहचान लो, कितने राज्य हैं भारत में। दूसरा बंद इस गीत का कि केरल मध्य प्रदेश मणिपुर महाराष्ट्र और मेघालय देख मिजोरम नागालैंड और उड़ीसा के आलय, उड़ीसा के बहुत सारे अपने आलय मंदिर है बहुत प्रसिद्ध हैं, कि देख मिजोरम नागालैंड और उड़ीसा के आलय। सो सुन पंजाब और राजस्थान सिक्किम के गुड़ गान लो, हाँ सिक्किम के गुड़ गान लो, शासित केंद्र प्रदेश है कितने उनको भी पहचान लो, कितने राज्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उसके बाद कि तमिलनाडु तेलंगाना और त्रिपुरा दक्षिण राज्य हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये राज्य बड़े अभिभाज्य हैं। सो पश्चिम बंगाल है बहुत खास, पश्चिम बंगाल है बहुत खास, इसकी अलग है शान लो, हाँ इसकी अलग है शान लो, शासित केंद्र प्रदेश है कितने उनको भी पहचान लो। अभी तक तो हमारे ये राज्य हुए, अब केंद्र शासित प्रदेश वास्तव में कितने हैं वो भी सुनते हैं कि अंडमान चंडीगढ़ दादर दिल्ली तो राजधानी है, जम्मू और कश्मीर लद्दाख इनकी छवि सुहानी है। सो लक्षद्वीप

0: जान लो कितने राज्य हैं भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: बहुत सुंदर। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए तो मेरा भारत महान है, इसीलिए तो मेरा भारत महान है। अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने कवि वृंद गोष्ठी के सह संयोजक श्री हरिशंकर जी संतु जी को कि वो आए और अपना कब पाठ प्रस्तुत करें। संतु जी।
2: ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कवि वृंद कवि गोष्ठी के सभी साधकों को प्रणाम करते हुए अपनी रचना महा छत्रसाल महापुरुष से प्रारंभ कर रहा हूँ। कुंडलिया। तेरा यश जग में अमर, प्रजा हृदय सम्राट, याद करें तुझको सदा जमुना जी के घाट। जमुना जी के घाट टोंस नर्मद अरु चंबल, करें तुम्हारी याद मिले हम सबको संबल। कह संतु कविराय हृदय में करो बसेरा, ओ प्रिय चंपत के लाल जगत यश छाया तेरा। अगली कुंडलिया में जीवन के उद्देश्य को बताया गया है कि जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं। कहता हमसे जन्मदिन जीवन का उद्देश्य।

0: मेरा प्यारा देश राष्ट्र हित में हम जीवे, संस्कृति रस पीयूष मधुर मंगल मय पीवे। कह संतु कविराय चहूं दिसि आनंद बहता, जीवन का उद्देश्य जन्म दिन हमसे कहता। जीवन का उद्देश्य जन्म दिन हमसे कहता। एक मुक्तक। स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए समुचित निजी आहार हो तो प्रगति सोपान का हर स्वप्न भी साकार हो।
1: बहुत बढ़िया।
0: स्वास्थ्य से संतु हमारा सफल तन मन धन बने, स्वास्थ्य से परिवेश भी सुंदर सुखद आगार हो। माता पिता गुरु की शिक्षा में जो निज चित्त लगावे, सद विवेक से युक्त कभी वे इसे न हाथ लगावे। इसका सेवन करने से कई टूटे हैं परिवार, बेटा बेटी बिलखे रोती पिटती घर की नार। पुरा पड़ोसी आस पास सबसे होता है बैर, जिस घर में ये बिकती उसमें कभी न रखो पैर। रूखा सूखा खाकर बिटवा भले गुजर कर लेना, पर प्यारे बेटा दारू का ठेका कभी न लेना। कल कलेश होए इतना कि घर बन जाता नरक, एक एक पैसे को तरसे आती है कंगाली। उस सुंदर गोरी त्वचा भयंकर पड़ जाती है काली, अस्पताल में लगती है नोटों की मोटी गड्डी। 30 वर्ष में बूढ़े होते निकले हड्डी हड्डी। दारू की बिक्री का पैसा शांति नहीं है देता, अपयश की मैली गठरी विक्रेता सिर पे लेता। मात पिता का नाम डूबता और पुरखे धिक्कारे, और बच्चे हो कुसंस्कारी बप्पा को लाते मारे। संतु चाहे जैसे कष्टों में प्रियवर रहे लेना, पर प्यारे बेटा दारू का ठेका कभी न लेना।
2: बहुत सुंदर पंक्तियां आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। हम वो मुसाफिर हैं जो चलते ही रहते हैं, हम वो मुसाफिर हैं जो चलते ही रहते हैं, साहित्य सृजन की ले मशाल जलते ही रहते हैं, जलते ही रहते हैं। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रूप नारायण पाठक अकेला जी, जो अकेला के नाम से प्रसिद्ध हैं और एक से एक मनमोहक और हृदय को छू लेने वाली रचनाएं रचते रहते हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं, अकेला जी आए और अपना काव्य पाठ।
3: सभी उपस्थित कविजनों को मेरा प्रणाम। मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं 2 पंक्तियों से। मीठे झूठ का मुझे हुनर, मीठे झूठ का मुझे हुनर ना क्या बतलाऊं प्यारे, कड़वे सच ने छीन लिए हैं रिश्ते कई हमारे। वजन माप इंसान की करने नहीं जरूरी तोलना, वजन माप इंसान की करने नहीं जरूरी तोलना, पता तो ऐसे ही लग जाता सुनकर उसका बोलना। क्या खूबसूरत नाम पाया है, पैसा रुपया मुद्रा अर्थ धन, यह वो धुरी है जिसके चारों ओर सारा संसार हर आदमी चक्कर लगाता हुआ घूमता है। जरा सोचो, ऐसे के कारण भाई ने भाई का गला काट दिया, बाप ने बेटे को धोखा दिया, बेटों ने वृद्धाश्रम भेज दिया, तरह तरह से प्रताड़ित किया, मित्रता विश्वास घात में बदल गई, हर रिश्ता बदसूरत और कुरूप हो रहा है, सारे के सारे रिश्ते पैसे के मोहताज हो गए हैं। पैसे के चारों ओर चक्कर लगाते हुए आदमी की आत्मा मर गई है, आज आदमी आदमी नहीं रहा, क्यों? इसी पैसे के कारण। इसने पतन को शिखर पर, उत्थान को पाताल में पहुंचा दिया। पैसे के चक्कर में तेरे हाथ से बहुत कीमती चीज खिसकती जा रही है, जिसे कहते हैं जिंदगी। जिंदगी जिसे बुढ़ापा जरूर घेरता है, मौत भी जरूर आती है, बस यहीं पर मात खाता है पैसा। पैसा हमारी जिंदगी हमें वापस नहीं लौटा सकता, हमारी आने वाली मौत को नहीं टाल सकता, हमारा चरित्र हमें वापस नहीं दिला सकता, बस यहीं पर एक खूबसूरत

0: فریب ثابت ہوتا ہے یہی پیسہ یہی پیسہ.
1: سندر مارمک رچنا آپ کے دوارا پرستت کی گئی.
2: गायत्री शक्तिपीठ छतरपुर में लगभग पिछले 5 वर्षों से प्रतिमाह
3: कवि गोष्ठी नियमित रूप से आयोजित होती है.
2: इसमें सभी काव्य रसिक भाई बहनों को काव्य पाठ का अवसर दिया जाता है.
3: संयोजक डॉक्टर आर बी पटेल अंजान,
2: सह संयोजक पंडित हरिशंकर जोशी संतु. मोबाइल नंबर
3: 8959008946 यानी 8959008946.
1: कलमकार हम कलम चलाते हैं, कलमकार हम कलम चलाते हैं तलवार नहीं, हम जग को जगाते हैं, जग को रुलाते नहीं, जग को रुलाते नहीं. और काव्य पाठ के इस द्वितीय चरण में आप पुनः मैं डॉक्टर आर बी पटेल अपनी पुस्तक बुंदेलखंड के राष्ट्रभक्त काव्य प्रसून में जो एक रचना प्रकाशित हुई थी उसी को आज प्रस्तुत कर रहा हूँ. उसका शीर्षक है भारत देश हमारा है. भारत देश हमारा है, पंचशील अपनाने वाला भारत देश हमारा है. विश्व गुरु बन छाया जग में दुखियन देत सहारा है, दुखियन देत सहारा है. कैसे? उठकर सुबह मात का बंधन पितु आज्ञा बन जाते हैं. भाई हित भाई को देखो नंदीग्राम बस जाते हैं. द्रुपद

0: विश्व गुरु बने आए छाया जग में दुखियन देत सहारा है।
1: अगला बंद,
0: मानव मानव प्रेम भरा है जाति धर्म का भेद नहीं सदा सत्य पथ पालन करता कहता हरदम बात सही राष्ट्र भक्ति भरी रग रग में हो राष्ट्र भक्ति भरी रग रग में बहती समता धारा है विश्व गुरु बन छाया जग में दुखियन देत सहारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ ही वास करें मिलजुल उत्सव सभी मनाते समय समय उल्लास भरे मान पान सम सबको मिलता मान पान सम सबको मिलता ऐसा देश हमारा है विश्व गुरु बन छाया जग में दुखियन देत सहारा है।

अब विश्वगुरु बन छाया जग में, दुखिया ने देत सहारा है। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि विश्व के अनेक देशों की मदद हमारे भारत देश द्वारा की गई। अगला बंद है संस्कृत सरिता।

रिश्तों का संसार बना है हो, रिश्तों का संसार बना है, मान पान सिर धारा है। अब विश्व गुरु वन छाया, जग में दुखियन देत सहारा है। अंत मन ये अनजान अनोखा अनुपम, प्रेम प्यार से सदा भरे। ये अनजान अनोखा अनुपम, प्रेम प्यार से सदा भरे। मानो हित ही कर्म करें सब, निज स्वार्थ से रहें परे। वसुधैव कुटुंबी वाला भारत हो, वसुधैव कुटुंबी वाला भारत, जग में बना सितारा है। पंचशील अपनाने वाला भारत देश हमारा है। विश्व गुरु बन छाया, जग में दुखियन देत सहारा है। जय हिंद, जय भारत। और अगली

0: आमंत्रित करूंगा श्री शिव सहाय सिंह जी राजपूत साहित्य जी को कि अपनी काव्य प्रस्तुति प्रस्तुत दें।
1: धन्यवाद भैया। जो आपने बात कही वास्तव में भारत की विभिन्नताएं हैं और उसी पर मेरा एक गीत है।

लागे। समरस जीवन कर रही भाग, भात भात के गायन राग। मिल जोलवा खान पान में, मिल जोलवा खान पान में अंत

0: सहन में भगवान हरा है श्वेत भारत ते भरन को दे।
1: बहुत सुंदर रचना साहसी जी द्वारा प्रस्तुत की गई। मानव तन अनमोल मिला है, मानव तन अनमोल मिला है सत्कर्मों की धार दो, मानव तन अनमोल मिला है सत्कर्मों की धार दो, नित नौ साहित्य सृजन कर राष्ट्र भक्ति में गार दो, राष्ट्र भक्ति में गार दो। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने कवि वृंद के साथी श्री राम शरण जी शरण जी को कि वो अपना काव्य प्रस्तुत करने का।
2: धन्यवाद अंजान जी। भीतर की ओर लौटते कदम से ही मुखौटे नाम की एक शीर्षक की कविता पढ़ रहा हूँ। कविता का शीर्षक है मुखौटे। दुनिया में बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे दिखाई देते हैं, दुनिया में बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे दिखाई देते हैं, बाकी सब कुछ ना कुछ छुपाए रखते हैं डर।
3: बहुत सुंदर।
2: बाकी सब कुछ ना कुछ छुपाए रखते हैं डर, स्वार्थ, असुरक्षा या एक ऐसा चेहरा जो समाज को पसंद आए। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सामने अपनापन ओढ़ते हैं और पीछे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हें हल्का कर देते हैं।
3: क्या बात है, अपनापन ओढ़ते हैं और हल्का कर,
2: तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हें हल्का कर देते हैं। और ऐसे भी जो कठोर दिखते थे पर भीतर से बहुत सच्चे निकले।
1: धन्यवाद शरण जी। और इसी अगली कड़ी में श्री ML अहरवाल लाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए अपना काव्य प्रस्तुत करें। लाल
4: अंजन जी फिर से आपका धन्यवाद। और चूंकि अब शिक्षक होने के नाते उन बच्चों से एक अपील है जो विद्यालय नहीं पहुँच रहे हैं, तो उसके लिए एक गीत है, पढ़ता हूँ।

0: इसी अगली कड़ी में हमारे साथी श्री हरिशंकर जोशी जी संतु जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। संतु
1: पुनः कवि वृंद कवि गोष्ठी के साधकों को प्रणाम करते हुए अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले कई दिनों से गर्मी में जब तप रहे थे तो मानसून से एक निवेदन चल रहा था, मोरे भैया मोरे राजा, मोरे भैया मोरे राजा, मानसून ते आजा, तोरी अगवानी करवे हम लेके बैठे बाजा, तोरे बिना रुके हैं मोरे खेती के सब काजा, ओ संतु नो नो भोजन ल्याओ सोते आके खाजा, संतु नो नो भोजन ल्याओ सोते आके खाजा। तो भीषण गर्मी में बैठते थे तो एक बरगद की छाया में बैठते थे, कितना आनंद आता था सुनिए। अरे जूड़ी छैया देवे बरिया, जूड़ी छैया देवे बरिया, बैठे लाखन हरिया, और लाल बदामी से ते हरीरे नीले पीरे करिया, लाल बदामी से ते हरीरे नीले पीरे करिया, ई के तरे दयालु आवे धरे गाय खा परिया, ओ संतु पानी भर के धर रहे एक माटी की घरिया, संतु पानी भर के धर रहे एक माटी की घरिया। माँ गायत्री के प्रति संतु विनय करत कर जोरे, करो कृपा की कोरे, जिनमें गूंजे नाम तुमाओ सुंदर है बेखोरे, और जिनमें गूंजे नाम तुमाओ धन धन बेखोरे, महामंत्र के अक्षर तो कानन में अमृत घोरे, हे गायत्री माँ जो संतु डरो तुम्हारे दोरे।
2: गायत्री शक्तिपीठ छतरपुर में लगभग पिछले 5 वर्षों से प्रतिमाह
3: कवि गोष्ठी नियमित रूप से आयोजित होती है।
2: इसमें सभी काव्य रसिक भाई बहनों को काव्य पाठ का अवसर दिया जाता है।
3: संयोजक डॉक्टर आर बी पटेल अंजान,
2: सह संयोजक पंडित हरिशंकर जोशी संतु, मोबाइल नंबर
3: 8959008946 यानी 8959008946।
1: अगली रचना है कुंडलिया, होता वंश नवेश से मानव का सम्मान, ईश्वर की इस सृष्टि में होता कर्म प्रधान, होता कर्म प्रधान यही वर्णित सदग्रंथा, और कहते सभी महान विश्व में व्यापक पंथा, कहे संतु कविराय सुकर्मी सुख से सोता, और शांति दे संसार पूज वह जग में होता। अब एक कविता जिसका शीर्षक है अस्पृश्यता। वास्तव में इस देश से और संपूर्ण विश्व से अस्पृश्यता का निवारण होना चाहिए, इस संबंध में कविता का संदेश। तोता और कबूतर पालू, चींटी को देता दाना, और पितृ पक्ष में पितृ मान कर कौओं को देता खाना, सब में ईश्वर लखने वाली वेदों की प्रस्तुति भूला, पर मानव हो कर मानव से तो घृणा ही करता मैं, एक पिता के पुत्र सभी हैं, भेद कहाँ से आया है, सर्व शिरोमणि मानव मन में मेल बहुत गहराया है, ऊंच नीच की गहरी खाई, ऊंच नीच की गहरी खाई में मानवता डूब गई, लगता है समाज सेवियों की उत्कंठा उब गई, लगता है समाज सेवियों की उत्कंठा उब गई, सतपुरुषों से प्रेरित होकर सबकी पीड़ा हरता में, इसीलिए अब किसी व्यक्ति से

0: में, इसीलिए मैं किसी व्यक्ति से कभी न घृणा करता मैं।
1: कवि वृंद के दूसरे चरण में हमारे अंतिम कवि श्री रूप नारायण पाठक जी अकेला सादर आमंत्रित करता हूँ तो अपना काम पर।
2: बहुत बहुत आभार। भावना हो तो भावना समझेगा क्या, भावना हो तो भावना समझेगा क्या, भावना समझने का भाव होना चाहिए। वेदना जिसने पढ़ा वेदना समझेगा क्या, वेदना समझने संवेदना होना चाहिए, वेदना समझने संवेदना। मेरी पंक्तियाँ कुछ है बिरहिणी के बिरह के ऊपर हैं। पहले तो क्या है कि इंतजार करती है वो, पहन प्यारी सारी दुत दामनी किनारी मांग मोतन संवारी है मार खाए मार की। पहन प्यारी सारी दुत दामनी किनारी मांग मोतन संवारी है मार खाए मार की। कुचन के बीच शोभा हिरण के हार की, कंचन सी काया काले केसन की छाया किंकिणी किलोल करे कमर में प्यार की। अकेला अलवेली बनी नार नई नवेली खड़ी, बाजू बंद बांधे बाजू पकड़े केवार की। अब इसके बाद क्या होता है, सोचती है वो कि बदली बदली बदली सी, बदली बदली बदली सी है घटा घटाती घट का मान, बदली बदली सी बदली है घटा घटाती घट का मान। कोयलिया की कूक हूक सी रजनी रार रही है ठान, और सजे साज अब आज कौन पर लोक लाज ने ठानी ठान, लोक लाज ने ठानी ठान।
1: श्रृंगार रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई और आज की इस काव्य गोष्ठी के हमारे सूत्रधार उनके लिए चंद पंक्तियां हैं। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई टोल नहीं होता, दोस्तों मिल जाते हैं हर रास्ते पर, दोस्तों मिल जाते हैं हर रास्ते पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। हमारे राजेंद्र भाई जी के लिए ये पंक्तियां हैं कि हमारे राजेंद्र, श्री राजेंद्र अहिरवार जी जो आकाशवाणी में सेवारत हैं, उनके द्वारा हमारी आज की इस काव्य गोष्ठी का संयोजन और रिकॉर्डिंग की गई, उनका संपूर्ण कवि वृंद की ओर से बहुत बहुत आभार जो आज हम सब लोगों को यह शुभ अवसर प्रदान किया। और अंत में इस गोष्ठी का समापन पुनः शांति पाठ से।
0: ओम देव शांति ही अंतरिक्ष वं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति।

0: इसी के साथ विगत 1 जुलाई 2026 को गायत्री शक्तिपीठ छतरपुर के सभागार में पंडित हरिशंकर जोशी संतु शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमोरा के शिक्षक और अन्य गणमान्य नागरिकों के सौजन्य से आयोजित प्रायोजित कवि गोष्ठी पर आधारित ये कार्यक्रम अब संपन्न होगा। सहयोगी राजेंद्र अहिरवार और प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे पंडित हरिशंकर जोशी संतु शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमोरा मूल निवासी सटई जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। गायत्री शक्तिपीठ छतरपुर में लगभग पिछले 5 वर्षों से प्रतिमाह
1: कवि गोष्ठी नियमित रूप से आयोजित होती है।
0: इसमें सभी काव्य रसिक भाई बहनों को काव्य पाठ का अवसर दिया जाता है।
1: संयोजक डॉक्टर आर बी पटेल अंजान,
0: सह संयोजक पंडित हरिशंकर जोशी संतु। मोबाइल नंबर
1: 8959008946 यानी 8959008946।
2: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अभी आपने सुनी प्रायोजित कवि गोष्ठी, प्रायोजक थे हरिशंकर जोशी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार संध्या कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

0: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
2: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
3: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
2: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनी

0: सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरल पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया।

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY, इसे हम कह सकते हैं कि ये योजना खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन का एक दशक पूरा कर चुकी है। PMKSY ने पिछले एक दशक में समूचे भारत में सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करने और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। ये योजना 64,460 करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्रीय सहायता के साथ खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन के प्रमुख उत्प्रेरक के तौर पर उभरी है और 2.7 करोड़ से भी अधिक किसानों को अब तक लाभ पहुंचा है और 2.46 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई क्षमता पैदा की गई है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने देश के किसानों का भविष्य उज्जवल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी मौजूद हैं। हरवीर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद हर्ष जी।
1: आपसे पहला सवाल यही हम जानना चाहेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और देश की कृषि व्यवस्था में ये योजना पिछले एक दशक में किस तरीके का परिवर्तन लेकर आई है।
2: हर्ष जी देखिये, कृषि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक इनपुट है वो सिंचाई है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप कोई भी फसल उगाने के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और अपनी तैयारी के साथ खेती कर सकते हैं। तो कृषि जो है वो एक तरीके से खेती करने के लिए, अगर हम ये कहें जो सिंचाई है वो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। और इसीलिए क्योंकि अभी भी जो हमारा टोटल जो जिसे हम कहते हैं कि जिस क्षेत्रफल में खेती होती है उसका लगभग आधे से थोड़ा कम जो है, एक दशक पहले जो करीब 45% के आसपास था उससे भी कम था, वो वर्षा आधारित था। तो यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है, जो उसकी हमें एक उम्मीद है कि कितना उसके अंदर संभाव्यता है, उसको हम पूरा उपयोग नहीं कर सकते थे अगर हम सिंचाई की सुविधा ना बढ़ाएं। तो पहला फोकस जो रहा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य रहा है, वो देश के किसानों को उनकी खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है वो मुहैया कराने का उद्देश्य इसके पीछे रहा है। क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें आगे शुरू होती हैं और उसमें एक मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच जिसे कह सकते हैं हम लोग, एक साथ इसके बहुत सारे घटक हैं इस योजना के
1: जी,
2: उनको सब पर काम किया गया है और उसके नतीजे जो आपने जैसे कहा कि एक दशक में 2016-17 के बजट से लेकर के और अभी तक हमने 64,407 करोड़ रुपए का आवंटन सिंचाई के लिए इस योजना के तहत किया है और उसका नतीजा यही रहा कि करीब जो 24.61 मिलियन हेक्टेयर जो है वो जमीन हम अतिरिक्त सिंचाई के तहत ला पाए, जिसका फायदा 2.5 करोड़ से ज्यादा देश के किसानों को हुआ।
1: सरकार ने एक लक्ष्य बनाया कि प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये चीज सामने आई जिसका फायदा भी किसानों ने और हमारे फार्मिंग सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर ने उठाया। ये प्रति बूंद अधिक फसल, इसे कैसे आम श्रोताओं के लिए आप समझाएंगे?
2: एक तरीके से जो हम कहें कि जो स्लोगन भी बनाया गया पर डोप मोर क्रॉप, यानी कि हर बूंद से अधिक उपज, का मतलब है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है, जो संसाधन हमारे पास सिंचाई के उपलब्ध है, उनको हम कितना दक्षता के साथ उपयोग कर सकते हैं ताकि हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं उत्पादन में फसल के, वो हम आकलन कर सके बेहतर उत्पादन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और जो एक्सटेंशन वर्क है जिसमें किसान को बताना है, समझाना है कि जो पानी है एक तरीके से बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स है, उसका आप बेहतर दक्षता के साथ उपयोग करके अधिक उपज कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो जो भी कंपोनेंट है उनको केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ा गया। तो इसीलिए जो स्लोगन है पर डॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक उपज, हम लोग उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है वो कदम इस योजना के

0: हरवीर जी, आपने मानसून आधारित यानी वर्षा आधारित सिंचाई की भी बात की, तो एक हम इसे कैसे समझें आम श्रोताओं के हिसाब से? एक तो जब वर्षा होती है तो हर खेत को पानी पहुंचता है, लेकिन फिर उसके लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है, तो आंकड़े क्या बताते हैं? अभी देश में कितने एरिया ऐसे हैं जहां वर्षा आधारित कृषि है, और कितने एरिया हम मान के चले ऐसे हैं जहां के लिए हम सिंचाई की सुविधा देते हैं जो वर्षा पर आधारित नहीं है? वर्षा हो ना हो, वहां सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा।
1: हमारा सिंचाई का जो ढांचा है, जो बहुत वर्षों से है, जैसे कि हम लोग कैनाल सिस्टम है, ट्यूबवेल सिस्टम है, और डैम बनाए गए हैं, चेक डैम्स हैं, तो ये एक जो पोन्ड्स हैं, जो तालाब हैं बड़े, उनका रेस्टोरेशन है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में है। लेकिन जो कैनाल इरीगेशन और हम जो कहते हैं कि भाई जहाँ ट्यूबवेल सिस्टम है, वो सारा जो हम कहते हैं इसको एश्योर्ड इरीगेशन, यानी कि बारिश हो ना हो, लेकिन किसान के पास एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग करके वो अपने खेतों की सिंचाई करके फसल का उत्पादन कर सकता है। और इसलिए जो बहुफसलीय जो उत्पादन क्षेत्र है वहां

0: लेकिन जो कैनाल इरिगेशन और हम जो कहते हैं कि भाई जहाँ ट्यूबवेल सिस्टम है, वो सारा जो हम कहते हैं इसको एश्योर्ड इरिगेशन, यानी कि बारिश हो ना हो लेकिन किसान के पास एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग करके वो अपने खेतों की सिंचाई करके फसल का उत्पादन कर सकता है। और इसलिए जो बहुफसलीय जो उत्पादन क्षेत्र है वहां पर किसानों की स्थिति भी अच्छी होती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है, क्योंकि जो फसल चक्र उसका है वो रबी है, खरीफ है, जायद है, वो सारी चीजें उसमें हासिल कर सकता है क्योंकि उसके पास सिंचाई की सुविधा है। ये इस तरीके का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 50% से थोड़ा ज्यादा है। बाकी जो है हमारा जो कृषि है वो हम कहते हैं कि वर्षा आधारित है, हालांकि वह काफी बड़े पैमाने पर वहां पर भी किसानों ने अपने स्तर पर और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका उपयोग करके सिंचाई की सुविधाएं सकती है। इसको हम रेनफेड एरिया बोलते हैं। रेनफेड एरिया में अक्सर जो है एक फसलीय खेती होती है, और वो जब ये हमारा मानसून का सीजन होता है उस वक्त ये खेती होती है, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं कि हर वक्त बारिश हो। तो सरकार की जो योजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका एक कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में होता क्या है कि उस तरीके के सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करने के एक ढांचे बनाए जाते हैं, चेक डैम्स बनाए जाते हैं, कि जो रेनफेड एरिया है वहां पर एक सिंचाई उस क्षेत्र में हो जाए जब कमी पड़ती है उस फसल, या जो पानी अगर बच जाएगा तो उससे आप दूसरी फसल के लिए भी पानी उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये एक काफी बड़ा काम है और देश भर में इसके ऊपर सरकार ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर। और इससे क्या हुआ कि जो इलाके ऐसे हैं जो कृषि में थोड़ा पिछड़े हुए हैं उनको बाकी क्षेत्रों के करीब लाने की कोशिश कामयाब होती है, क्योंकि वहां के किसानों को उनका जो कृषि से जो आय है उसमें इसके जरिए सुधार किया जाना संभव है और हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। ये वहां पर जो पॉन्ड से उनका रेस्टोरेशन होता है कि जिससे जब पानी की जरूरत है तो वहां से पानी किसान ले सके, और बहुत जगह यूजर एसोसिएशंस बनी हुई है किसानों के, अपने एक तरीके से कलेक्टिव बने हुए हैं जो मिलजुल कर उसका मैनेजमेंट भी करते हैं और आपस में उस पानी का बंटवारा भी करते हैं, जिससे सबके साथ एक इक्विटेबल जो है रिसोर्सिस का इस्तेमाल हो सके। तो ये इस योजना का एक बड़ा कंपोनेंट मैं मानता हूँ, और इसको काफी बड़ा बल मिला है। जो एक रेनफेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम भी करती रही है। तो ये तभी संभव हुआ है जब उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: हरवीर जी, आप ये भी बताएं कि जो ये अवसंरचना विकास है सिंचाई के लिए, ढांचागत विकास है, उसमें क्या नवीनता आई है समय के साथ साथ? जैसे अब तो हम हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो सिंचाई में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है और ढांचागत जो विकास हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं?
0: इसका एक कंपोनेंट है एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP जिसको बोलते हैं।
1: जी
0: वो प्रोग्राम ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं लंबे समय से उनका जो लास्ट माइल कंप्लीशन है, यानी कि जो प्रोजेक्ट 80% पूरा हो गया या 90% पूरा हो गया, उसमें अगर 10% काम बचा तो उसको तेजी से पूरा किया जाए, उसके लिए अलोकेशन किया जाए, और उसके पूरा होते ही उसका जो पोटेंशियल है, जो उसके जरिए जो एक संभावना है या कितना क्षमता का हमने उम्मीद रखी है उसके सिंचाई की जो उससे पैदा होगी उसका उपयोग तुरंत हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कंपोनेंट रहा है, और इसके ऊपर जो है करीब 21,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए अलोकेट हुआ, और बड़े पैमाने पर इससे करीब 173 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसको सिंचित सुविधा की तरह हम ले पाए। प्लस जो माइनर इरिगेशन है, जैसे मैंने आपको चेक डैम की बात की थी, या माइनर इरिगेशन है वो सब हुआ, साथ में जो टेक्नोलॉजी है जैसे आपने कहा कि जब मैं कहूँ कि प्रिसीजन इरिगेशन जो है कि आपको माइक्रो इरिगेशन की जो स्कीम्स है कि भाई आप स्प्रिंकलर है, आपके ड्रिप इरिगेशन है
1: जी,
0: जिससे आप सिंचाई के साथ आप न्यूट्रिशन भी पौधे तक सीधे पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आपकी लागत घटती है। और ये जो स्कीम्स हैं जिसमें हम मैं कह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी का जहाँ इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके की इरिगेशन की जो नई चीजें नई पद्धतियां लागू की गई हैं, उससे बहुत कम पानी में, कई जगह 1/4 पानी इस्तेमाल होता है फ्लड इरिगेशन के मुकाबले इसमें, या उससे भी कम होता है, लेकिन जो उपज है वो बेहतर होती है, उत्पादकता बेहतर होती है। जो ड्राई लैंड एरिया जैसे कि राजस्थान है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा है, वहां पर इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सिंचाई सुविधाओं के ऊपर काम हुआ है, क्योंकि इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है और उस सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है।
1: जी
0: जैसे आपने कहा कि पहले से जो हमारा कैनाल इरिगेशन था, जो बड़े पॉन्ड थे या लेक से का जो है वहां से जो पानी का हम इस्तेमाल कर पा रहे थे नहरों के जरिए, तो लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें अगर ट्यूबवेल सिस्टम भी है तो वहां पर भी आप जो है बोरवेल में वहां पर भी ये आप उसको आगे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जहां

0: पानी का स्तर ऊपर था, वहां पर बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल्स जो है उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए, उसका इस्तेमाल हुआ। और जो जो सिंचित, जैसे हम ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं, वहां जो सिंचित एरिया बढ़ाने की बात है उसमें ये काफी मददगार हुई है स्कीम्स इस तरह की। इवन राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रिसिशन जो इरिगेशन की हम बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्लस सोलर पंप्स के जरिए, छोटे पंप्स और सोलर के जो एनर्जी जहां बिजली की जरूरत नहीं है, ये सारा चीजें तभी हो पाई है जब आपने एक बहुत वृद्ध स्कीम बनाई और उसमें हर कंपोनेंट को रखा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डैम बनाएंगे और इरिगेशन के लिए चैनल्स बनाएंगे, नहीं, जो भी उपलब्ध एक तरीके से विकल्प है उन सबको एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की।
1: हरवीर जी, आपने बहुत सही बताया कि किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर किसानों ने अपनी फसल को बढ़ाया है, अपनी आय बढ़ाई है। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के किसानों ने स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाकर पानी, बिजली और श्रम की लागत काफी कम कर दी, अपना उत्पादन बढ़ाया। और आपने राजस्थान की भी बात की कि जहाँ किसानों ने कम पानी के बावजूद अपना उत्पादन बढ़ाया है। साथ ही आपने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP के माध्यम से भी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को किस तरीके से सरकार ने पूरा किया है, इस पर भी बातचीत की। अब आप हमें ये बताएं कि सरकार खास तौर पर, विशेष रूप से अगर कहें, छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए 55% तक की सहायता देती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले सब्सिडी की भी बात की, इससे किसानों की आय और खेती पर पिछले कुछ वर्षों में क्या प्रभाव पड़ा है?
0: ये जो छोटे किसान होते हैं उनके पास संसाधनों की कमी होती है, उनके पास जो वित्तीय संसाधन है वो बड़े किसानों की तरह उपलब्ध नहीं होते कि वो इन्वेस्टमेंट करके सिंचाई सुविधाओं पर तुरंत अपने लिए सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पर जो सरकार ने सब्सिडी मुहैया कराई है, जो कंपोनेंट जो लागत आती है उसका बड़ा हिस्सा जो दिया है, और इसमें कोशिश ये हो रही है कि ये जो सुविधाएं विकसित हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो, जिससे कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी, जो यानी कि पानी के उपयोग की जो दक्षता है, जो हम लोग पीछे कह रहे थे कि पर लो मोर क्रॉप जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अक्वाफर हो या और पॉन्ड्स उनको कैसे रिचार्ज रखा जा सकता है।
1: जी,
0: मेरा अभी भी मानना है कि अभी इस तरीके के जो किसान है हमारे देश में, अभी भी जो लघु और सीमांत किसान है उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 88-89% के बीच में चले गए। जोत का जो आकार है 2 हेक्टेयर, कम जमीन के जो लैंड होल्डिंग्स है उनको अभी एक तरीके से जो एक्सटेंशन है, जो उन तंत्र सूचना का है कि उनको कैसे हम शिक्षित करें, कैसे उनको हम इसके लिए तैयार करें कि वो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लेकर के और जो कृषि जो वो खेती करते हैं उसमें अपने उपज बेहतर कर सके, अपने जो आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके, अपनी ज्यादा फसल करके ज्यादा आय हासिल कर सके, क्योंकि स्कीम्स अवेलेबल है। उसमें बड़े पैमाने पर अभी भी जरूरत यह है कि जो लिंकेज हैं उनको कैसे हम जोड़ें, किस राज्य की क्या स्कीम है, कहां से उनको ये उपकरण लेने हैं, उसके खेत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो ये उनको अभी और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है।
1: जी, और हरवीर जी यहाँ ये भी बताते चले कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 6,587 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और ये दर्शाता है कि सरकार जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को किस तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हरवीर सिंह जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

0: श्रोताओं, आपने अभी श्री मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यार कूथ सुना। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी त्रिशूर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था।
1: डियर लिसनर्स, यू हैव जस्ट हर्ड द चाक्यार कूथ प्रेजेंटेड बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी त्रिशूर।
0: क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में हम आपके लिए श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम संगीत लेकर आए हैं। श्री अमल एंटनी एक पार्श्व गायक, संगीतकार, कोरल अरेंजर तथा वोकल कोच है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार भी है। भारतीय और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में समान रूप से दक्ष अमल एंटनी ने विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में सुगम संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2006 में वे गंधर्व संगीतम टेलीविजन रियलिटी शो के विजेता बने तथा उन्हें राज्य स्तर पर पी सुशीला पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के रूप में सम्मानित किया गया।
1: कंटिन्यूइंग विद द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक, वी नाउ ब्रिंग यू मलयालम लाइट वोकल सॉन्ग्स प्रेजेंटेड बाय श्री अमल एंटनी। श्री अमल एंटनी इज अ प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, choral arranger and vocal coach. He is an A grade artist of Akashwani, a gifted musician with accomplishments in both Indian and Western music traditions. Amal Antony was a national winner in light vocal music at the University Youth Festival in 2012. He also won the Gandharva Sangeetam television reality show in 2006 and received the Peace Sushila Award for Best Male Singer at the state level.
0: आज रात श्री अमल एंटनी चार सुगम गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। इन चारों गीतों के बोल मलयालम के प्रसिद्ध फिल्म गीतकार एवं

0: एवं कवि श्री रफीक अहमद ने लिखे हैं। इन गीतों का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार तथा भक्ति संगीत के क्षेत्र में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिया है।
1: Tonight, Shri Amal Anthony presents four light vocal songs. The lyrics of all songs have been written by Shri Rafiq Ahmed, the renowned Malayalam film lyricist and poet. The music has been composed by Shri T.S. Radhakrishnan.

0: मिलन का प्रतीक है। आइए सबसे पहले राधा माधव के प्रेम का सुंदर चित्रण करने वाला एक गीत सुनते हैं।
1: द रिलेशनशिप बिटवीन श्री कृष्णा एंड राधा इज नॉट मियरली अ वर्ल्डली रोमांस। It symbolizes the divine union between the individual soul and the supreme being. Let us begin by listening to a song that beautifully portrays the love of Radha and Madhava.

0: प्रेम मनुष्य को सपनों, आशाओं और आनंद की दुनिया में ले जाता है। वही प्रेम वियोग उसे आत्मचिंतन और विरह वेदना की ओर ले जाता है। आइए अगले गीत में विरह की वेदना से व्याकुल एक प्रेमी हृदय की भावनाओं को सुने।
1: While love leads a person into a world of dreams, hopes and joy, the loss of love takes one into the realm of introspection and the pain of separation. In the next song, let us listen to the yawning heart of a lover grieving in the anguish of separation.

0: प्रथम प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मन में अमित स्मृतियां रिच देता है। उसमें जिज्ञासा, सपने, आशाएं और निष्कलुष भावनाएं भरी होती है। इत्र की मधुर सुगंध की तरह प्रथम प्रेम की यह सुगंध अब इस गीत के माध्यम से वातावरण में फैल रही है। आइए सुनिए।
1: First love is an experience that creates unforgettable memories in the heart. It is filled with curiosity, dreams, hopes, and innocent emotions. Like the lingering fragrance of attar, the sweet scent of first love now fills the air in this song.

0: आज क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे। इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिए थे। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन केएक्स कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री सीएनके मूर्ति बांसुरी तथा श्री सी श्री कुमार तबला। उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक यू वेर लिसनिंग टू अ प्रेजेंटेशन ऑफ मलयालम लाइट सॉन्ग्स बाय श्री अमल एंटनी। The songs have been written by Sri Rafiq Ahmed and composed by Sri T. S. Radhakrishnan. He was accompanied by Sri Wilson K. X. on keyboard, Sri Babu Varghese on rhythm pad, Sri C. N. K. Murthy on flute, and Sri C. Sri Kumar on tabla. With this, we come to the end of today's national program of regional folk and light music. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath, main Bhavtarini.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
4: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए।

0: ये हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, "When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits." He said, "Both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound." The Prime Minister said, "India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless."
1: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और